इसके अंतर्गत ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम अभी एक एक करके इसको हम इसकी विशेषताएं और लाभ बताएंगे। सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत हमारा जो पांचवा एक्सरसाइज है वो पेट और कमर के लिए है, जिसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में चक्की आसन कहते हैं। ये हम आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार करना चाहिए। दोस्तों, दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे में से पकड़ते हुए सामने दोनों पैरों के ऊपर रखें, यानी दोनों पैर को सीधा करके दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में जकड़ लेना है और दाईं ओर से बाईं ओर हाथों को इस तरह से घुमाएं कि कमर आगे झुकते हुए पैरों की उंगलियों से हाथ छूते हुए वृत्ताकार, यानी जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए अपनी जगहों पर हाथ आए और कमर को पीछे की ओर झुकाएं, पैरों को स्थित रखें और इसी तरह दूसरी ओर यानी क्लॉकवाइज करेंगे और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और फिर से इसको दोहराएंगे। दोस्तों, इसको हम चक्की आसन कहेंगे, यह हमारे पेट और कमर के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारी एक्सरसाइज बताई हुई हैं पेट के लिए कि जिनकी जिनकी टमी बहुत ज़्यादा बाहर होती है, पेट का उपला ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा बहुत बाहर निकला हुआ होता है, और कमर में जिनको पेन रहता है। दोस्तों, महिलाओं में यह विशेषकर यह प्रॉब्लम आजकल आ रही है कि पेट में ये कमर में बहुत सारी क्या कहते हैं दिक्कतें आती हैं। तो अगर हम नियमित रूप से यह चक्की आसन करेंगे तो बहुत सारा इसमें हमको लाभ मिलेगा। इसका नंबर 2 पॉइंट है स्थिति कोड़ासन, यानी दोनों पैरों को थोड़ा आगे खोलकर सामने फैलाएं, दोनों हाथों को कंधों के सामने रखकर उठाएं, फिर दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और बाएं हाथ को पीछे की ओर घुमाते हुए जैसे पर्वताकार होता है पर्वत की ओर छूना, ऊपर हाथ सीधा रखें, गर्दन को बाईं ओर घुमाते हुए पीछे की ओर देखें और इसी तरह दूसरी ओर से भी देखें। इन दोनों अभ्यासों में कमर दर्द दूर होता है और पेट जो है वो स्वस्थ होता है तथा कमर की बढ़ी हुई चर्बी, जी हाँ दोस्तों, कमर की बढ़ी हुई चर्बी भी इससे इस प्राणायाम से इस आसन से दूर होती है। परंतु जिनको अत्यधिक कमर दर्द है वह यह अभ्यास धीरे धीरे करें। मैं कहूंगी अभ्यास करें, पर उसका अभ्यास आप धीरे धीरे करें। आइए दोस्तों, हम इसके अगले ओर की ओर चलते हैं जिसको हम कहेंगे हाथ की उंगलियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत हमने आज जितनी भी एक्सटर्नल बॉडी की हमारे पास जो भी एक्सरसाइजेस हैं हम उन सब पे आज बात कर रहे हैं। तो अगला जो है वो हम बात करने जा रहे हैं उंगली संचालन। तो उसमें पहला पॉइंट है दोनों हाथों को सामने फैलाकर जो हमारे पंजे हैं वो नीचे की ओर रखते हुए कंधों के सामने रखें और फिर उंगलियों को या उनकी पोरों को बलपूर्वक नीचे मोड़ें और सीधा रखें, यानी फिंगर्स को हम जितना भी प्रेशर दे करके उसको जमीन पर नीचे रखेंगे और उसको सीधा करेंगे, फिर उसको मोड़ेंगे और फिर उसको सीधा करेंगे। इसका नंबर 2 पॉइंट है कि अब हम अंगूठे को भी उंगलियों की ही तरह दबाते हुए अंगूठे को अंदर और सारी उंगलियां उसके ऊपर जैसे मुक्का बनाते हैं उस आकृति, कभी खोलें और कभी बंद करें, कभी खोलें और कभी बंद करें। इस तरीके से यह एक्सरसाइज 10 से 12 बार हम कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सर्वाइकल के लिए तथा फ्रोजन शोल्डर के लिए। दोनों हाथों की हथेलियों को आकाश की ओर सीधा रखते हुए कंधे समान हाथ को मोड़े, यानी ऊपर करना है दोनों को, फिर सीधा करना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर शोल्डर पर लाना है, फिर हाथ को ऊपर और शोल्डर तक। इसी प्रकार इस क्रिया को कंधों के सामने से लाएं और मोड़ें। यह जो सर्वाइकल की जिनको प्रॉब्लम होती है दोस्तों, वह इससे बहुत ही जल्दी इससे उनको लाभ मिलता है। और अगर आप इसे अपने डेली रूटीन में लाएंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे

आपको बिना दवाइयों से इसका लाभ मिलने लगा है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अब अपने अगले गर्दन के लिए, जिसको हम कहेंगे ग्रीवा संचालन। गर्दन के लिए सीधे बैठकर गर्दन को दाईं ओर घुमाते हुए पहले दाएं कंधे से लगाएं, जैसे कि हम दाईं जो हमारा हमारी गर्दन है उसको बाईं कंधे की तरफ बिल्कुल उसको झुका देना है। इसी तरह बाएं कंधे से छुएं और इसी का उल्टा हम करेंगे। इसके पश्चात गर्दन को आगे की ओर झुकाते हुए टोडी को छाती से लगाएं। हम चिन को अपनी छाती की तरफ ले जाते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर मोड़ेंगे और फिर पीछे की ओर जितनी आपको शक्ति है यथाशक्ति आप उसको झुकाएं, फिर आप सीधे हो जाएं, फिर झुकाएं, फिर सीधे हो जाएं और अंत में गर्दन को गोलाकार में यानी दोनों दिशाओं में यानी हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्रमशः इसको घुमाते रहेंगे। यह गर्दन के लिए एक्सरसाइज है दोस्तों, जिसको हम कहेंगे ग्रीवा संचालन, या सर्वाइकल के लिए। और मैं बोलूँगी कि जिनको चक्कर आने की बहुत दिक्कत होती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी ऊपर से निकली हुई होती है, उनके लिए यह बहुत ही लाभप्रद है। अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों तो हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम, चक्कर आने की प्रॉब्लम, और जो जिनकी रीढ़ की हड्डी स्टार्टिंग से जहाँ गर्ल्स जो हैं वो चोटी बांधती हैं और मेल फीमेल दोनों में एक एक एक गोलाकार के कहते हैं बन करके आ जाता है हड्डी का, तो ये अगर हम एक्सरसाइज नियमित रूप से करेंगे तो हमें उसमें ये फायदेमंद मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम अपना अगला एक्सरसाइज करते हैं आँखों के लिए, यानी त्राटक प्राणायाम, जिसको हम कहेंगे त्राटक प्राणायाम। दोस्तों, हम किसी भी चीज़ को त्राटक बनाएंगे, यानी अब यह ज़रूरी नहीं है कि हम हम मंदिर में बैठ कर के ही करें या हम कहीं पर ही किसी भी कोई ऐसी फिक्स जैसी जगह हो उस पर ही कर सकते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण यह है कि हम एक मोमबत्ती ले लें। अगर हम मंदिर में बैठ के नहीं कर सकते हैं तो एक मोमबत्ती ले लें और मोमबत्ती को जला लें और उसकी लौ को एकाग्रचित होकर के, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के अपनी आँखों की पुतलियों को नीचे ऊपर ना करते हुए बिल्कुल एक जगह अपनी पलकों को बिना झपकाए एक टक उस मोमबत्ती की लौ को देखते रहना है। स्वतः ही आपके आँखों से हल्का हल्का पानी आने लगेगा और अपनी आँखों को बंद कर लेंगे और उसके बाद हाथों की हथेलियों में घर्षण करके अपनी आँखों पे और चेहरे पे लगाएंगे। दोस्तों, यह पहला परीक्षण हुआ कि हम मोमबत्ती जला करके कर सकते हैं। यदि यह साधन उपलब्ध नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को या किसी भी तस्वीर को या किसी भी एक वस्तु को अपना त्राटक बनाने के बाद में हम अपनी आँखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे हमने किसी तस्वीर को देख लिया, हमने किसी वस्तु को देख लिया, तो त्राटक कंटिन्यू करते हुए हम उसको 10 से जैसे 2 मिनट हो गया और धीरे धीरे करके 5 मिनट भी हम इसको बढ़ा सकते हैं और उसके बाद में हम यह जो भी इस तरीके का प्राणायाम होगा पूर्णता होने के बाद में हाथों की हथेलियों में घर्षण करने के बाद में आँखों पे और चेहरे पे लगाते हुए अपने प्राणायाम को पूर्ण करेंगे। दोस्तों, हम इसके फायदे जान लेते हैं। आज हम लोगों ने जो जाना वो सूक्ष्म व्यायाम के बारे में। सूक्ष्म व्यायाम के दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं, जैसा कि हम लोगों ने बटरफ्लाई किया, चक्की किया, त्राटक किया और ग्रीवा संचालन किया, गर्दन की एक्सरसाइजेस करी, हाथों की हथेलियों की करी, उंगलियों की करी, पैर की उंगलियों की करी, अंगूठों की करी और शोल्डर की करी। तो ये सारी एक्सरसाइजेस जो हैं वो हम कहीं भी किसी भी समय हम यह एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हमको कोई भी चीज़ करने के लिए अपने आप में एक पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि यदि हम यह प्राणायाम या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें इसका लाभ पूर्ण मिलेगा और हमें इससे लाभ जो है वो भी पूर्ण मिलेगा।
तो दोस्तों हमने आज सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बात की और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का जो है सेक्शन वो भी बहुत पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं कुछ नए नए ऐसे प्राणायाम और एक्सरसाइजेस आपके लिए लाती रहूँगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, करें योग, रहें निरोग। नमस्कार दोस्तों, योग की योग पाठशाला में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग सुबह नित्य

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप सभी का वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान. आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 91.6 एफएम. ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो 91.6 एफएम पर. क्यों? क्योंकि यही तो है गोंडा शहर की धड़कन. तो चलिए भाई, बहुत ही बेहतरीन सी धूप निकली हुई है. बेहतरीन सी धूप इसलिए क्योंकि भाई विटामिन डी की जो कमी से आजकल हम जूझ रहे हैं, यानी कई सारे लोगों की रिपोर्ट्स में ऐसा डॉक्टर कहते हैं कि भाई विटामिन डी की कमी ज़रूर हो रही है, तो उसकी पूर्ति के लिए तो फिलहाल हमारे पास एक सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन सोर्स ही होता है कि मॉर्निंग की थोड़ी सी धूप अगर खा लिया जाए तो बेहतर है. हालाँकि मुझे पता है अभी भी आप उठे नहीं हैं ना. ऑलराइट, तो चलिए भाई, अब उठने का वक्त आ गया है. और ज़ाहिर है जब सुबह खूबसूरत सी होती है तो शुरुआत भी अपने आप बेहतरीन हो ही जाती है. सो आज की शुरुआत को और भी लाजवाब, शानदार, बेमिसाल बनाने के लिए, करने के लिए हम आपके साथ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में मौजूद हैं. तो यस, अब चलते हैं अगले सॉन्ग की तरफ. और वापस से जब लौट कर आएंगे तो आने के बाद बताने वाले कि आज का यानी कि थर्सडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या है. आज का थॉट ऑफ द डे आपके लिए क्या लेकर के आया है और आज के थॉट ऑफ द डे में ऐसी क्या बात है जो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर रहा है या फिर आपके लिए एक पैगाम दे करके जा रहा है या फिर आप खुद ही इस थॉट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं कि वाओ क्या बात है, बतौर तोहफा ये थॉट, ओ वाओ. सो एक बार वापस से आप सभी का वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर.

0: हाँ जी भाई, बहकना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये भी लाइफ का हिस्सा है। ऑफ़ कोर्स, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो चलिए भाई, वक्त हो गया है आपको ले चलने का। कहाँ? आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ ले चलने का। सो आज का थॉट ऑफ द डे क्या कहने वाला है? आज का थॉट ऑफ द डे आपके लिए क्या पैगाम लेकर आया है और क्या कहना चाहता है आपसे आज के थर्सडी मॉर्निंग में, यानी वही जिंदगी का एक और दिन, यानी एक छोटी सी जिंदगी का एक और पैकेट इस यूनिवर्स की तरफ से आप और हमारे लिए जब मिला है तो उसके लिए एक बेहतर सा तोहफा आज का थॉट ऑफ द डे।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो आज का थॉट क्या कहता है, चलिए आपको ले चलते हैं थॉट से रूबरू कराने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको पता है ना कि आज तारीख क्या है। फाइनली सितंबर हमसे विदा हो चुका है, अक्टूबर आ गया है। ये कुछ चंद ऐसे महीने हैं जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आते हैं अपने ठंड होने के वजह से। मेरा खुद का भी पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ठंड के रिगार्डिंग, क्योंकि वो बचपन की कुछ यादें बहुत ही अच्छे से ताज़ा हो जाती है। ठंड में बदलते हुए पकवान चेंज हो जाते हैं, ठंड के गेम्स ऑफ कोर्स, और वो मोटे मोटे जो है स्वेटर पहन के निकलना। हालांकि ये भी आगे की ठंड की बात है, लेकिन ठंड का एहसास वो सारी चीज़ों को रिकॉल करा देता है। तो चलिए भाई, इस खूबसूरत सी सुबह में आज का थॉट ऑफ द डे आप तक पहुंचा देते हैं। आज का थॉट कहता है कि जिंदगी की कुछ

तो कुछ तय होता ही नहीं है। हाँ, हमारी कोशिशें हमारी चीज़ों में बदलाव ज़रूर लेकर आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ये तब बेहतरीन शक्ल में शुरू होती हैं जब इसके लिए हमने कोई प्लान तैयार ही नहीं किया होता है। और लाइफ कुछ ऐसी जगहों पर ले जाती है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होता है, यानी आप सच में हैरान हो जाते हैं कि ये तो मैंने दूर दूर ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जी हाँ, सो ये कुछ और नहीं है, यही है। ऑफ कोर्स बिना प्लानिंग के शुरू होने वाली चीज़ें अपने आप बड़ी खूबसूरती से ये शुरू हो जाती है। और देखिए ना, ऐसा मेरे ख्याल से आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा ज़िंदगी में, जब आप परेशान हुए होंगे। समटाइम्स होता है क्या है ना कि हम जो प्लान करते हैं, इवन ज़्यादातर ऐसी होता है, जो प्लान करते हैं वो उससे इतर चला जाता है, क्योंकि मैंने कहा लाइफ तो पानी की तरह है, जिधर बहना चाहेगा बहेगा, उसको हम सिर्फ डायरेक्शन देने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। एंड जब ऐसा होता है कि भाई फाइनली हमने बहुत प्लान बनाए होते हैं और वो चीज़ें नहीं होती हैं, या अचानक से लगता है अरे ये क्या बुरा हो गया, ज़िंदगी में ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ आप केजेस में फंसे होते हैं, कुछ ऐसे पिंजड़े होते हैं जिसको आप अपना आसमान समझ लेते हो, लेकिन एक्चुअल में एक ऐसा वक्त आता है जब उस पिंजड़े को छोड़ना पड़ता है और आपके लिए कहीं ना कहीं खुला आसमां इंतज़ार कर रहा होता है। तो शायद कभी अगर आपके साथ ऐसा हुआ है जब आपको लगा हो कि ये अनएक्सपेक्टेडली बड़ा बुरा हो गया, और आगे जा कर के एक लंबे अरसे के बाद, एक वक्त के बाद आपने ये महसूस किया हो कि यार ये तो बहुत बेहतर था, इवन इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी, तो बिल्कुल यही चीज़ हम कहना चाहते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे यही बात कह रहा है कि कुछ चीज़ें विदाउट प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत, बड़ी ही अलहदा, बड़ी ही लाजवाब, शानदार शुरू हो जाती है जब हम प्लानिंग से नहीं चलते हैं। एंड दिस इज द लाइफ, यही जिंदगी है। जिंदगी का जो तरीका है, जो उसकी चाल है, वो कुछ ऐसी ही है। एंड आई होप कि भाई आप भी इस बात से वाकिफ होंगे और इस बात से इत्तेफाक जरूर रखते होंगे, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़कर अपनी लाइफ के कुछ हिस्सों को देखेंगे तो आपको नज़र साफ आएगा कि हाँ, अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ जो हुई थी लाइफ में, जो आपको बहुत बुरी लगी थी, जिसने आपको हिला दिया था, लेकिन उसी ने आपको आगे बढ़ा दिया और उसी ने एक नया नज़रिया, एक नया फेस, एक आपका नया वर्जन दिया जो आप कभी बनना ही नहीं चाहते थे, या आपने सोचा भी नहीं था, या आप वैसे थे ही नहीं, आप एक नए आप बने, है ना। सो कैसा लगा आज का थॉट ऑफ द डे? दरअसल सच कहूँ तो ये आज की पहली तारीख का तोहफा है, आज की अक्टूबर का तोहफा है, और सितंबर की तरफ से ये इल्तिजा है कि जाते जाते अक्टूबर के पहले इस थॉट ऑफ द डे को अपना लीजिए। जी हाँ, यहाँ पे सितंबर की विदाई हुई इस थॉट के साथ और अक्टूबर का आगाज़ हुआ, और इन दोनों ने मिलकर ये कहा है कि चाहे सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, बस तुम और तुम्हारी ज़िंदगी, ये तुम्हारे हिसाब से बेहतर होनी चाहिए, अच्छी महसूस होनी चाहिए, और इसी के रिगार्डिंग ये थॉट ऑफ द डे है। एंड आई होप कि आपको आज का थॉट ऑफ द डे फर्स्ट ऑफ अक्टूबर का ज़रूर पसंद आया होगा। तो भाई अक्टूबर का ये तोहफा आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और हाँ, अब अगर कोई नई शुरुआत होती है तो परेशान नहीं होना है, शायद एक पिंजड़े से आज़ाद होकर एक आसमान की तरफ आप आ रहे हो।

0: आपके भेजे गए कई सारे कमेंट्स को पढ़ने का और बताने का, क्या कुछ लिख भेजा है आपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में आरजे अदनान के पास। तो काफ़ी सारे मैसेजेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सो इन मैसेजेस में कितना सारा प्यार है। यस, और इन मैसेजेस को चलिए हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि आप हमको सुनते हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम को फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। सो उसी एप्लीकेशन पर आपको चैट का ऑप्शन मिलता है जिस पर आप जो कुछ लिखते हैं वो हम तक आ जाता है। फिलहाल क्या कुछ लिखा है जो हम तक आ चुका है, लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

आशु जी लखनऊ से लिखती हैं, भाई सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी, आपकी नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए कि दुखों की सारी बातें आपकी पुरानी हो जाए, चेहरे पर हो इतनी मुस्कान, आपकी मुस्कान भी आपकी दीवानी हो जाए। थैंक यू सो मच टू यू, बहुत शुक्रिया, बड़ा प्यारा सा मैसेज है, थैंक यू। एंड अरविंद जी हैं, सुप्रभात आरजे अदनान सर, आप खुश रहें, मस्त रहें, यही प्रार्थना ईश्वर से। इतनी बड़ी प्रार्थना और शायद इसका शुक्रिया तो अदा नहीं किया जा सकता। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि मैं खुद आपके लिए बहुत सारी दुआएं करता हूँ कि आप खुश रहें और पूरी फैमिली आपकी खुश रहे और खुशी से ज़्यादा सुकून में रहे, सबसे बड़ी चीज़। थैंक यू। एंड इसके बाद जो है आप लिखते हैं कि हर सुबह का एक नया मौका है, बीते कल को भूलकर आज को बेहतर बनाओ, इरादा नई सुबह नई ऊर्जा, नया इरादा यही है जिंदगी का जादू, कर्म आज का दिन आपका है, इसे शिकायतों में नहीं कोशिशों में बिताओ, अपनी मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करो, आधी सफलता तो यही मिल जाती है, आपका आज का दिन मंगलमय और शुभ हो आरजे अदनान जी। थैंक यू सो मच टू यू, और आपका भी दिन बहुत ज़्यादा लाजवाब बीते, ऐसी मेरी भी दुआएं हैं। एंड हमारे धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास मौजूद हैं और लिखते हैं, माय फ्रेंड्स एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। धर्मेंद्र जी आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। इसके बाद हमारी सविता दुबे जी हैं हरखापुर गोंडा से, और धर्मेंद्र जी लिखते हैं, बहुत ही प्यारा संगीत सुबह सुबह आपने दिया है, थैंक यू सो मच कि आपको पसंद आया सुबह का ये सॉन्ग। इसके बाद सविता जी लिखती हैं, चूंकि मैंने धूप के बारे में बताया था, मुझे धूप में 4 घंटा रहने वाला, मतलब आप रहने वाली हैं, राहुल सर ने बताया था, 1 घंटे रहती हूँ धूप में और चलती हूँ पैदल, बहुत अच्छी बात है, ये लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंजेस है, पैदल चलना और धूप को लेना, ये अपने आप में आज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हम सब लोगों के लिए बन चुका है, जिसको आपकी ही तरह हम भी अपनी चीज़ों को चेंज करके अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। एंड प्रीति जी बहराइच से लिखती है, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपने लिखा है 100% हकीकत बयां कर रहा है आज का ये थॉट, अक्सर ज़िंदगी में ऐसा होता ही है अधिकतर। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, आपने भी महसूस किया है तो आप इसको समझ पा रहे हैं। सविता दुबे जी भी कहती हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है सर, बहुत प्यारा, बहुत सही बात कही, थैंक यू सो मच टू यू। इसके बाद हमारी आशुमशु जी लखनऊ से कहती हैं, जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में जब कुछ भी होता है किसी भी वजह से, या तो आपको कुछ बना कर जाता है या तो फिर कुछ सिखा कर, परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचारों को हल करे ज़रूर निकलेगा। ऑफ कोर्स, बहुत ही प्यारा सुविचार, थैंक यू सो मच कि आपको भी ये सुविचार बहुत प्यारा लगा। एंड सविता जी लिखती हैं, सुविचार बहुत प्यारा है इसीलिए मैं उड़ने में परी बन गई हूँ सर। ऑलराइट, चलिए उड़ता ही फिरूँ मैं इन हवाओं में कहीं, राइट। हमारी पूर्णिमा लिखती हैं, गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग टू यू, मैं बहुत बेहतरीन हूँ, आई होप कि आप भी ज़रूर अच्छी होंगी। एंड हमारे धर्मेंद्र जी लिखते हैं, अदनान सर गुड

मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। आप आगे लिखते हैं, चाहे अमीर व्यक्ति हो या चाहे गरीब व्यक्ति, उसकी अपनी सबसे बड़ी संपत्ति सुख और दुख है। जब तक वो व्यक्ति जीवित रहता है ना मेरे दोस्त, क्या बात है। एंड पूर्णिमा लिखती हैं, कभी कभी एक ऐसा एहसास ही बहुत है सुकून देने के लिए। डेफिनेटली, बहुत ही प्यारा थॉट लिखा है, थैंक यू सो मच। और आपने लिखा है कि आज पापा का श्राद्ध है तो आज सब लोग घर पर हैं। चलिए, ये फैमिली यूं ही यूनाइट रहे और सुकून के साथ आपकी ज़िंदगी बीते और खुशहाल रहे आपके कई सारे दिन, ऐसी हम दुआ करते हैं। और आपने लिखा है, सर बहुत ही प्यारा सॉन्ग प्ले किया आपने, हम तो खाना बनाते हुए एंजॉय कर रहे हैं। आए है, है, क्या बात है भाई, एक तरफ खाना भी बन रहा है, दूसरी तरफ एंजॉयमेंट भी। और ये देखिए, ये सुनते ही पूर्णिमा जो है वो मुस्कुरा भी रही हैं, थैंक यू। चलिए, फिलहाल मुस्कुरा तो आप भी रहे हैं और अब ये अगला सॉन्ग भी कुछ ऐसी ही फीलिंग देने वाला है। फिलहाल आपको ले चलते हैं ये खूबसूरत से नगमे की तरफ, वापस से आएंगे, आज आपके लिए गोंडा अपडेट्स भी मौजूद है। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर, क्योंकि यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: सुभाई, चलिए फिलहाल वक्त है आपको ले चलने का आज के थॉट ऑफ द डे के बाद। अब वक्त है आज की गोंडा अपडेट्स का, यानी क्या कुछ चल रहा है अपने सिटी में। सो लेट्स गो फॉर सिटी अपडेट्स।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

हाँ जी, तो चलिए भाई लेके चलते हैं आपको अपडेट्स की तरफ। और पहली जो अपडेट आ रही है वो बाढ़ से जुड़ी हुई आ रही है। सो बाढ़ का काफ़ी प्रकोप जो है वो साफ नज़र आया है, और इसी के चलते घर से निकले एक युवक की बाढ़ में डूबने से मौत भी हुई है। जी हाँ, सो विष्णुहरपुर में घर से मजदूरी के लिए निकले एक युवक की कल यानी बुध को गाँव के ही पास बाढ़ के पानी में डूब जाने से मौत हो गई। सो इंदरपुर गांव के मजरेपुरे अंबर निवासी ब्रजेश कुमार जो है कल सुबह मजदूरी के लिए घर से निकले थे, और दोपहर 12 बजे के गांव में पास मौजूद मेन रास्ते के बगल जा रहे थे, तभी पैर फिसलने से ये बाढ़ के पानी में चले गए और डूबने लगे। सो लोगों ने पहुंचकर इन्हें पानी से बाहर निकाला।

CHC ले गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इसके अलावा अगली जो अपडेट आ रही है वो बाढ़ से ही जुड़ी हुई आ रही है, और बताया जा रहा है कि 25,000 आबादी जो है वो अफेक्टेड हुई है इस बाढ़ से। सो उमरी बेगमगंज क्षेत्र में ऐली परसौली गढ़ी परास जबनगर बहादुरपुर व्योंदा और दत्तनगर बाड़ी माझा समेत 2 दर्जन से ज़्यादा गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में है, और तकरीबन 25,000 आबादी जो है वो अफेक्टेड होने का अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है। सो कई परिवार जो है वो ऊंची जगहों सड़कों और रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं, और करनैलगंज के नकहरा गांव में 9 मजरों में मंगल की अगर हम बात करें तो पानी घुसा था और बुध को घटने लगा। करीब 2 दर्जन परिवार जो है वो अपने जानवरों के साथ बांध पर रुके थे। इसके अलावा चलते हैं आगे की तरफ। सो अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है टीकाकरण से जुड़ी हुई। जी हाँ, सो गोंडा की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में गोंडा ने HPV जो टीकाकरण इस वक्त लगाया जा रहा है, ऑफ कोर्स वो बच्चियों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगाया गया है, और इस दिशा में गोंडा के HPV टीकाकरण लक्ष्य को पार कर लिया गया है। सो आपको बता दें कि 15 साल की किशोरियाँ हैं उनके लिए ज़िले में 44,395 टीका का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया था। इसके सापेक्ष 44,580 जो किशोरी हैं उनको टीकाकरण किया जा चुका है, एंड इसी के साथ ही साथ इससे क्या होगा कि भविष्य में कोई संक्रमण से बचाव में मदद मिलेगी। सो बेलसर CHC की ब्लॉक कार्यक्रम जो प्रबंधक है उन्होंने बताया कि HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण सर्वाइकल कैंसर से जुड़े जो इसके प्रमुख जोखिम है उसमें शामिल है। सो किशोरावस्था में HPV टीकाकरण भविष्य में संक्रमण का जो जोखिम है उसको कम करने में मदद कर सकता है। ऐसे में लक्ष्य से ज़्यादा किशोरियों का टीकाकरण स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। एंड इसके अलावा आप चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है उसकी तरफ चलेंगे ऑफ कोर्स, और अगली जो अपडेट है वो साइबर ठगी से जुड़ी हुई आ रही है। सो मोबाइल फ़ोन में APK फाइल डाउनलोड कराकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के जो सरगना है उसको साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सो पुलिस ने उसके कब्जे से आईफोन और 3,170 रुपये नकद बरामद किए हैं। सो पुलिस के मुताबिक अगर माने तो गिरोह के जो मेंबर्स हैं उन लोगों के मोबाइल नंबर का एक्सेस हासिल करके उनके खातों से रकम ये निकालते थे। इसके बाद इसी ठगी की रकम से महंगे सामान ज्वेलरीज फ्लाइट टिकट्स ये खरीदे जाते थे। सो आपको बता दें कि आवास विकास कॉलोनी के ही रहने वाले एक शख्स के मोबाइल में APK फाइल डाउनलोड करा करके साइबर ठगों ने इनके खाते से 5,23,000 रुपये निकाल लिए थे। सो पुलिस के हिसाब से ठगी की रकम से मेक माई ट्रिप के ज़रिए कई सारे 5 स्टार होटल्स में बुकिंग कराई गई। सो कुछ रकम IFDC बैंक की तरफ से डिजिटल रूप में जारी किया गया क्रेडिट कार्ड से सेटल की गई। सो आपको बता दें कि साइबर थाना प्रभारी सत्यप्रकाश यादव ने बताया कि साइबर विशेषज्ञ मोहन यादव की टीम शिकायत के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, और CEO ने बताया कि विवेचना के दौरान गिरोह के सरगना राजस्थान सीकर ज़िले के नीम का थाना सदर क्षेत्र के टोडा निवासी दीपक सिंह तंवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सो धोखाधड़ी कैसे करते थे इस बात को आपके लिए भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप भी ऐसे ट्रैप से बच सके। सो पूछताछ में जो आरोपी है उसने पुलिस को बताया कि गिरोह के जो मेंबर्स हैं लोगों के मोबाइल नंबर में यानी कि मोबाइल पर APK मालवेयर डाउनलोड करा करके उनका एक्सेस हासिल करते थे। इसके बाद अलग अलग सिम कार्ड्स के ज़रिए डिजिटल बैंक खाते खुलवा करके ठगी की रकम में जमा कराई जाती थी। सो आरोपी की माने तो रकम को FD में बदलने के बाद उसके बेस पर लगभग उतनी ही रकम का डिजिटल क्रेडिट कार्ड हासिल किया जाता था। इसके बाद क्रेडिट कार्ड से जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनसे ज्वेलरीज फ्लाइट टिकट्स और बाकी महंगे सामान जो हैं वो ख़रीदे जाते थे। सो ख़रीदारी के बाद क्रेडिट कार्ड बंद कराने का जो है वो अनुरोध भी किया जाता था, और आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो अपने नाम से सिम कार्ड या बैंक खाता संचालित नहीं करता था, ये सब दूसरों के नाम से होता था। सो आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आपके फ़ोन पर

APK फाइल आती है अननोन नंबर से WhatsApp पे और या फिर SMS के ज़रिए, तो आपको अगर कहा जाता है कि ये फ़ाइल ज़रा आप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि इसमें डिटेल्स है, ऐसा है वैसा है, तो ये जान लीजिए सीधे सीधे ये फ्रॉड्स हो सकते हैं। इसलिए इनकी शिनाख्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप ऐसी चीज़ों से ज़रूर बचे रहें। इसके अलावा आपको हम बता दें कि यौन अपराधों से बचाने के लिए चलेगा अभियान। सो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए, उनके जो राइट्स हैं उनके प्रति जागरूक करने के लिए ज़िले में विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पूरे हफ्ते भर अभियान चलाया जा रहा है। सो कल यानी बुध को ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो सचिव हैं अंकिता सिंह ने हारीपुर में मौजूद मेडिकल कॉलेज में बताया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए समाज की सोच में बदलाव ज़रूरी है। सही और गलत में फ़र्क समझने के साथ गलत को गलत कहने की हिम्मत भी विकसित करनी होगी। सो इस दौरान काफ़ी सारे लोग जो है वो मौजूद रहें। और साथ ही साथ अब चलेंगे अगली अपडेट्स की तरफ। आपको हम बता दें कि यूनिवर्सिटी में 4 सब्जेक्ट्स के शोध प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण हो रहा है। जी हाँ, सो माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी में PhD शोधार्थियों के शोध प्रस्तावों का ऑनलाइन जरिए प्रस्तुतीकरण किया गया है। इसमें भूगोल, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र और वनस्पति विज्ञान विभाग के जो शोधार्थी हैं, इन्होंने अपने अपने शोध जो है वो प्रस्तुत किए हैं। शोधार्थियों ने शोध विषय की पृष्ठभूमि, उसका उद्देश्य, उसकी ज़रूरत, अपनाई जाने वाली शोध पद्धति और संभावित परिणामों के बारे में विषय विशेषज्ञों की जानकारी दी। सो भूगोल विषय के शोधार्थियों ने भौगोलिक विषयों से जुड़े स्टडी की रूपरेखा प्रस्तुत की है। वहीं शिक्षा शास्त्र के शोधार्थियों ने शिक्षा से जुड़े शोध विषयों और उनके स्टडी की पद्धति पर भी प्रकाश डाला है। अर्थशास्त्र के शोधार्थियों ने आर्थिक विषयों से संबंधित प्रस्तावित शोध कार्यों की जानकारी साझा की है। वनस्पति विज्ञान के शोधार्थियों ने वनस्पति और उससे जुड़े हुए वैज्ञानिक अध्ययन के प्रस्ताव विशेषज्ञों के समक्ष रखे हैं। इसके अलावा अब आपको ले चलते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो है वो ऑफकोर्स खेल से जुड़ी हुई आ रही है। सो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ है ट्रायल। 11 से 16 अक्टूबर तक चित्रकूट में होना है प्रतियोगिता। सो आपको बता दें कि ज़िला हैंडबॉल एसोसिएशन की तरफ से बुध यानी कल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खिलाड़ियों का जो मंडल स्तरीय ट्रायल था वो कराया गया और इसमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 15 मेंबर्स की टीम का सिलेक्शन किया गया है। सो आपको हम बता दें पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक राज्य स्तरीय हैंडबॉल सीनियर पुरुष प्रतियोगिता 11 से 16 अक्टूबर तक चित्रकूट मंडल में कराई जानी है, जिसको लेकर के ये ट्रायल किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि 266 सफाई मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में कल बुध को स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा सेवा सम्मान शिविर का आयोजन किया गया। सो जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर, इन लोगों के मार्गदर्शन में शिविर लगा। इसमें लखनऊ जंक्शन पर 104 स्वच्छता मित्रों का स्वास्थ्य और उनके दांत का परीक्षण किया गया है। इसके अलावा अगर हम गोंडा की बात करें तो गोंडा में 100, मैलानी में 10 और बस्ती में 20 कर्मचारियों सहित 266 जो कर्मचारी थे इनका कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का परीक्षण कराया गया है। इसके अलावा आपको हम बता दें आज के होने वाले इवेंट्स के बारे में। सो सुबह 9 बजे से परसपुर ब्लॉक संसाधन केंद्र में टीचर्स का FLN प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको हम बता देते हैं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सिसवा मनकापुर में NCC के जो वार्षिक प्रशिक्षण शिविर है उसका भी आयोजन सुबह 11 बजे से किया जा रहा है। इसके अलावा दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में वृद्धजन दिवस पर वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी आज किया जाएगा। एंड 2 बजे दोपहर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हैंडबॉल सब जूनियर बालिका वर्ग खिलाड़ियों का ट्रायल भी कराया जाएगा। सो इस मामले में हमने आपको बता दिया है, काफ़ी सारी अपडेट्स आप तक पहुंच गई है एंड आई होप कि भाई अब आप भी इन अपडेट्स से रूबरू हो ज़रूर हो गए होंगे। और फिलहाल अब वक्त है आगे बढ़ने का एंड वापस से आने के बाद इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास और मेरे पास, सो साझा करेंगे और स्पेशली आप तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है, तो आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। लेकिन उससे पहले आइए इस खूबसूरत से सॉन्ग को एंजॉय करते हैं आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में विद योर मॉर्निंग चौकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग चौक आरजे अतनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका गुड मॉर्निंग गोंडा शो वाला होस्ट, यानी कि आपका अपना आरजे अतनान। सो चलिए भाई, बातचीत तो बहुत सारी अभी होनी बाकी है। जैसा कि हमने कहा भी था कि आने के बाद आपको काफ़ी कुछ बताने को है, एंड ऑब्वियस सी बात है मेरे पास काफ़ी कुछ रहता है जो आपसे साझा करना होता है, आपसे बताना होता है ना। सो इसी कड़ी में आज हम कुछ आपको बताने वाले हैं चार्ली चैपलिन के बारे में। ऑफ कोर्स एक ऐसा नाम जिसको पूरा जहां पूरी दुनिया जा

बतौर कॉमेडियन जो है चार्ली चैपलिन को दुनिया जानती है, और साइलेंट कॉमेडी के ज़रिए उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और न जाने कितने लोगों के दिलों में राज किया और आज भी हैं। हालांकि 1977 में इस दुनिया को अलविदा कह चुके चार्ली चैपलिन जो हैं, उन्होंने बहुत बातें ऐसी कही जो शायद आज आपको सुन करके हैरान करने वाली है कि चार्ली चैपलिन क्या सोचते थे। चार्ली कहते थे कि कुछ भी इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहता, कुछ भी इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहता, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स भी नहीं। जी हाँ, एंड ये बात तो सच है कि इस दुनिया में हमेशा के लिए तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी इस दुनिया में या तो आया है, या तो पैदा हुआ है, या तो उगा है, अपना वक्त लेकर के, पेड़ उगते हैं, कई सालों बाद सूख जाते हैं, फल उगता है कुछ ही दिनों में सूख जाता है, फूल उगता है वो भी झड़ जाता है, इंसान पैदा होता है वो भी खत्म हो जाता है, चट्टाने होती हैं वो भी हट जाती हैं। हर एक चीज़ की अपनी एक उम्र है, इवन इस दुनिया की, इस पृथ्वी की भी अपनी एक उम्र है। और उसी तरह चार्ली चैपलिन कहते हैं कि कुछ भी इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहता, इवन हमारी प्रॉब्लम्स भी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स जब हमेशा रहने वाली है और हम अपनी प्रॉब्लम्स से ही इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं। चार्ली कहते हैं कि मुझे बारिश में चलना पसंद है, क्यों? ताकि कोई मेरे आंसू ना देख सके। दुनिया भर को हंसाने वाला और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाला शख्स सच में अंदर से कैसा महसूस करता था, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी तो फेसेस अपना स्माइल दिखाते हैं लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा होता है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी बड़ी ही सैडनेस के साथ में गुजर रही है, बल्कि ये कि जो कुछ बाहर हम दिखाते हैं और हम सोचते हैं अंदर से हम ही ऐसा महसूस कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत लोगों के और सब किसी के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है जो बाहर नजर नहीं आता है। इसके अलावा चार्ली कहते हैं दुनिया के 6 सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो क्या है? धूप, आराम, व्यायाम, अच्छा खाना, आत्मसम्मान और अच्छे दोस्त। यानी ये ऐसे डॉक्टर हैं जो आपकी लाइफ को बहुत हद तक बदलते हैं। धूप बहुत ज़रूरी होती है जिससे इतना ज़्यादा बचने की कोशिश करते हैं, व्यायाम जो कि कर ही नहीं पा रहे हैं, आराम ये भी बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा खाना बेशक अच्छा खाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आत्मसम्मान भाई किसको नहीं चाहिए, हर कोई तो आत्मसम्मान के लिए करता है, और इसके अलावा अच्छे दोस्त। अच्छे दोस्त का मतलब ये है कि वो दोस्त जो सच में आपको हील करें, जब भी आप ऐसा महसूस करें तो आपके पास होने चाहिए। और दोस्त का मतलब ये कतई नहीं होता है कि अलग के लोग होंगे, आपकी उम्र के लोग होंगे, नहीं, कोई भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, बस आपको फीलिंग आनी चाहिए फ्रेंडशिप वाली, राइट? सो चार्ली कहते हैं कि हम सभी इस दुनिया के मुसाफिर हैं और ईश्वर ने हमारे यात्रा मार्गदर्शक हैं जो हमारा जर्नी चल रही है, जिन्होंने हमारी मंजिल, रास्ते और पड़ाव पहले से तय कर रखे हैं। इसके अलावा चार्ली ये भी कहते हैं ज़िंदगी बस एक सफ़र है, आज में जियो और जीना सीखो। सो ये सफ़र है जो कि चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और आज में ही जीना है और जीते ही चले जाना है। चार्ली ये भी कहते हैं कि ज़िंदगी का सबसे बेकार दिन वो है जिस दिन हम हंसे ही नहीं हों। जी हाँ, चार्ली कहते हैं कि ज़िंदगी का सबसे बेकार चला गया दिन वो है, व्यर्थ चला गया दिन वो है जिस दिन हम हंसे ही ना हों। सो कुछ ऐसी ही बातें हैं मानने को चार्ली की, एंड आई होप कि आप भी इन बातों को कहीं ना कहीं रिलेट ज़रूर कर पा रहे होंगे। एंड हमारी

सविता दुबे जी भी लिखती हैं कि मैं भी जानती हूँ छोटे मूंछ वाले बहुत ही प्यारे अच्छे इंसान, मैं उनको बहुत मानती हूँ, थैंक यू सो मच। मैंने कहा था ना चार्ली को पूरी दुनिया जानती है। चार्ली एक ऐसे शख्सियत हैं जिनकी कॉमिक टाइमिंग, जिनके सटायर और जिनकी बातें, चूँकि बोल के तो उन्होंने कभी की नहीं लेकिन जो हरकतों से दिखाया उससे पूरी दुनिया ने हंसा। और चार्ली खुद कहते हैं कि वो दिन सबसे बेकार दिन जाता है जिस दिन आप हंसते ही नहीं हैं। खैर ये तो चार्ली का मानना था। अब किन बातों को आप सच में सोच पा रहे हैं और किन बातों को आपने सच में रियलाइज़ किया है या शायद करना चाहेंगे ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल चार्ली की ये बातें आपको कैसे लगी ये ज़रूर आप मन ही मन में सोच सकते हैं। एंड आई होप कि मेरी तरह आपको भी चार्ली की कुछ बातें सच में दिल में घर कर गई होंगी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। सो चलिए फिलहाल चलते हैं इस खूबसूरत से नगमे की तरफ, वापस से आएंगे, आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ आपके लिए। बने रहिए गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।

0: चलो बच्चों, अच्छा बताओ, छोटी मधुमक्खी तुम्हें क्या देती है?
1: शहद।
0: अच्छा अब बताओ, पतली बकरी क्या देती है?
1: दूध।
0: और मोटी भैंस?
2: मैं चिंटू बताएगा।
0: अच्छा ठीक है चिंटू, तुम भी बता दो।
3: मैडम जी, वो मोटी भैंसिया पहले ढेर सारा होमवर्क देती है, फिर थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़।
0: मारे क्या?

0: तो भाई इन्हीं सारी बातों के बीच में अब वक्त हो गया आपको बॉलीवुड की तरफ लेकर चलने का और बताने का कि क्या कुछ चल रहा है फिलहाल बॉलीवुड में, कौन सी मूवी आ रही है और किसके बारे में हम आपको आज का रिव्यू देने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda, with your favorite RJ Khan.

सुप्रेम कीटाणु का मलयालम की चर्चित फिल्म प्रेमालू का हिंदी एडॉप्टेशन माना जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं एस्पिरेंट्स सास बहु अचार और सिर्फ एक बंदा काफी समेत कई कहानियों में काम कर चुके निर्देशक अपूर्व सिंह कार्की अब प्रेम कीटाणु से लेकर के आ रहे हैं। सो प्रेम कीटाणु आखिर में है क्या और आखिर इन चीज़ों का क्या मतलब निकल के चला आ रहा है? जी हाँ, सो दरअसल आपको बता दें कि प्रेम कीटाणु को मलयालम की जो बहुत फेमस मूवी है प्रेमालू, उसका हिंदी एडॉप्टेशन माना जा रहा है। और मीडिया से बातचीत में फिल्म के जो निर्देशक हैं अपूर्व सिंह कार्की, इस सवाल का जवाब देने के साथ ही अपने कुछ अनुभव भी इन्होंने साझा किए हैं। सो क्या कहा है? सवाल ये था कि भाई प्यार कॉमन है, बाकी बदल देना चाहिए। सो अपूर्व ने कहा, मेरा मानना है कि किसी दूसरी भाषा की कहानी को अडॉप्ट करते वक्त उसके सिर्फ मूल भावना रखनी चाहिए। प्यार, कॉलेज का दौर, करियर का तनाव और पैसे की परेशानी जैसे भाव हर जगह एक जैसे होते हैं, लेकिन उस भाव के आसपास की दुनिया, शहर, माहौल, बातचीत और किरदार बदलने चाहिए। हमारी सबसे ज़्यादा मेहनत इसी पर हुई है। इसके बाद कहानियों से अपनापन गायब है। जी हाँ, फिल्म के आइडिया पर अपूर्व कहते हैं कि आज के वक्त में स्क्रीन पर सब कुछ है, लेकिन वो अपनापन गायब है जो हम असल ज़िंदगी में जीते हैं। सो ऐसी कहानी कम देखने को मिलती है जो उस एहसास की बात करे जो हम कॉलेज में और उसके बाद महसूस करते हैं। कॉलेज में किसी लड़की को पसंद कर लेना आसान लगता है, लेकिन कॉलेज ख़त्म होते ही ज़िंदगी बदल जाती है। नौकरी की फिक्र, पैसे की परेशानी और फादर के ताने जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ लड़की की अपनी नौकरी और करियर है। हमें इन्हीं सारी भावनाओं में कहानी नज़र आई। सोचा कोई ऐसी प्रेम कहानी भी कहो जो हमारी अपनी ज़िंदगी जैसी लगे। पहली फिल्म उन्होंने ही दी। जी हाँ, मनोज वाजपेयी के साथ दोबारा काम करने को लेकर ये कहते हैं कि मनोज जी के पास कोई हल्की कहानी लेकर नहीं जा सकते। वो पूरी चीज़ बैठकर सुनते हैं, जब उन्हें पसंद आती है तभी बोलते हैं मेरी पहली फिल्म सिर्फ एक बंदा ही काफ़ी है। मुझे मनोज जी ने ही दी, इसलिए मैं उनके पास कोई कहानी लेकर जा रहा हूं, तो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा नए कलाकारों को लेकर के मौका देने पर भी सवाल हुआ। निर्देशक बताते हैं कि आज के दौर में बिना स्टार के अच्छी फिल्म को दर्शक तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। इस पर अपूर्व कहते हैं, मुझे लगता है दोनों बातें सही है। फिल्म में बड़ा स्टार आता है तो उसका फ़ायदा फिल्म को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नए चेहरे के लिए दरवाज़ा बंद कर दे। अगर नए लोग आएंगे ही नहीं तो नए स्टार्स बनेंगे कैसे? फिलहाल आपको हमने बताया कि प्रेम कीटाणु, जो मलयालम फिल्म प्रेमालू का हिंदी एडॉप्टेशन जो है माना जा रहा है, जिसको लेकर के फिलहाल ये बातचीत हुई है मीडिया कर्मियों की निर्देशक के साथ में। और निर्देशक, जैसा कि मैंने बताया, इनका जो नाम है, ऑफ कोर्स निर्देशक हैं अपूर्व सिंह कार्की, जिनसे ये ख़ास बातचीत हुई फिल्म प्रेम कीटाणु को लेकर के। आई होप कि इस फिल्म का आपको भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार होगा कि भाई आप भी देखें और आप भी ज़रूर बताएं कि आखिर ये फिल्म आपको कैसी लगती है, जिसके बारे में बताया कि भाई वो फीलिंग जो हम अपनी रियल लाइफ में महसूस करते हैं वो इसमें डालने की कोशिश की गई है। तो मे बी कुछ अलग और एक्सपेरिमेंटेड चीज़ हमको नज़र आ सकती है। फिलहाल हमारे धर्मेंद्र मोहन जी, इससे पहले जो मैंने बात कही थी उसको लेकर के बताया, जो कि चार्ली चैपलिन के बारे में थी, और आप कहते हैं सर जी जो बिन बोले अपनी कला को प्रदर्शित कर दे वो बेस्ट इंसान है। जिस तरह से हमारी भाषा, हमारा बोलना जो है हमको एक्सप्रेस करता है, हमको कहने का मौका देता है, उसी तरह से हमारे एक्सप्रेशंस और हमारे हाव भाव भी जो हैं वो एक तरह का मीडियम होते हैं, एक तरह का ज़रिया बनते हैं कम्युनिकेट करने का या अपनी चीज़ों को बाहर शो करने का। एंड फिलहाल इस मामले में चार्ली चैपलिन बहुत बेस्ट इंसान है। सच में उन्होंने जो कुछ खामोश रहकर दे दिया वो आज इतने सारे पंचज में भी साफ नज़र नहीं आ पाता।

आयु आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सो फिलहाल एक बार वापस से आपका स्वागत है आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गुना में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है रेडियो 11.6 FM, ये है गोडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो भाई, इतनी सारी बातचीत के बीच में अब चलिए वक्त है आपको कुछ और बातों से रूबरू कराने का। क्यों? क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी अपडेट्स लेकर के आते हैं जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम की होती है। सो काफ़ी वक्त से शायद आपने अभी तक जॉब की अपडेट नहीं मिली थी, तो चलिए आज आपको जॉब की अपडेट भी हम दे देते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है और अगर हम तक पहुंचती है तो जाहिर है हम पूरी कोशिश करते हैं कि भाई ये जॉब्स की नोटिफिकेशन आप तक भी पहुँचे, ताकि अगर आप भी अप्लाई करने के इंतज़ार में हैं तो फटाफट से आप भी अप्लाई कर सके। सो किस चीज़ में ये वैकेंसी आई है, किस डिपार्टमेंट की है, क्या क्राइटेरिया है, ये सारी डिटेल्स आइए आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट सा वाला म्यूज़िकल ब्रेक, ब्रेक के उस पार वापस से जैसे ही हाजिर होंगे वापस आपको आकर के बताने वाले हैं कि आखिर किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है और क्या कुछ उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाने वाले हैं आपके मॉर्निंग शो में। फिलहाल आप बने रहिए गोंडा एफएम रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM पर, क्योंकि ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: तो चलिए, वक्त हो गया है आपको वैकेंसी बताने का। आखिर कौन सी वैकेंसी आई है, किस डिपार्टमेंट में आई, और क्या कुछ करना होगा आपको इस वैकेंसी को इसमें अप्लाई करने के लिए। सो लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan.

सो IOCL वैकेंसी 2026 आ गई है। इंडियन ऑयल ने रिफाइनरी यूनिट के लिए निकाली है भर्ती, जिसमें बिना एग्ज़ाम सीधे नंबरों से बन जाएगी मेरिट। जी हाँ, अगर आप फ्रेशर हैं और करियर शुरू करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक मौका हो सकता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये मौका लेकर आया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी रिफाइनरी के लिए ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली है। सो जॉब की ट्रेनिंग और कंपनी में काम का अनुभव लेने का ये एक अच्छा चांस हो सकता है। 12 से 24 महीने जो भी कैंडिडेट्स IOCL के साथ काम करेंगे। जी हाँ, सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 3 ट्रेड डिसिप्लिन के लिए ये भर्ती निकाली है। इसमें अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, ट्रेड अप्रेंटिस मैकेनिकल और टेक्निकल अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन शामिल है। इसके लिए कुल मिलाकर के 58 सीट्स पर जो योग्य कैंडिडेट्स हैं वो चुने जाएंगे। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया में कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट को उनके नंबर्स के ज़रिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इसकी तारीख जो है वो नवंबर में है। जी हाँ, सो अगर मैं एक समरी में आपको इसकी डिटेल बता दूँ, सो ट्रेड डिसिप्लिन योग्यता अगर हम बताएं तो ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर है जो कि 3 साल की BSc मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल के ऑफकोर्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए इसकी डिग्री होनी चाहिए और इसके अलावा 3 साल की BSc चाहिए। डिसिप्लिन मैकेनिकल के लिए 3 साल की BSc मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री 24 महीने या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डिग्री इसमें भी हासिल होनी चाहिए एंड 3 साल का डिप्लोमा मांगा है टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन में, जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोलर इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इसके कुल मिलाकर के 58 पद जो है वो हैं। यानी जिसमें हमने ये जाना कि भाई ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर का है, फिर केमिकल प्लांट डिसिप्लिन केमिकल का है, उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर डिसिप्लिन मैकेनिकल का है, फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन का है। सो इंडियन ऑयल अप्रेंटिस के लिए ग्रेजुएट डिप्लोमा और रेगुलर फुल टाइम होना चाहिए। संबंधित ब्रांच में कम से कम 50% जो है वो नंबर्स होने चाहिए और SC ST PW BD कैंडिडेट्स को 5% की जो है वो छूट दी गई है। नंबर के अलावा जो है एप्लीकेंट की उम्र भी तय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए, कम से कम 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल। इसका जो निर्धारण है वो 30 सितंबर 2026 के बेस पर किया जाएगा। सो एज लिमिट में SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर सो PW BD कैंडिडेट्स को सरकारी नियम के हिसाब से छूट मिलने वाली है। सो बिना एग्ज़ाम के होगा सिलेक्शन। जी हाँ, नंबर से बनेगी मेरिट। मेरिट लिस्ट में क्वालिफिकेशन में मांगी गई डिग्री में प्राप्त परसेंटेज के ज़रिए बनाई जाएगी। अगर एक या एक से ज़्यादा कैंडिडेट के नंबर एक जैसे होते हैं तो उस सिचुएशन में उम्र में बड़े अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा सेकंड होता है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। सो मेरिट लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट्स को चुना जाएगा उन्हें अगले स्टेज पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल होना होगा और इसमें 10वीं की मार्कशीट या ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, NATS NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेंट की डिटेल्स, बाकी सर्टिफिकेट्स जो भी फॉर्म में लगेंगे उसका वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो दोनों स्टेज क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स की मेडिकल फिटनेस जो है वो चेक की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें अप्रेंटिस के लिए जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे उन्हें बोंगईगांव रिफाइनरी में काम करना होगा। हर महीने सरकारी नियम के हिसाब से स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स को HRA या कंपनी एकोमोडेशन नहीं मिलेगा। सो इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो नवंबर में होना है। अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए 28 सितंबर से एप्लीकेशन विंडो जो है वो ओपन हो गई है और आवेदन की जो प्रोसेस है लास्ट डेट वो 18 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे तक चलेगी। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चुने गए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट 26 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। लिस्ट में जो भी कैंडिडेट्स शामिल होंगे उन्हें फिर 4 से 6 नवंबर 2026 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। सो एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, NATS NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद
अप्लाई करने के लिए पोस्ट कोड सेलेक्ट करना होगा, फिर आगे का प्रोसेस पूरा करना होगा। सो भर्ती से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जो है विज़िट कर सकते हैं, और इससे आपको जो ऐसी जानकारी फ़िलहाल नहीं मिल पाई है या उसको डिटेल्स में आपको जानना है वो सब कुछ आपको मिल जाएगी। सो आई होप कि भाई अब आपके लिए ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा काम की होगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फ़िलहाल वैकेंसी ढूंढ रहे हैं और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से ये अप्रेंटिसशिप के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, आई होप कि ये काफ़ी ज़्यादा आपके काम की होने वाली है। फ़िलहाल आपने ट्यून किया हुआ है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 981 976, 9260 981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब?
3: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 18

0: 9018914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: हाँ जी, सो फिलहाल वापस से एक बार आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। और अब आइए चलते हैं चैट बॉक्स की तरफ और देखते हैं कि भाई चैट बॉक्स पर किसने क्या कुछ लिखा और कौन कौन आ गया है।
4: Now you're listening, Good Morning Koda with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई जो मैंने मैसेज पढ़ा था उसके बाद वापस से आया है और नरेंद्र जी फ्रॉम बलरामपुर मौजूद हैं। और नरेंद्र जी अक्सर आते रहते हैं, 89.6 एफएम के फैमिली मेंबर है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मॉर्निंग वाले शो में, गुड मॉर्निंग गोंडा में। इसके बाद हमारी रेखा कुशवाहा जी भी हैं और आपने बताया गुड मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग टू यू। टुडे इज़ माई मम्माज रेखा कुशवाहा बर्थडे। ओ सो आंटी रेखा कुशवाहा जी, आपको आपके बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम इसको चाहने वाले, इसको सुनने वाले और आरजे अदनान की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, लाइफ टाइम स्माइल करते रहने की, खुश रहने की और हेल्दी रहने के लिए हम सभी दुआएं करते हैं। और आज आपका बर्थडे शानदार हो, आपकी लाइफ बेमिसाल हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच रेखा कुशवाहा जी ये बताने के लिए कि आज आपकी मम्मा रेखा कुशवाहा जी का बर्थडे है। सो थैंक यू सो मच। इसके अलावा गुलफशाह सिद्दीकी जी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। आपका भी स्वागत है गुलफशाह मॉर्निंग वाले स्पेशल शो में। एंड यस, हर वो शख्स जो फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुन रहा है, आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि भाई आज का ये शो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी सारी जानकारी थी, बहुत सारी बातें थी और काफ़ी सारा फन भी हुआ। एंड ऐसा ही तो हम चाहते हैं कि भाई इसी तरह तो हम आपके लिए साथ में चलते रहें और ऐसी कोई भी शुरुआत हो तो हम ज़रूर आपको आगे मिले। फ़िलहाल अपना ख्याल आप रखिएगा, क्योंकि आपका ख्याल आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम आपको वापस से मिलेंगे आपके मॉर्निंग वाले शो में। तब तक के लिए आप बने रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर और आने वाले अलग अलग शोज एंजॉय करते रहिए अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर। स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
5: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
4: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
5: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
4: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
6: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
7: नमस्कार श्रोताओं, ज्ञानस्थली रेडियो 89.6 FM के लोकप्रिय कार्यक्रम गांव की गूंज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी जया।
8: मैं हूं समता।
9: और मैं हूं आपकी गीता।
10: और मैं हूं किरण।
7: हम चारों हर सप्ताह किसी ऐसे गांव में पहुंचते हैं जहां आज भी मिट्टी की खुशबू, रिश्तों की गर्माहट और लोकगीतों की मिठास जिंदा है। हमारा उद्देश्य केवल गीत सुनाना नहीं, बल्कि उस जीवन को आपके सामने लाना है जो शहरों की भागदौड़ में कहीं पीछे छूटता जा रहा है।
8: आज हम पहुंचे हैं गोंडा जनपद के एक छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत गांव रामपुरवा में।
9: अरे वाह, हवा कितनी ठंडी और ताजी है ना?
10: देखिए सामने सरसों नहीं लेकिन धान के खेत हवा के साथ ऐसे झूम रहे हैं जैसे हमारा स्वागत कर रहे हैं।
7: अरे उधर देखिए, आम का कितना पुराना बाग है और सारे पेड़ों पर तोते बैठे हैं। सच, गांव की सुबह का अपना अलग ही संगीत होता है।
8: हाँ जया जी, शहर में सुबह गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देते हैं और यहाँ कोयल और गौरैया।
9: सच कहूँ मेरा तो मन कर रहा है कि जूते उतार कर इसी मिट्टी में नंगे पांव दौड़ूं।
7: तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं।
10: नमस्ते काका।
11: खुश रहो बिटिया, कहाँ से आई हो?
7: काका हम ज्ञानस्थली रेडियो से आए हैं।
11: अच्छा, वही रेडियो जिसमें लोकगीत बजते हैं? बहुत अच्छा, गांव का नाम रोशन कर दिया आपने।
7: श्रोताओं अभी सुबह के 7 बजे हैं, सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं है कि महिलाएं अपने घरों के सामने आंगन बुहार रही हैं, कोई गोबर से लिपाई कर रहा है तो कोई तुलसी पर जल चढ़ा रहा है।
8: उधर देखिए मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सिक रही है
9: और उसकी खुशबू, लगता है कि आज का नाश्ता यहीं कर लिया जाए।
10: अगर चाची ने बुला लिया तो मना मत करना।
7: अरे वाह, इतने सारे बच्चे।
12: नमस्ते दीदी।
8: स्कूल जा रहे हो?
12: जी।
9: अच्छा तो बताओ सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है?
12: मुझे तो हिंदी पसंद है।
9: और मुझको साइंस।
10: और बड़े होकर क्या बनोगे?
12: अध्यापिका।
7: तो याद रखिए बच्चों, कोई काम छोटा नहीं होता है, मेहनत करने वाला हर इंसान सम्मान के योग्य है।
8: देखिए इस पीपल के नीचे कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं।
7: नमस्ते दादाजी।
13: नमस्ते बिटिया।
10: ये सुबह सुबह क्या चर्चा चल रही है?
14: खेती की, राजनीति की।
9: बिना राजनीति के चौपाल अधूरी रहती है क्या?
7: लेकिन आज राजनीति नहीं, आज बात होगी गांव की खुशियों की।
14: तब तो बैठिए।
8: अरे ये रही दादी अम्मा।
15: नमस्ते बिटिया।
7: दादी आप हमको बताएंगे कि आपकी उम्र कितनी होगी?
16: अरे बिटिया आप गिना विना छोड़ दिए ना, 80 के ऊपर तो होंगे हुई।
9: फिर भी कितनी फुर्ती है।
16: और अगर काम करत रहो ना बिटिया तो शरीर चलत फिरत रहत है, मशीन निहाय।
10: दादी पहले के गांव और आज के गांव में क्या अंतर है?
16: अरे पहले इतना ज्यादा ढेर कुल्ले सामान नहीं रहत रहा और लोग कितना खुश रहत रहे, और अब देखो महन्नो इतना सामान हो गया है लेकिन सभे एक दूसरे से मतलब मिलियो नहीं पावत है, तनको कोई लगे समय नहीं है।
7: बहुत गहरी बात कही आपने।
16: पहले के वक्त देखो कत्ता बढ़िया रहत रहा, सबे खाना खाए के बाद पूरा गाँव भर चौपाल पे इकट्ठा बैठा जात रहा, एक दूसरे के हाल चाल लिया जात रहा, आल्हा होत रहा, कजरी होत रहा, क्यों बियाहू गावत रहा है, और वही बच्चा लोग सब खेलत रहे। और आज सब मोबाइलिये में हन, जब देखो तब हम के जाने का खिचिर मिचिर किया करत है।
8: क्या आपको पुराने लोक गीत याद है?
17: मैम हम देख ले संतोष भैया मिल जाए तो हम उनको बुला लें।
8: हम बोलते जा रहे
17: हैं। हाँ बोल ठीक है।
9: अरे बहुत ढेर, तो आज हमारे श्रोताओं के लिए कुछ सुना ही दीजिए।
16: अरे हमसे हो ही ना, लेकिन देखो हम किए दी थे और तोहरे लोग हमारे साथ दे दियो।
7: जरूर दादी। श्रोताओं बरसात केवल खेत को ही नहीं बल्कि मन को भी हरा भरा कर देती है, और सावन के दिनों में जब पति परदेश चला जाता है तब गांव की महिलाएं अपने मन की बात गीतों से ही तो कहती हैं। ऐसा ही एक बेहद लोकप्रिय गीत अब हम सुनने जा रहे हैं।

0: क्या मधुर गीत संगीत था।
1: आंखें बंद करके सुनो तो लगता है जैसे कच्चे आंगन में बैठी महिलाएं ढोलक पर यही गीत गा रही हो।
2: दादी, एक बात पूछूं, इस गीत का सबसे सुंदर हिस्सा आपको कौन सा लगता है?
3: अब देखो सुनो, ये महान शिकायतों है, प्यारो है, और साथ में यह कहो कि अगर इंतजार करत हो ना बिटिया तो उहो है, और यही का कहा जात है लोकगीत के कहूँ ना कहूँ मजबूती और ताकत।
4: बिल्कुल, लोकगीतों में बड़े बड़े शब्द नहीं होते लेकिन सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं। सामने किसान काम कर रहे हैं। नमस्ते चाचा।
5: नमस्ते बिटिया।
2: सुबह से काम शुरू कर दिया।
5: किसान की घड़ी सूरज से चलती है, सूरज निकला नहीं कि खेत में पहुंच गए।
0: थकान नहीं होती है क्या?
5: जब फसल लहलाती है बिटिया सारी थकान भूल जाते हैं।
4: आपके लिए खेती क्या है?
5: खेती रोजगार नहीं है, जीवन है। धरती हमारी माँ है, जितना प्रेम दोगे उतना लौटाएगी।
1: आजकल नई पीढ़ी खेती छोड़ रही है।
5: पढ़ाई जरूरी है लेकिन अपनी मिट्टी से रिश्ता नहीं टूटना चाहिए।
2: बहुत सुंदर बात है, अब चलिए खेतों की ओर चलते हैं।
5: आइए बिटिया, जरा मेड़ पर संभल कर चलिए। रात में हल्की बारिश हुई थी, मिट्टी अभी भी गीली है।
1: अरे वाह, मिट्टी की कितनी प्यारी खुशबू आ रही है।
0: शहर में तो लोग इत्र लगाते हैं लेकिन इस भीगी मिट्टी की खुशबू का तो कोई मुकाबला ही नहीं।
2: वो देखो, खेत में बगुले भी उतर आए हैं।
5: जहाँ हल चलता है वहाँ कीड़े निकलते हैं, इसलिए बगुले हमारे साथी हैं। किसान अकेला कभी खेती नहीं करता, प्रकृति भी उसका साथ देती है।
4: वाह, कितना सुंदर विचार है।
1: चाचा, खेती आपने किससे सीखी?
5: अपने बाबा से। उन्होंने अपने बाबा से सीखी थी, तभी बाद में आई खेती पहले अनुभव से चलती थी।
0: और हाँ, अब तो मशीनें भी आ गई हैं।
5: हाँ बिटिया, मशीनें आई लेकिन मेहनत कम नहीं हुई। किसान आज भी सूरज से पहले जागता है और सबसे बाद में आराम करता है।
2: आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या रहती है?
5: मौसम, अगर समय पर पानी मिल जाए तो किसान का चेहरा खिल जाता है, नहीं तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है।
4: सच है, किसान का जीवन उम्मीद पर चलता है।
0: वो देखो, उधर ट्रैक्टर चल रहा है।
5: लेकिन इस खेत में अभी बैलों से जुताई होती है, कुछ काम आज भी पुराने तरीके से ही अच्छे होते हैं।
1: और बैलों के नाम भी होंगे?
5: अरे क्यों नहीं, ये हीरा और मोती हैं।
2: अरे वाह, बिल्कुल कहानी वाले नाम।
5: इनके बिना तो मेरा आधा काम रुक जाए।
4: तो श्रोताओं, क्या आपको पता है गांव में जानवर केवल पशु नहीं होते, परिवार के सदस्य होते हैं।
0: उधर देखिए, उधर एक गाय अपने बछड़े को कैसे चाट रही है।
1: कितना सुंदर दृश्य है।
5: इसी से तो घर चलता है, दूध दही घी सब इन्हीं की देन है।
2: शहर के बच्चों को शायद ये सब देखने का अवसर नहीं मिलता,
4: इसलिए आज हम उन्हें रेडियो के माध्यम से गांव की सैर करा रहे हैं।
1: सामने कुछ महिलाएं धान की रोपाई कर रही हैं। चलिए उनसे बात करते हैं।
4: नमस्ते बहनों।
0: इतनी देर तक पानी में खड़े रहकर काम करना कठिन नहीं लगता है?
6: कठिन तो है लेकिन खेतवा हमार है, मेहनत करबे तब्बे तो चूल्हा जली।
2: काम करते समय बातें भी होती हैं।
7: खूब होत है, कोई हंसी सुनावत है, कोई गीत छेड़त है,
1: तभी तो थकान नहीं लगती होगी।
6: और का, बिल्कुल।
4: अच्छा, कोई मजेदार बात सुनाइए।
6: एक बार हमरे गांव के हरिराम पहली बार शहर गए, वहाँ लिफड़ देखिन, ओमा एक बूढ़ी अम्मा गईं, और कछु देर बाद एक जवान लड़की बाहर आई। हरिराम दौड़ते हुए घर आए और बोले, अरे जल्दी चलो, अम्मा का भी वही डिब्बा माँ बैठा दिया जाए।
0: अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया।
2: गांव का सीधा साधा हास्य सबसे प्यारा होता है।
4: श्रोताओं, खेत केवल अन्न ही नहीं उगाते बल्कि गीत भी उगाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का दूसरा लोकगीत।

0: क्या मधुर गीत था।
1: ऐसा लग रहा है जैसे हवा भी ताल मिलाकर झूम रही हो।
2: यही गीत सुनकर काम में नई ताकत आ जाती है।
3: चाचा, क्या आज भी लोग खेतों में गीत गाते हैं?
2: पहले जितना नहीं, लेकिन त्योहारों और रुपाई के समय अभी भी गाते हैं।
0: हमें इन्हें बचा कर रखना होगा।
4: बिल्कुल, क्योंकि लोकगीत हमारी पहचान है।
1: चलिए थोड़ी देर इस बरगद के नीचे बैठते हैं।
3: हवा कितनी ठंडी है।
0: अरे वो देखिए, बच्चे आम बीन रहे हैं।
4: अरे एक बच्चा तो पेड़ पर चढ़ गया।
0: अरे बेटा सावधानी से।
5: जी दीदी।
1: पढ़ाई भी करते हो?
5: जी, लेकिन छुट्टी में आम खाना भी तो जरूरी है ना।
4: बचपन की यही तो असली खुशी है।
0: श्रोताओं, गांव का जीवन हमें सिखाता है कि खुश रहने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों की जरूरत होती है।
3: कभी पेड़ की छांव और कभी मिट्टी की खुशबू, कभी माँ के हाथ की रोटी और कभी किसी लोकगीत की धुन।
1: और इसी मुस्कान के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे गांव की पुरानी कुएं की ओर, जहां महिलाएं पानी भरते हुए एक बहुत ही प्यारा लोकगीत गाने वाली हैं। अरे वाह, कितना सुंदर पुराना कुआं है ये।
4: उसके चारों ओर नीम और पीपल के पेड़ हैं। उनकी छाया में कितनी ठंडक है।
3: और तो और वहाँ रंग बिरंगे घड़े रखे हैं। ऐसा दृश्य अब बहुत कम देखने को मिलता है।
0: नमस्ते बहनों, आप सब मिलकर पानी भर रही हैं क्या?
6: हाँ बिटिया, पहले तो पूरा गांव यही आवत रहा, पानी भरत भरत काम भी हो जात रहा और आधी दुनिया के खबरों मिल जात रहे।
1: यानी ये गांव का पहला समाचार केंद्र था।
6: बिल्कुल, केकरे घरे मेहमान आए, के गाय के बछड़ा हुआ, के बिटिया सगाई हुई, ये सब पता चल जात रहा।
4: और झगड़े भी यही सुलझ जाते होंगे।
6: हाँ, कई बार तो दुई लोग रिसियान राहत रहे और पानी भरत भरत हंसते हुए अपने घर का लौट जात रहे।
3: सचमुच साथ रहने का अपना ही आनंद है।
0: आजकल हर घर में तो नल है, लेकिन उस समय ये कुआं पूरे गांव की धड़कन रहा होगा।
6: बिल्कुल, सवेरे और संझा का यहाँ मेले जैसा माहौल रहत रहा।
1: अरे बेटा रहने दो, ये घड़ा बहुत भारी है।
5: दीदी कहती है काम सीखोगी तो जीवन आसान हो जाएगा।
0: बहुत प्यारी बात,
3: लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है।
5: जी, मैं तो 5वीं में पढ़ती हूँ।
0: शाबाश।
1: चाची, काम करते करते गीत भी गाती हैं?
6: अरे बिटिया, बिना गौनई के पानी बिना ही भरा जाता।
4: तो आज हमारे श्रोताओं के लिए वही पुराना माहौल बना दीजिए।
6: पहले किस्सा तो सुन ले।
0: जरूर।
6: बहुत साल पहले की बात है, एक नई दुल्हन पहली बार पानी भरने आई, घड़ा सिर पर रखा, लेकिन घरत पहुँचत पहुँचत घड़ा खाली हो गया। रास्ते भर सबका नमस्ते करत करत चली, बात करत रही, पनिया छलकत जात रहा। सास बोली, बहू पानी कहाँ गवा? बहू बोली, अम्मा रास्ते माँ सबका नमस्ते करत करत पनिया उड़ाए गवा।
3: और गांव के ऐसे किस्से सुनकर मन खिल उठता है।

0: यही तो लोकगीत की ताकत है, वे कहानी भी कहते हैं और भावनाएं भी।
1: चाची, अब भी गांव की लड़कियां ऐसे गीत सीखती हैं क्या?
2: कुछ सीखत तो हैं, लेकिन अब पहले जैसा नहीं रहा। भाई, मोबाइल आए गवा है, टीवी आए गवा है, अब लोकगीत सुनने वाले कम हैं। अब लोकगीत कोई नहीं सुनते।
3: लेकिन जब शादी होती है तो गीत गाए जाते होंगे, है ना?
2: अरे चाची, बिना लोकगीत के कैसी शादी? हल्दी हो, मटकोर हो, विदाई हो या स्वागत, हर रस्म में गीत तो चाहिए ही चाहिए।
0: और दादी अम्मा भी गाती होंगी?
4: अभी भी गाती हूँ बिटिया, आवाज बूढ़ी हो गई है, गीत नहीं।
1: वाह, क्या बात कही आपने, आवाज बूढ़ी हो गई लेकिन गीत नहीं।
0: दादी, आपने सबसे पहले कौन सा गीत सीखा था?
4: अपनी अम्मा से सोहर, फिर कजरी, झूला, बिरहा, देवी गीत, धीरे धीरे सब याद हो गए बिटिया।
3: क्या उस समय कोई लिखकर सिखाता था?
4: नहीं, सुनते सुनते याद हो ही जाता है, यही हमारी किताब थी।
0: तो जी हाँ श्रोताओं, यही है हमारी अमूल्य संस्कृति और विरासत।
1: चाची, एक बात बताइए, मिट्टी के घड़े का पानी इतनी देर ठंडा कैसे रहता है?
2: अरे ये तो मिट्टी के कमाल है, न बिजली चाहिए न मशीन, प्रकृति खुद ही ठंडा कर देती।
0: सच है, हमारे पुराने तरीकों में कितना विज्ञान छिपा है
3: और कितना अनुभव भी।
1: नमस्ते बाबा,
0: कहाँ जा रहे हैं?
5: चौपाल, आज शाम को बच्चों को आला सुनाऊंगा।
0: आज भी बच्चे सुनते हैं?
5: अगर प्यार से सुनाऊं तो बच्चे सब सुनते हैं, बस उन्हें समय देना पड़ता है।
1: बहुत सुंदर बात। श्रोताओं, अगले पड़ाव में हम चलेंगे गांव की चौपाल पर, जहां बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं मिलकर त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सुनेंगे एक मधुर लोकगीत और जानेंगे कि गांव की एकता की असली ताकत क्या है। अरे जया जी, जरा धीरे चलिए, आप तो ऐसे चल रही हैं जैसे पूरा गांव आज ही देख लेना है।
6: गांव छोटा हो सकता है समता जी, लेकिन इसकी कहानियाँ बहुत बड़ी होती हैं।
0: और मुझे तो हर मोड़ पर रुक जाने का मन कर रहा है।
7: देखिए देखिए, सामने कितना बड़ा बरगद का पेड़ है।
3: वाह, इसकी जड़ें तो जमीन तक आ गई हैं।
6: गांव में ऐसे पेड़ केवल पेड़ नहीं होते, ये इतिहास होते हैं। ना जाने कितनी पीढ़ियां इसकी छांव में बैठी होंगी।
0: चलिए ना, दो मिनट यहीं बैठते हैं।
3: उफ, कितनी ठंडी हवा है।
7: शहर में तो ऐसी हवा एसी भी नहीं दे सकता।
6: बिल्कुल, प्रकृति की ठंडक किसी मशीन से नहीं मिल सकती।
0: पता है, हमारी नानी कहा करती थी कि बरगद के नीचे बैठकर अगर मन की बात कहो तो मन हल्का हो जाता है।
3: अच्छा, तो फिर मैं अपनी बात कह दूं?
6: कहिए।
3: मुझे बहुत भूख लगी है।
7: मुझे पहले से ही पता था कि आपकी बात खाने पर ही जाकर रुकेगी।
0: उफ़, सुबह से बस खेत कुआं और बातें, अरे अब कुछ खाने को भी मिलना चाहिए कि नहीं?
6: अच्छा ये बताइए, अगर किसी गांव वाले ने हम लोगों से ये कहा कि आइए बाजरे की रोटी, दाल और ताज़ा मक्खन तैयार है, तो आप लोग क्या बोलेंगी?
3: तो मैं रिकॉर्डिंग 5 मिनट रोक दूंगी।
7: और अगर साथ में गुड़ भी मिल जाए तो?
3: और फिर 10 मिनट।
0: और देखिए, हमारी समता जी का पूरा कार्यक्रम खाने के हिसाब से ही चलता है।
3: अरे, पेट खुश रहेगा तो आवाज में मिठास रहेगी।
6: श्रोताओं, गांव की एक खूबसूरती है, यहाँ समय भागता नहीं, धीरे धीरे चलता है। लोग एक दूसरे को देखकर रुकते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, शायद इसी वजह से रिश्ते इतने मजबूत होते हैं।
7: सच कहा, अभी तक जितने लोगों से मिले, हर किसी ने मुस्कुराकर नमस्ते किया है।
0: और किसी को जल्दी भी नहीं थी।
3: शहर में तो लोग लिफ्ट में साथ खड़े होकर भी एक दूसरे को नहीं देखते।
6: यही तो फर्क है।
7: देखो देखो, एक छोटी सी बच्चिया भागती हुई जा रही है।
0: कितनी प्यारी है।
3: लेकिन अगर हमारी तरफ आ गई तो?
6: अरे डरिए मत समता दीदी, ये गांव के जानवर हैं, ये शहर से ज्यादा सभ्य होते हैं।
3: यह बात तो मैं नोट कर रही हूँ।
7: किसी के घर से ढोलक की आवाज़ आ रही है,
0: शायद कोई महिलाएं लोकगीत गा रही हैं।
6: गांव में ढोलक की आवाज़ सुनाई दे तो पैर अपने आप उसकी ओर चल पड़ते हैं।
3: बिल्कुल, हमारे श्रोता भी इसी इंतजार में होंगे कि अगला गीत कब आएगा।
6: लेकिन उससे पहले एक बात, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे लोकगीत इतने वर्षों तक कैसे बचे रहे?
7: क्योंकि इन्हें किताबों ने नहीं, लोगों ने संभाला है।
0: एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सुनाया, दूसरी पीढ़ी ने तीसरी पीढ़ी को सुनाया।
3: किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, फिर भी सबको याद रहा।
6: यही हमारी सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है।
0: बचपन में मेरी दादी माँ कहा करती थी कि जिस घर में गीत गूंजते हैं वहाँ उदासी ज्यादा देर नहीं ठहरती।
1: कितनी प्यारी बात है।
7: और आज पूरे रामपुरवा में वही गीत गूंज रहे हैं।
6: तो आइए सुनते हैं आज का चौथा लोकगीत।

0: कितनी सुंदर रचना है, शब्द भी इतने सरल और भाव से भरे हुए हैं।
1: यही तो लोक गीतों की खूबसूरती है, इन्हें समझने के लिए बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती,
2: बस दिल होना चाहिए।
3: श्रोताओं, हमारा सफर अभी जारी है। अब हम गांव के तालाब की ओर चलेंगे। वहां शाम ढलने लगी, पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट रहे हैं और पूरे वातावरण में एक अलग सी शांति उतर रही है।
1: और वहीं बैठकर हम करेंगे कुछ दिल की बातें,
0: साथ ही सुनेंगे आज का अंतिम और बहुत ही पुराना लोकगीत,
2: इसीलिए कहीं मत जाइए।
3: स्वागत है श्रोताओं ज्ञानस्थली रेडियो 89.6 एफएम के कार्यक्रम गांव की गूंज के अंतिम पड़ाव में। आपको पता है पूरा दिन रामपुरवा गांव में घूमते घूमते कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला।
1: बिल्कुल, सुबह जब आए थे तो सूरज उग रहा था और अब देखिए शाम धीरे धीरे उतर रही है।
0: वो देखो सामने का तालाब कितना शांत लग रहा है, पानी में डूबते सूरज की परछाई किसी चित्र जैसी दिखाई दे रही है।
2: देखो देखो पक्षी भी अपने घर की ओर लौट रहे हैं और पूरे दिन की मेहनत के बाद जैसे गांव भी अब आराम की तैयारी कर रहा है।
3: सच कहा किरण दी, और शायद यह बात सच कही भी जाती है कि गांव की शाम का अपना ही जादू होता है, ना शोर ना भाग दौड़, बस प्रकृति की मधुर संगीत।
1: जया जी, आज एक बात मैंने महसूस की।
3: क्या?
1: यहाँ किसी के चेहरे पर जल्दबाजी नहीं थी, सब आराम से बात कर रहे थे, कोई घड़ी देखकर नहीं भाग रहा था।
3: श्रोताओं, हमने आज सुबह से बहुत कुछ देखा, हरी भरी फसलें, पुराना कुआं, बरगद की छांव, मिट्टी की खुशबू, लोकगीत और सबसे बड़ी बात लोगों के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान।
1: मुझे तो दादी अम्मा की बात बार बार याद आ रही है, आवाज बूढ़ी हो गई है गीत नहीं।
0: कितना बड़ा संदेश था उसमें, समय बदल सकता है लेकिन संस्कृति तब तक जीवित रहती है जब तक लोग उसे अपने दिल में संजो कर रखते हैं।
2: जया जी, अगर आपको एक दिन के लिए इस गांव में रहने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या करेंगी?
3: सबसे पहले मैं सुबह सूर्योदय देखूंगी, फिर किसी पेड़ के नीचे जाकर गर्मा गर्म चाय पीऊंगी और गांव की महिलाओं से पुराने खूब सारे लोकगीत भी सीखूंगी। अच्छा गीता दीदी, और आप?
0: मैं तालाब के किनारे बैठकर पक्षियों को देखूंगी।
2: और मैं पूरे गांव की तस्वीरें अपने मन में संभाल कर रखूंगी। कैमरे की तस्वीरें तो मिट जाती हैं, लेकिन मन की तस्वीरें हमेशा रहती हैं।
3: वाह, क्या बात कही।
1: जया जी, एक बात पूछूं?
3: जरूर।

0: लेकिन खाली पेट नहीं।
1: तो जी हाँ श्रोताओं, अब समय है आज के अंतिम लोकगीत का। यह गीत वर्षों से गांव-गांव गाया जाता है और आज भी उतना ही लोकप्रिय है।
2: तो आइए सुनते हैं आज का पांचवा और अंतिम लोकगीत।
3: हमसे

0: सचमुच ऐसा लगा जैसे पूरा रमुआपुर हमारे साथ गुनगुना रहा हो।
1: आज का सफर हमें हमेशा याद रहेगा
2: और उम्मीद है आपको भी। यदि आपके गांव में भी कोई पुराना लोकगीत, लोक कथा या ऐसी परंपरा है जिसे दुनिया तक पहुंचाना चाहिए तो हमें जरूर लिखिए।
1: हो सकता है अगली बार हमारी टोली आपके गांव पहुंचे
0: और आपके साथ मिलकर आपकी मिट्टी की खुशबू पूरे देश तक पहुंचाएं।
2: विदा लेने से पहले बस एक छोटी सी बात, आधुनिक बनिए, नई तकनीक अपनाइए, आगे बढ़िए, लेकिन अपनी भाषा, अपनी बोली, अपने लोकगीत और अपने गांव को कभी मत भूलिए। यही हमारी पहचान है, यही हमारी जड़ें हैं,
3: क्योंकि जड़ों से जुड़ा पेड़ ही सबसे ऊंचा होता है
1: और अपनी संस्कृति से जुड़ा समाज ही सबसे समृद्धशाली होता है।
0: इसी संदेश के साथ हमें अनुमति दीजिए।
4: नमस्कार।
5: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
6: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
6: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
7: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
8: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
9: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
10: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
11: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
12: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9216 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: कुष्ठ रोग की यही पहचान, इसको प्लीज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बता दे।
5: इसका मतलब है शरीर में लाल चकत्ते पड़ना।
4: जी,
5: और जब लाल चकत्ते पड़ते हैं, अगर वो कुष्ठ रोग है, तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंगे, कोई भी एक्टिविटी वहाँ करेंगे, तो वो सुन्न होगा एरिया, वहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा।
4: ओके, तो मैम अभी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज भी उन राज्यों में है जहाँ कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं। आपके जिले की स्थिति क्या है और किन इलाकों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
5: देखिए आकांक्षा जी, ये सच है
4: जी
5: कि कुष्ठ रोग अब पहले से बहुत कम है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाके, घनी आबादी वाले क्षेत्र और वह जगह जहां स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच कम है, वहां जोखिम ज्यादा रहता है। हमारा मुख्य फोकस है जल्दी पहचान और समय पर इलाज, ताकि फैलाव रोका जा सके।
4: अब मैम ये बताइए कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक कुष्ठ रोग खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में ये कितना व्यवहारिक है?
5: लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है आकांक्षा जी, लेकिन पूरी तरह संभव है, क्योंकि कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह मुफ्त है और उपलब्ध दवा से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है।
4: जी,
5: इलाज शुरू होते ही बीमारी फैलना बंद हो जाती है। सबसे जरूरी है डर, भेदभाव खत्म करना।
4: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज भी कई गांवों में लोग कुष्ठ रोग को लेकर दवा की बजाय झाड़ फूंक या घरेलू उपाय से ठीक करने लगने, मतलब ठीक करने की उसकी कोशिश करते हैं, ये कितना खतरनाक है?
5: आकांक्षा जी, यह बहुत गंभीर खतरा है।
4: जी,
5: कुष्ठ रोग में देरी से इलाज करने पर हाथ पर सुन्न हो सकते हैं।
4: जी,
5: घाव बन सकते हैं और अस्थाई विकलांगता हो सकती है। झाड़ फूंक से बीमारी नहीं जाती, लेकिन समय जरूर चला जाता है, जो सबसे बड़ा नुकसान है।
4: कहीं ना कहीं वो जो एक छोटा सा लाल धब्बा, वो एक सड़न का रूप ले लेता है, उसके बाद में जब हम बहुत हानिकारक स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा जो कोई भी सोच भी नहीं सकता है।
5: जी जरूर।
4: जी, अभी एक और सवाल है हमारे बीच में कि कई लोग डर और बदनामी के कारण जांच नहीं कराते, खासकर छोटे गांव में। स्वास्थ्य विभाग इस भरोसे को कैसे मजबूत करता है?
5: आकांक्षा जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया।
4: जी,
5: हम पूरी गोपनीयता रखते हैं। आशा और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर समझाते हैं, मुफ्त जांच करवाते हैं।
4: जी,
5: सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं।
4: जी,
5: हम साफ कहते हैं कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता
4: जी।
5: और इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
4: अब ये बताइए कि यूपी और बिहार में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करती हैं। कुष्ठ रोग की पहचान और इलाज में उनकी भूमिका कितनी अहम है?
5: आकांक्षा जी, उनकी भूमिका सबसे अहम है
4: जी।
5: यही बहनें त्वचा पर सुन दाग पहचानती हैं, मरीज को जांच तक लाती हैं और दवा पूरा करवाने में साथ देती हैं
4: जी।
5: कह सकते हैं कि कुष्ठ उन्मूलन की असली ताकत जमीनी स्तर पर आशा दीदी ही है।
4: मैम, अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज कई बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं, इलाज मुफ्त भी हैं, फिर भी लोग झोला छाप या ओझा तांत्रिक के पास क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है?
5: देखिए खानसा जी
4: जी,
5: इसकी सबसे बड़ी वजह है डर, अज्ञानता, आदत। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्च होगा
4: जी,
5: बदनामी होगी या बीमारी फैल जाएगी। इस व्यवहार को बदलने के लिए हम गांव-गांव अपनी आशा को भेजते हैं
4: जी।
5: वो जागरूक करती हैं, सफल इलाज के लिए प्रेरित करती हैं, स्थानीय भाषा में समझाती हैं और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं और अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच भी रहे हैं।
4: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई अपना आदमी हम सभी को कुछ समझाता है तो बात दिल तक आसानी से पहुंच जाती है। अब मैम, एक और सवाल आपसे मैं करूंगी कि सामाजिक बहिष्कार, काम से निकाल देना, बच्चों को स्कूल ना भेजना, ये सब आज भी यूपी और बिहार में दिखता है। इससे आखिर में हमारी समाज पे क्या फर्क पड़ता है?
5: आकांक्षा जी, बहुत सही सवाल है आपका
4: जी।
5: व्यक्ति टूट जाता है, आत्मविश्वास खो देता है और समाज में डर फैलता है।
4: बिल्कुल।
5: और समाज का नुकसान ये कि लोग बीमारी छुपाने लगते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
4: बिल्कुल।
5: याद रखिए, बीमारी से नहीं, गलत सोच से समाज बीमार होता है।
4: बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपने कह दी। उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे होंगे उनको आज एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ रही होगी
5: जी। आकांक्षा जी
4: जी, मैम आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज सरकार इतनी सारी दवाइयां दे रही है, लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि सिर्फ मरीज नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है?
5: जी आकांक्षा जी, कुछ लोग नहीं समझते हैं क्योंकि बीमारी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती। अगर समय पर दवा ली जाए, सावधानी बरती जाए तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है
4: जी।
5: दवाइयां डर खत्म करती हैं, लेकिन तभी जब लोग समय पर आगे आए। इलाज छुपाने से नहीं, इलाज अपनाने से सुरक्षा मिलती है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। इलाज के बाद भी समाज उसी नजर से देखता है, क्या वाकई मरीज से कोई खतरा रहता है इलाज के उपरांत भी?
5: नहीं आकांक्षा जी, ये सिर्फ सामाजिक डर है, गलतफहमी है। जो व्यक्ति इलाज पूरा कर चुका है वो पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। काम, परिवार, समाज, सब खतरा बीमारी से नहीं, भेदभाव से है
4: जी। अब चलते चलते मैं मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि यूपी और बिहार के गांवों के लिए आपका सीधा संदेश क्या होगा?
5: देखिए आकांक्षा जी
4: जी,
5: मेरा संदेश बहुत साफ है
4: जी।
5: बीमारी छुपाइए मत, डरिए मत, जांच कराइए, ओझा तांत्रिक पर भरोसा मत करिए, डॉक्टर पर भरोसा करिए
4: जी।
5: और सबसे जरूरी, इंसान को इंसान की तरह देखिए। जब सोच बदलेगी तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
4: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला
5: जी। धन्यवाद मैम।
4: तो दोस्तों, याद रखिए, इलाज से बीमारी ठीक होती है और समझदारी से समाज। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।

हाँ जी श्रोताओं, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड गुड आफ्टरनून आप सभी का। हम स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजी ज्योति और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम आपकी अपने गोंडा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानस्थली। दोस्तों भैया, आज वेंसडे है और वेंसडे को हम लेकर आते हैं वैसे तो बहुत सारी बीमारियों के बारे में, लेकिन इन बीमारियों के बारे में जानते जानते मैंने एक चीज़ नोटिस की भाई, कि हम सिम्टम्स जान चुके हैं, हम बीमारियों को समझ चुके हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन हमारे सामने आती है, जब हमारे सामने किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, जब हमारे सामने किसी को हीट स्ट्रोक आता है या हमारे सामने कोई बेहोश हो जाता है, उस वक्त हम इतना पैनिक कर जाते हैं कि हमको उस वक्त समझ नहीं आता भाई कि अब करना तो करना क्या है। एम्बुलेंस को कॉल करना है, एम्बुलेंस को कॉल तो करना है लेकिन किस नंबर पर करना है और कौन सी एम्बुलेंस किस नंबर पर पहले आने वाली है। कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसके लिए कौन सा एम्बुलेंस पहले आने वाली है, उसके लिए कौन सा नंबर डायल करना है, या फिर अगर पुलिस को कॉल करनी है तो कहाँ करनी है भाई। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस में जो हमारा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है और हम सोचते हैं कि भाई हमको तो नहीं आ रहा ये प्रोसेस, कोई और कर दो, और कोई और भी यही सोचता है कि हमसे नहीं हो रहा कोई और कर दो, इसके चक्कर में हो जाती है बहुत ज़्यादा देर। जिस मरीज को बचाया जा सकता है उसको बचाने में इतना देर हो जाता है कि हॉस्पिटल पहुँचते वो बेचारा रास्ते में ही अपनी ज़िंदगी से हार मान जाता है, और डॉक्टर्स के पास जब तक वो पहुंचता है उसके बाद डॉक्टर्स कह देते हैं कि आई एम सो सॉरी, आपने तो काफ़ी देर कर दी। अब भाई अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी, मान लीजिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं और गर्मियों में एक्चुअल में बीमारियां थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, चक्कर खा के गिरना, हीट स्ट्रोक होना या फिर हार्ट अटैक आना, ये सारी चीज़ें आपको आमतौर पर देखने को मिल ही जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं जा रही थी एक रोज़ चौक, गर्मी का ही मौसम था, गर्मी का महीना था, शाम का वक्त था, तो पास में ही दुकान में एक अंकल थे जो घड़ी बनाने का काम किया करते थे, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। अब उन्हें हार्ट अटैक से बचाया जा सकता था क्योंकि हार्ट अटैक के कुछ मिनट तक आप उन्हें बचा सकते हो, उनके पास टाइम होता है, बट लोग इतना पैनिक कर जाते हैं कि उन अंकल को कोई CPR देता ही नहीं, CPR कोई जानता ही नहीं, इवन एम्बुलेंस को कॉल करने में ही इतनी देर हो जाती है कि एम्बुलेंस भी टाइम से नहीं पहुंच पाती, और साथ ही साथ उनको इतना ज़्यादा लोग घेर के खड़े हो जाते हैं कि जो फ्रेश ऑक्सीजन मिलने वाली थी वो भी नहीं मिल पाती। तो भाई इस दौरान अगर आप भी किसी ऐसी जगह पे फंस जाते हैं या आपने किसी को ऐसा देखा है जिसको सिम्टम्स लग रहे हैं कि इनको हार्ट अटैक आ सकता है, तो वो सिम्टम्स कौन कौन से हैं, या फिर आपको लगता है किसी को हार्ट अटैक आ गया है और आप उस दौरान वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप क्या इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं, कौन सा स्टेप उठा सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं जिससे आप किसी की जान बचा लें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी पहल, सिर्फ एक छोटी सी पहल किसी की जान बचाने के लिए काफ़ी होती है। हो सकता है आप सिर्फ उन्हें CPR दे दें, हो सकता है अगर आप टाइम पे एम्बुलेंस को बुला दें, हो सकता है आप थोड़ा मदद कर दें, हो सकता है आप उन्हें कोल्ड पैचेस दे दें, इतने में ही किसी की जान बचाई जा सके। तो भाई इसमें बुराई क्या है, इसीलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर किए जाने वाले कुछ ऐसे काम जो आपको पता होना है बहुत ज़रूरी। तो भाई आज सुनिए स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि बात हो रही है आपके स्वास्थ्य की, और उससे भी ज़रूरी कि भाई जब पैनिक मोड ऑन होता है तो पैनिक ना करते हुए किस तरह से होशियारी से आपको काम करना है। तो भाई मेरे साथ जुड़े रहिए, इन्जॉय करते रहिए आपका ये छोटा सा गाना जो किरण मैम की आवाज़ में होने वाला है, यार हम मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर ये इमरजेंसी सिचुएशंस एंड पैनिक मोड सिचुएशंस के अंदर उठाए जाने वाले वो कदम जो आपको आज सीख के जाना है, हमेशा याद रखना है, ताकि अगली बार जब कुछ हो तो हीरो बनकर आप ही सामने आ सके। ऐसा नहीं है, आपको दूसरों को भी अवेयर करना है, बाई चांस अगर आप उस जगह पे ना हुए, कोई और हुआ, तो इसीलिए एक दूसरे को अवेयर करते रहिए और इस गाने को एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी श्रोताओं, आपका स्वागत है आपके अपने शो स्वास्थ्य संगनी में। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आपने ट्यून कर लिया है आपका अपना एफएम रेडियो क्या ना 89.6 एफएम की है गोंडा शहर की धड़कन। और बात है आज इमरजेंसी सिचुएशंस की, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। भाई आप हमेशा से सुनते आए हैं कि घर में फर्स्ट एड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भैया आपको भी पता है कि जब भी हल्की फुल्की चोट लग जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले इलाज आपको घर पे मिलता है, उसके बाद आप हॉस्पिटल तक जाते हैं। तो घर में जो आपको इलाज मिल जाता है वहाँ आपको थोड़ा सा वक्त और ज़्यादा मिल जाता है कि आप हॉस्पिटल तक पहुँच के अपना इलाज करा सकें। बट हर जगह तो हमारे पास फर्स्ट एड किट नहीं होती है ना, हर जगह तो हम उसको लेकर नहीं घूम रहे होते हैं कि हमें पता ही है कि बाहर जाएंगे तो पक्का किसी ना किसी को देखकर आएंगे और वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाएगी। ऐसा तो हमको नहीं पता है, इसलिए हम लेकर भी नहीं जाते हैं, हम टेंशन फ्री होकर जाते हैं। और क्योंकि मौसम बदल रहा है, हमारे खान पान की आदतें बदल रही हैं, हमारा दिनचर्या बदल रहा है एंड बढ़ती उम्र के साथ भी बहुत सारी बीमारियाँ दस्तक देती जा रही हैं। कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या हो अगर आपको पता है कि हार्ट अटैक आने से पहले किस तरह के सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं? क्या हो अगर आपको पहले ही पता हो कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे एम्बुलेंस के आते तक उसको इतना वक्त दे सकते हैं कि डॉक्टर उनकी जान बचा ले? होगा ना काफ़ी अच्छा काम, क्योंकि जब हमारे सामने किसी की जान जाती है तो हमें गिल्ट रहता है कि अगर ये यार अगर मुझे पता होता ना तो मैं पक्का हेल्प कर देता, अब पता ही नहीं है तो क्या करें। तो भैया आइए आज इसके बारे में जानते हैं कि अगर किसी को कुछ होता है तो उस पैनिक मोड में आपको किस तरह से काम आना है, किस तरह से खुद पर संयम बनाते हुए किसी की मदद करनी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप कहीं भी हैं और किसी भी बंदे ने कभी ये आपसे शिकायत की है कि उनके चेस्ट में यानी उनके सीने में अचानक से कुछ तो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, यानी कि कोई प्रेशर बढ़ रहा है, उनको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा दर्द हो रहा है, या फिर लग रहा है कि कोई उनका जो दिल है वो स्क्वीज हो रहा है यानी कि उसको कोई निचोड़ रहा है, अगर आपको कहीं भी ऐसा पेन फील होता है, भारीपन फील होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, भले वो आपके कोई मेम्बर हो, अगर वो अपने सीने पर बार बार हाथ रख रहे हैं और आप उनके पूछने पर वो ये बता रहे हैं कि उनके सीने में हो रहा है हल्का हल्का दर्द, तो इसको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका दिल सिग्नल देना शुरू कर देता है कि भाई देख लो 4-5 मिनट दे रहा हूँ, अगर अभी तक नहीं सुधरे हो तो मैं जाके इसको शट डाउन कर दूंगा। और आप नहीं समझ पाते हो तो आपको लगता है कि नहीं, हो सकता है ये चलने की वजह से हो, सांस फूलने की वजह से हो। ऐसा नहीं होता, अगर चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इसी के साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है यानी कि सांसें जो हैं वो कम आ रही हैं, छोटी छोटी सी आ रही हैं, बहुत गहरी सांस नहीं ले पा रहे हैं, खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अचानक से बहुत सारा पसीना आना शुरू हो गया है, कोल्ड स्वेट आना शुरू हो गया है, आपका जो हाथ है, जो पीठ है, जो गला है या फिर आपका जो जॉ है यानी कि जबड़ा है, इन सब में अचानक से दर्द होना शुरू हो गया है, तो ये सारे वो सिम्टम्स होते हैं जो हार्ट अटैक आने से पहले आपको मिलते हैं। आपकी पीठ में जिस तरफ आपका दिल होता है यानी कि बाईं तरफ, आपके हाथ में दर्द होगा, आपके सीने में दर्द होगा, या फिर आपके जो आपका पीठ है उसमें दर्द होना शुरू होता है, आपकी गर्दन में दर्द होता है, आपके हाथ पैरों की नसें तन जाती हैं, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है, या फिर आपको लगातार पसीना आना शुरू हो जाता है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि ऑल सडन ही क्या हो गया, मौसम वैसा नहीं है या फिर हवा अच्छी चल रही है, इसके बाद भी अगर कोई बहुत पसीने में तरबतर हो रहा है, अचानक से उसके माथे पर आपको बहुत सारा पसीना नज़र आ रहा है, उसको सांस प्रॉपरली नहीं आ रही है, उसे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि भाई उसके दर्द हो रहा है, तो ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं कि भाई हार्ट अटैक आने वाला है। माइनर मेजर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। अब इन्हें कंट्रोल करने के लिए अब आपके पास बहुत सारी दवाइयां तो नहीं होंगी, अगर आसपास कहीं मेडिकल है तो आप जाके एक डिस्प्रिन ले सकते हैं। जी हाँ, डिस्प्रिन एक ऐसी दवा है जो हार्ट अटैक को कम करने में मदद करती है, क्योंकि वो आपके जो खून है उसको पतला करती है और आसानी से एक आपको वक्त मिल जाता है कि आप डॉक्टर के पास जाके तुरंत उसे एडमिट कर सकें, सलाह ले सके, दवा ले सके, क्योंकि डिस्प्रिन के अंदर होती है एस्प्रिन नाम की दवा जो हार्ट अटैक में मदद करती है। तो एक सबसे छोटी और सबसे कॉमन मेडिसिन जो आप हमेशा सर दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको सर में दर्द रहता है तो अक्सर हमें डिस्प्रिन का पत्ता मिल जाता है।
हर दुकान पे मिल जाता है, ज़्यादा रुपए भी नहीं लगते हैं, 10 रुपए का पत्ता है, अगर आप उसकी एक गोली भी उस इंसान को दे देते हैं तो ये जो सिम्टम्स ऑल सडन उसको नज़र आ रहे हैं उनमें थोड़ा रिलीफ मिलता है और आपको एक अच्छा खासा वक्त मिल जाता है हॉस्पिटल जाने तक का। अब ये मत सोचिएगा कि हमने डिस्प्रिन दे दिया है अब तो ये सिम्टम्स आ नहीं रहे हैं, अब तो जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर से बात करनी है कि एक्चुअली ये क्या हो रहा था। अगर हार्ट अटैक है तो किस तरह से इसको ठीक करें, किस कौन कौन सी दवाई देनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बाकी चीज़ों का आप ख्याल रखें। लेकिन हाँ, जब आप ये दवाई देते हैं तो उन्हें थोड़ा सा वक्त मिल जाता है, 15-20 मिनट, एक दिन, जो भी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग है कि भाई अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको थोड़ा वक्त मिलेगा। और अगर आप ये दवा नहीं दे पाते हैं, अगर आप उस जगह पर मौजूद नहीं होते हैं और बंदे को सिम्टम्स के बाद हार्ट अटैक आ भी जाता है, तब आपका काम होता है उन्हें CPR देना। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, बॉलीवुड में देखा होगा लोगों को CPR देते हुए, जब भी कोई पानी में डूब जाता है तो उसे निकाल कर माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देते हैं, उसके चेस्ट को प्रेस करते हैं। जी हाँ, यही होता है CPR। जब इंसान सांस लेने में असमर्थ हो जाता है, जब उसका दिल धीरे धीरे बंद होना शुरू कर देता है, तब आप अपने ज़रिए उसे सांस देते हैं, उसके दिल को, उसके चेस्ट को प्रेस करके, उसके चेस्ट को पुश करके, मतलब उसको धक्का दे दे के उसके चाहते हैं कि उसका दिल धड़के, क्योंकि जब तक दिल धड़केगा बॉडी में सांस जाती रहेगी, ऑक्सीजन जाता रहेगा, तब तक एक वक्त रहता है कि हम किसी भी इंसान को बचा सकते हैं। तो भाई CPR देना कैसे होता है, चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि CPR किसको कब देना है और कहाँ देना है। CPR सबसे पहले जान लीजिए कि कब कब देना ज़रूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति अचानक से गिर जाता है और गिर जाने पर उसकी सांस और उसकी नब्ज अगर आपने चेक की है और वो नहीं चल रही है, तब आप उसे CPR देने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर उसकी नब्ज आपको दिख रही है कि धीरे धीरे कम होती जा रही है, धीरे धीरे गायब होती जा रही है, आप उसकी सांस चेक कर रहे हैं, सांस नहीं आ रही है, तो जी हाँ, अब आपको CPR देने का वक्त है। अगर वो बेहोश हो चुका है, बेहोश होने पर व्यक्ति को होश में लाने की कोशिश करें और अगर वो होश में ना आए तो उसकी सांस और नब्ज ज़रूर देखें। सांस रुक जाना या बहुत छोटी छोटी सांसें आना या फिर लगातार उसको सांस ही नहीं आ रही है, तो आप ही सोचिए अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी तो उसकी जान कैसे बचेगी। तो इसलिए CPR देने की आवश्यकता यहाँ पर ज़्यादा पड़ जाती है। अगर व्यक्ति की नब्ज नहीं मिल रही है, यानी कि आप उसको ढूंढ रहे हैं कि दिल की धड़कनें कहाँ पर हैं और आपको दिल की धड़कनें ही नहीं मिल रही हैं, तो आप परेशान हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे कि अरे दिल का धड़कना ही बंद हो गया है, तो हो सकता है उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया हो, बेशक। और ऐसे में व्यक्ति को CPR देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। करंट लगने पर, जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति को करंट लगा है तो उसको छूना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर कोई इंसान किसी ऐसी चीज़ से चिपका हुआ है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो सबसे पहले तो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी काटें, उसको लकड़ी से हटाएं और आप देखिए कि क्या उसकी नब्ज मिल रही है, क्या उसको सांस आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो तुरंत उसको CPR देने की कोशिश करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी वस्तु को आसपास ऐसी ना रखें जिससे करंट पास हो सके। अब आपने भी देखा होगा कई लोग करंट, जिस व्यक्ति को करंट लगता है, शॉक लगता है, उसको बचा तो लेते हैं लेकिन उसको आसपास ऐसी जगह पे लिटा देते हैं जहाँ पर और भी करंट लगने की संभावना बढ़ जाती है, कुछ ऐसी चीज़ उनके आसपास रखी रहती है। तो इसको ध्यान में रखें कि भाई ऐसी जगह पर उसे ना लिटाएं। डूबना या फिर अगर कोई बंदा डूब रहा है, पानी में डूब रहा है, जैसे बॉलीवुड में कई बार दिखाया गया है किसी डूबते हुए इंसान को CPR देना, कोई स्विमिंग पूल में डूब जाता है, कोई समंदर में डूब जाता है, उसके लंग्स में, उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो उस दौरान भी CPR देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उस दौरान भी कहीं ना कहीं सांस रुकने लगती है, नब्ज धीमी पड़ने लगती है, और इसीलिए CPR को दिया जाता है ताकि वो नब्ज वापस आ जाए, सांसें उसे मिलने लगें और हमें एक वक्त मिल जाए, 4 से 5 मिनट जब तक एम्बुलेंस आ रही है तब तक एक वक्त मिल जाए कि हम उस इंसान की जान बचा ले जाए। लेकिन आपको ये नहीं करना कि भाई ये CPR देते रहें, CPR देने की कोशिश तो करें लेकिन एम्बुलेंस को कॉल ही नहीं किया। अगर कोई इंसान आपके सामने किसी को CPR देने की कोशिश कर रहा है तो ज़रूरी ये भी है कि आप वहाँ पास में खड़े होकर एम्बुलेंस को तुरंत कॉल करें। CPR कैसे देना है ये हम आपको बताते हैं, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अपने ख्याल ज़रूर बताइएगा, क्या आपने कभी CPR देने की कोशिश की है, या आपको पता है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए हमें किस नंबर पर कॉल करना चाहिए? आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: नमस्कार श्रोताओं,
1: हाँ जी, तो आप सुन रहे हैं स्वास्थ्य संगनी, सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आई हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं आज सीपीआर की। मैं हूं आपकी आरजे नदी। सबसे पहले हमने सीपीआर को जान लिया कि किस किस कंडीशन में आप सीपीआर दे सकते हैं। हार्ट अटैक जब आते हैं तो उससे पहले सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या साइंस मिलते हैं, और अब बात करते हैं कि सीपीआर देना कैसे है। क्योंकि भाई हम सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। फिलहाल सीपीआर देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जगह को देखें कि जिस जगह पर आपका मरीज़ लेटा हुआ है, जिस जगह पर वो व्यक्ति लेटा है, क्या वो सुरक्षित है। उसका रिस्पांस ज़रूर से चेक करें, क्या वो जवाब दे रहा है या फिर वो पूरी तरह से अचेत हो चुका है, यानी कि बेहोश हो चुका है। अब उसके अंदर कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं है, वो बोल नहीं रहा है। जब भी आप किसी को सीपीआर दें तो पहले एक इंसान को ज़रूर इन्फॉर्म कर दें कि वो एम्बुलेंस पर कॉल कर दें और एम्बुलेंस को बुला लें आपकी लोकेशन पर, क्योंकि आप सीपीआर देने में बिज़ी होंगे और एम्बुलेंस को आने में अगर और भी ज़्यादा वक्त लगता है तो फिर इंसान की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले उस इंसान को इन्फॉर्म कर दें, किसी को भी बोल दें कि आप एम्बुलेंस बुलाओ, मैं तब तक सीपीआर देता हूँ। अब देना कैसे है, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। व्यक्ति को पीठ के बल किसी भी सख्त एवं समतल सतह पर लिटाएं, यानी कि सीधी, जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जगह ना हो, जहाँ चोट लगने का कुछ ना हो। कई बार ऐसा होता है कि सीपीआर देने से पहले हम जगह को चेक नहीं करते हैं और इंसान को बचाने के चक्कर में हम उसे चोट ज़्यादा पहुँचा देते हैं। तो सबसे पहले ये नोटिस करें कि जिस जगह पे आप लिटा रहे हैं वो एकदम सख्त हो, एकदम नॉर्मल हो और समतल हो, ऊबड़ खाबड़ ना हो। उसके कंधे के पास घुटने टेक कर आप बैठ जाएं। एक हाथ की हथेली को व्यक्ति की छाती के बिल्कुल बीच में, जहाँ पर आपकी दोनों पसलियाँ मिलती है, जी हाँ, बिल्कुल वहीं पर रखें। दूसरे हाथ को अपने उस हाथ के ऊपर रखें, उंगलियों को फंसा कर आपस में लॉक कर लें, जिसको हम इंटरलॉक करते हैं कहते हैं। कोहनियों को अपने सीधा रखें, अपनी कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखें। अपने शरीर के वज़न का इस्तेमाल अब आपको करना है, इसके लिए ही आपको अपनी जो कोहनियाँ हैं एकदम सीधी रखनी है, ताकि आप पूरा वेट, पूरा जो आपका बॉडी वेट है उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर पाएं। छाती को कम से कम 2 इंच 5 सेंटीमीटर अंदर तक ले जाएं। दबाने की गति होती है 100 से 120 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 सेकंड में लगभग 2 बार आपको उसकी छाती को या उसके सीने को प्रेस करना है। हर बार दबाने के बाद छाती को पूरी तरह से वापस आने दें, ऊपर आने दें। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा जब हम किसी चीज़ को स्क्वीज़ करते हैं, कोई बॉल स्क्वीज़ करते हैं, तो दोबारा स्क्वीज़ करने से पहले उसको पूरा उसके फॉर्म में आने देते हैं। इसी तरह से आपको सीपीआर दे टाइम भी याद रखना है कि जब आप किसी को सीपीआर दे रहे हैं, उसकी छाती को प्रेस कर रहे हैं, तो उसको पूरा ऊपर तक आने दें, फिर 5 सेंटीमीटर तक दोबारा प्रेशर लगाएं और 1 मिनट में कम से कम 100 या 120 बार लगातार सेम प्रोसेस करें, और बीच बीच में उसे माउथ टू माउथ ऑक्सीजन भी देते रहें। जब आप ऐसा कर रहे हों तो उस व्यक्ति को जिससे आपने कहा है कि एम्बुलेंस को कॉल करे, उसे भी देख लें भाई कि वो कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एम्बुलेंस को कॉल करने टाइम ही भूल जाते हैं, हमको लगता है कि एम्बुलेंस को कॉल कोई भी कर देगा। तो भाई आप कोशिश करें कि आप तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें। वो व्यक्ति जो सीपीआर दे रहा है, हो सकता है कुछ वक्त के बाद वो थक भी जाए, तो आप उसकी जगह पर भी सीपीआर दे सकते हैं, लेकिन तरीका वही होगा। अपने हाथ को, अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखें, इंटरलॉक करें, कोहनियों को सीधा रखें, छाती को कम से कम 2 इंच यानी कि 5 सेंटीमीटर अंदर तक प्रेस करें, ऊपर आने दें उसे। 1 मिनट में 100 से 120 बार लगातार सेम चीज़ रिपीट करें, माउथ टू माउथ ऑक्सीजन डिलीवर करते रहें, जिससे व्यक्ति के अंदर, यानी जो बेहोश व्यक्ति है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी जाता रहेगा, साथ ही साथ उसके जो दिल है उसको वो भी धड़कता रहेगा। आपकी मदद से किसी की जान बचाई जा सकती है। फिलहाल जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को भी सीपीआर देने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे छोटे बच्चों को भी? जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को भी सीपीआर की ज़रूरत पड़ती है। तो सीपीआर छोटे बच्चों में कैसे देना है वो भी हम आपको बता देते हैं। शिशु की स्थिति को समझें, उसे छू कर उसकी प्रतिक्रिया लें कि बच्चे को तेज़ी से बिल्कुल भी ना हिलाए। कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चा बेहोश हो गया है या फिर उसे सांस नहीं आ रही, तो हम उसको पकड़ के ज़ोर से हिला देते हैं। ऐसा नहीं करना है, उसको ज़ोर से नहीं हिलाना है, उसकी स्थिति को बस चेक करना है। अगर बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो आप सीपीआर शुरू करते हैं। बच्चे के पास घुटनों के बल बैठना होता है। नवजात शिशु को सीपीआर देने से पहले अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करें, उसकी छाती को सिर्फ और सिर्फ 30 बार दबाएं और 1.5 इंच तक दबाएं, उसे 2 बार मुंह से सांस दें जब आप दबा रहे हो। जहां एक बड़े यानी कि वयस्क व्यक्ति को हमें 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार CPR देने की ज़रूरत होती है, बार बार उसकी छाती को प्रेस करने की ज़रूरत होती है, और जहां हमें उसको 5 सेंटीमीटर अंदर तक ले जाना होता है, वहीं पर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। बच्चे के साथ 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना होता है, उसकी छाती को सिर्फ 30 बार दबाना होता है और सिर्फ 1.5 इंच तक, क्योंकि अगर आप पूरा अपना वज़न डाल देंगे तो बच्चा उसको झेल नहीं पाएगा, आप बचाने जाएंगे और करके कुछ और ही आएंगे। इसलिए बच्चों के साथ जब CPR देने की बारी आती है तो वो बड़े लोगों से बहुत अलग होती है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब किसी की मदद करने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी उम्र का ज़रूर ध्यान रखें कि भाई वो बड़ा है, क्या वो उसकी हड्डियाँ झेल सकती हैं आपका वज़न, या वो एक छोटा बच्चा है, अभी नवजात शिशु है, उसकी धड़कनें बंद हो रही हैं, तो उसको किस तरह से CPR देना है, और उसको लगातार 2 बार मुंह से सांस देते जाएं, CPR देते जाएं, उसकी छाती को प्रेस करते जाएं, सांस देते जाएं, और ऐसा कर करके आप एक अच्छा खासा वक्त बचा लेते हैं डॉक्टर के पास जाने तक। और जैसे एम्बुलेंस आए उन्हें तुरंत एम्बुलेंस में बिठाएं और तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि उनके घर वाले आएंगे और घर वाले ही उसे एम्बुलेंस में लेकर जाएंगे, डॉक्टर के पास पहुँचाएंगे, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसा कई लोग करते भी नहीं है, बस स्टिल कई बार ऐसा होता है कि हम भीड़ में इतने सारे लोग होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, क्योंकि भीड़ वहाँ पर इतनी सारी मौजूद है और हमें लगता है ये कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा, और यही करते करते करते करते कोई कुछ नहीं करता है और व्यक्ति की जान चली जाती है। तो आप उन्हें तुरंत एम्बुलेंस में बिठाएं, हॉस्पिटल लेकर जाएं, और हॉस्पिटल जाने के बाद उनके फ़ोन में जो भी उनके घर वालों का नंबर हो उस पर कॉल करके बता दें कि भाई यहाँ पर क्या सीरियस सिचुएशन बनी हुई है। तब तक जब तक उनके घर वाले आएंगे तब तक शायद व्यक्ति की जान भी बचाई जा सकती है, क्योंकि आपने सही वक्त पे सही कदम उठाया था। लेकिन अगर आप पहले ही सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो एक्सीडेंट हो चुका है, हार्ट अटैक आ चुका है, सीरियस कंडीशन हो चुकी है, तो पहले हम घर वालों को कॉल करेंगे, देन हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, इससे व्यक्ति की जान बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं और हम आपको बताते हैं वो कौन कौन से नंबर हैं जिन पे कॉल करके आप एम्बुलेंस को बुला सकते हो, और ये 108 102 क्या डिफरेंस है इन नंबरों में, हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप बने रहिए मेरे साथ और अपने ख्याल ज़रूर बताइएगा। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है स्वास्थ्य संगिनी में, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ के बैनर के तले, तो ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या कुछ सीखा, कैसी लगी आपको ये जानकारी, और सुनते रहिए आपका अपना शो। मिलते हैं इस ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
0: और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी, और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
2: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
0: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
2: जी हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
0: जी,
2: और आज हम बात करेंगे TB और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में TB मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है, और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
2: जी हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
0: जी,
2: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
0: जी तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीवी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
2: जी जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
0: जी,
2: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ, और साबुत अनाज लेना जरूरी है, थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ, और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
0: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं
2: जी आरजे दीदी।
0: क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में जब आप जाते हैं, तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
2: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
0: जी।
2: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है, उसकी उनको जानकारी देती हूँ
0: जी,
2: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
0: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
2: जी दीदी
0: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
2: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है। वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
0: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

हाँ जी श्रोताओं, तो आप सुन रहे हैं स्वास्थ्य संगिनी सेहत सही लाभ के बैनर के तले चल रहा है खूबसूरत सी श्रृंखला जिसमें बात होती है आपके सेहत की। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति एंड आप सुन रहे हैं आपका अपना एफएम रेडियो 89.6 एफएम। ये है गोडा शहर की धड़कन और अब हम बात कर रहे हैं एमरजेंसी नंबर्स की। आफ्टर ऑल हमने CPR दे दिया लेकिन हमको यही नहीं पता है कि भैया कॉल करना तो करना किधर है, और हमने पता चल रहा है कि कॉल ही गलत नंबर पे कर दिया है। एम्बुलेंस वहाँ आ तो रही है लेकिन एम्बुलेंस भी सोच रही है कि हमें जाना कौन से वाले पे है। अब हुई ना कन्फ्यूजन। आपको पता है जब बहुत ज़्यादा पैनिक मोड हो जाता है ना, जब बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या फिर सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाती है कि हम उसे हैंडल नहीं कर पा रहे, लोग पैनिक होना शुरू हो जाते हैं, तब हमें ये समझ नहीं आता है कि हमें 108 पे कॉल करना है, 102 पे कॉल करना है या 112 पे कॉल करना है, और तीनों का डिफरेंस भी हमको नहीं पता है। इवन एम्बुलेंस को कॉल करना है या नहीं करना है, कई बार तो हमें ये भी याद नहीं आता। हम कह तो देते हैं भैया एम्बुलेंस पे कॉल करो, एम्बुलेंस पे कॉल करो। बात ये होती है कि हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं, यार भैया तुम कर दो ना यार कॉल, हमसे तो नहीं हो रहा है, तुम कर दो तुम कर दो। और यही करते करते जिसके पास वक्त होता है बचने का, उसका वक्त ख़त्म हो जाता है। तो ये 108, 102 और 112 में क्या डिफरेंस है और ये क्यों इतने अलग अलग हैं? 102, 108 दोनों एम्बुलेंस के नंबर हैं लेकिन ये अलग कैसे हैं? हम एक पर क्यों कॉल करते हैं, दूसरे पर क्यों नहीं करते? तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि 108 जो नंबर होता है वो किस लिए होता है और 102 जो होता है वो किस लिए होता है। डायल करेंगे जब आप 108 तो ये नंबर होता है एमरजेंसी और एक्सीडेंट के लिए, यानी कि एमरजेंसी में अगर कोई भी सिचुएशन आ गई है, कोई भी बंदा बीमार हो गया है, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है, किसी को अभी अभी तुरंत एमरजेंसी

बैठकर आपकी लोकेशन ट्रैक करते हैं और आपके आसपास जितनी भी नज़दीकी सेवाएं मौजूद हैं मेडिकल से, जो सबसे पास सबसे करीबी सेवा होगी वो आप तक तुरंत पहुंचाई जाती है। इस एम्बुलेंस के अंदर क्या क्या होता है, पैरामेडिक्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, जीवन रक्षक दवाइयाँ होती हैं, ताकि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो आपका गोल्डन आवर होता है उसमें मरीज की जान बचाई जा सके। यानी कि रास्ते में जो 10-15 मिनट का वक्त होता है उसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। उस दौरान अगर किसी व्यक्ति को कुछ इमरजेंसी मेडिसिंस मिल जाती हैं, कुछ डॉक्टर्स मिल जाते हैं जो हार्ट अटैक जैसी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, तुरंत रास्ते भर CPR देते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, या फिर उनका खून बहुत ज़्यादा बह रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, सांस नहीं आ रही है तो उसमें मदद करते, तो भाई ये जो गोल्डन आवर चल रहा होता है 10-15 मिनट का, जिसके अंदर आप किसी भी इंसान की जान बचा सकते हो, वो सारी सुविधाएं इस एम्बुलेंस के अंदर मौजूद होती है। अब बात करते हैं 102 की। ये तो बात थी हमने की 108 की, जो एमरजेंसी और एक्सीडेंट के लिए होता है। भाई एमरजेंसी आपको मैं बता ही दूँ, अगर मैंने हार्ट अटैक की बहुत देर से बात कर रही थी ना, तो अगर हार्ट अटैक किसी को आता है तो आपको सीधे 108 पर ही डायल करना है। इसको प्लीज़ अपने फ़ोन में कहीं ना कहीं सेव कर लीजिएगा। यूं तो अब हर कंपनी अपने फ़ोन के अंदर ये नंबर पहले से सेव करके भेजती है ताकि आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो इसको सेव कर लीजिए और इसको रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको याद करना। बात करते हैं अब 102 की। ये गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए है। नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, ये नंबर मुख्य रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है, यानी कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की सेवाओं के लिए समर्पित है। गर्भवती महिलाएं जिनका अभी अभी हो सकता है कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो और कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, उसको बहुत अचानक से दर्द होना शुरू हो गया, उसको लेवर पेन शुरू हो गया है, उसके बच्चा जो है वो बीमार हो रहा है, कुछ भी अगर आपको ऐसा कोई केस दिखता है जिसमें छोटे बच्चे शामिल हैं या फिर कोई एक प्रेग्नेंट महिला शामिल है, तो आपको 108 पर कॉल नहीं करना है, आपको कॉल करना है 102 पर। यह सेवा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK के तहत पूरी तरह से मुफ्त है। इसके अंदर आपको एक बेसिक पेशेंट ट्रांसपोर्ट सेवा है जो आपके घर तक आती है, आपके घर के पास आती है, आपको घर छोड़ने का भी काम करती है, आपको घर से ही रिसीव करती है। हम आपको बता दें भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इसमें बेसिक फर्स्ट एड होता है, सुरक्षित परिवहन की सुविधाएं भी मौजूद होती हैं। इसमें आपको बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि एमरजेंसी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, सांस में दिक्कत है, एक्सीडेंट हो चुका है, खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, तो उसमें उस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। और 102 में, क्योंकि ये शिशुओं और सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ज़्यादातर काम करती है, तो इसमें उस तरह की सुविधाएं मौजूद होती हैं। तो इन दोनों नंबर का फ़र्क ज़रूर याद रखिएगा कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है। वैसे इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी में अगर लेबर पेन हो रहा है तो वह इमरजेंसी में नहीं आता, आता है, बट उसके लिए एम्बुलेंस का नंबर 102 होता है। और 108 सड़क दुर्घटना या फिर कहीं और कहीं दुर्घटना हो गई है जिसमें कुछ अलग चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तो ये उनके लिए होता है। अगर कोई बच्चा आपको बीमार दिख रहा है, कोई बच्चे के साथ कुछ हुआ है, आपको बच्चा गंभीर हालत में दिख रहा है, तो भी आपको 102 पर ही कॉल करनी है। अब बात करते हैं कि ये 112 क्या है और 112 किस लिए होता है। तो भैया 112 वो नंबर है जिसके अंदर सारी सेवाएँ आपको मिल जाती हैं। एक एमरजेंसी नंबर है, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है, जो पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन सेवाओं के लिए काम करता है। ये देश भर में 24/7 निःशुल्क सेवा प्रोवाइड करते हैं, जिससे किसी भी संकट, दुर्घटना, अपराध, स्वास्थ्य आपातकाल या फिर प्रेगनेंसी, 108 में एमरजेंसी, सड़क हादसा, कहीं पर आग लग जाना, किसी को चोट लग जाना, हर तरह की सेवा इसमें आपको मौजूद मिलती है। इस तरह की सेवा पुलिस जो 100 नंबर है, फायर 101, एम्बुलेंस 108 और महिला हेल्पलाइन नंबर 181 सभी 112 के अंतर्गत आते हैं। ये नंबर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सक्रिय रहता है। स्मार्टफोन पर पावर बटन को, जो आपका स्विच ऑफ करने का बटन होता है, अगर आप उसे लगातार 3 बार दबाते हैं तो अपने आप ही 112 सक्रिय हो जाता है। अगर आप डायल नहीं कर पा रहे हैं, आप इस हालत में नहीं हैं कि अपना फ़ोन उठाकर अपना पासवर्ड खोलकर आराम से 112 टाइप करें, तो अपने पावर बटन को 3 बार प्रेस कीजिएगा, 112 अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी लोकेशन ट्रैक करके आपको सही वक्त पर सही मदद भेज दी जाएगी। तो ये वो नंबर्स हैं जिनको याद करना ज़रूरी है, जिनको लिखना ज़रूरी है, जिनको रटना ज़रूरी है और अपने फ़ोन में हमेशा इसको रखना ज़रूरी है। इन नंबर्स को डिलीट नहीं करना होता है। यूँ तो हमारे पास इमरजेंसी की ऑलमोस्ट सारी नंबर्स पहले से ही हमारे फ़ोन के अंदर फीड होते हैं, पहले से ही सेव होते हैं और हम ये चीज़ों को नोटिस ही नहीं करते हैं। जब पैनिक आता है तो हम इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि अभी नंबर

उसको ही भूल जाते हैं। तो भैया याद रखिएगा, अगर कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर बच्चों से रिलेटेड है तो भाई 102, कोई इमरजेंसी से रिलेटेड है, हार्ट अटैक, सड़क दुर्घटना से रिलेटेड है तो 108, और अगर आप इन दोनों नंबर को भूल जाते हैं तो भाई बात आती है फिर 112 की, जिसके अंतर्गत आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। बस भाई ये ख्याल रखिएगा। एंड घड़ी ने इशारा कर दिया है कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, क्या है आपके लिए मददगार साबित हो रही है या नहीं। एंड इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, वक्त है अब आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं स्वास्थ्य संगनी, सेहत सही लाभ के बैनर के तले आपकी अपने FM रेडियो 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी आशीर्वादी मौजूद हैं आपकी सभी के साथ। एंड वक्त है आपसे विदा लेने का, आपका अगला कार्यक्रम है सेहतिया संग, जिसमें बात फिर से होगी आपकी सेहत की, तो सुनना मत भूलिएगा। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने ही रेडियो स्टेशन को यानी रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और आपका अपना प्यारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। आज का एपिसोड थोड़ा खास है। हम अपनी इस श्रृंखला के पिछले बहुत सारे एपिसोड में हम बात कर चुके हैं वेक्टर बॉर्न डिसीज की, कभी फाइलेरिया की, कभी काला आजार की, कभी मलेरिया की तो कभी डेंगू की, पर आज हम बात करेंगे एक अहम वेक्टर जनित रोग की, एक्यूट एनसेफलाइटिस सिंड्रोम या जापानी दिमागी बुखार के बारे में। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त आरजी आकांक्षा और हम आज स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ में एक बहुत ही खास सलाहकार और इलाके के सभी के मित्र हमारे साथ में हैं जिनका नाम है सेहतिया जी। सेहतिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेहतिया भैया, आज की बात शुरू करने से पहले मैं एक घटना याद कर रही हूँ। हमारे ही गांव के पास 6 साल की बिटिया चिंगी की बारिश के बाद बगल के खेत में पानी भर गया और चिंगी वहीं खेल रही थी। शाम तक उसे तेज बुखार चढ़ गया और रात में अचानक दौरा पड़ने लगा।
3: हाँ आरजी आकांक्षा जी, वह मामला AES या जापानी एनसेफेलाइटिस का ही था। परिवार को लगा बस थकान होगी, किसी ने झाड़ फूंक की सलाह दी और अस्पताल पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो गई। यही इस बीमारी की सबसे बड़ी परेशानी है, ये इंतजार नहीं करती।
2: और दुख की बात ये है कि ऐसी घटनाएं अकेली नहीं है, बरसात के मौसम में कई बच्चे इसी तरह जोखिम में आ जाते हैं, बस इसलिए कि लोग समय पर पहचान नहीं पाते।
3: बिल्कुल, आज फिर कुछ काम की बातें करेंगे। आजकल मौसम ही ऐसा है कि सतर्क रहना जरूरी है, इसलिए आज हमें सुनने वालों को बताना बहुत जरूरी है कि जापानी बुखार या AES क्या है, कैसे फैलता है और गांव समाज मिलकर इसे कैसे रोक सकते हैं ताकि एक भी बच्चा चिंगी जैसी स्थिति में ना पहुंचे।
2: बिल्कुल भैया, आजकल गांव, बाजार, खेत खलिहान हर जगह एक ही शब्द सुनाई देता है, AES और जापानी बुखार। लोग डर भी रहे हैं, उलझन में भी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हमारे श्रोताओं को सही और सरल भाषा में पूरा ज्ञान दे दिया जाए। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, AES और जापानी बुखार आखिर होता क्या है?
3: देखिए आरजी आकांक्षा जी, AES का पूरा नाम है अक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम, यानी अचानक होने वाली तेज दिमाग की सूजन वाली बीमारी, और JE जापानीज एनसेफेलाइटिस यानी जापानी दिमागी बुखार AES का ही एक गंभीर रूप है।
2: यानी AES बड़ा नाम है और जापानी एनसेफेलाइटिस इसका एक मुख्य कारण है।
3: बिल्कुल सही, जैसे बरसात में कई तरह के बाढ़ आते हैं पर उनमें से एक बहुत खतरनाक होता है, उसी तरह AES में कई वजह होती हैं, पर JE उनमें भारी बीमारी है।
2: अब सबसे बड़ा सवाल ये है भैया कि लोग कह रहे हैं कि ये हवा से फैलता है, कोई कहता है फल से फैलता है तो कोई कहता है मच्छर से फैलता है, आखिर में सच्चाई क्या है भैया?
3: और जी आकांक्षा जी, जापानी इंसेफेलाइटिस यानी JE का फैलाव पूरे देश में एक जैसा नहीं होता, इसका कारण इसका अपना पर्यावरणीय चक्र है। इस वायरस को बढ़ने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक एम्पलीफाइंग होस्ट जैसे सुअर और कुछ पक्षी, बगुला, सारस वगैरह, और दूसरा क्यूलेक्टस मच्छर। जो इन जानवरों से वायरस लेकर इंसानों तक पहुंचाता है। इस वजह से जेई ज्यादातर उन इलाकों में मिलता है जहां धान की खेती ज्यादा होती है, खेतों में पानी भरा रहता है और बरसात के बाद मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं। यानी ये बीमारी ना पूरे देश में फैलती है, ना हर मौसम में, या खासकर धान के खेतों वाले इलाकों और बरसात के बाद सबसे ज्यादा दिखाई देती है। और ये बीमारी क्यूलेस मच्छर की वजह से फैलता है।
2: अरे सिहतिया भैया, थोड़ी और आसान भाषा में समझाइए हमें।
3: अरे बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब है कि जेई एक वायरल बीमारी है और वेक्टर यानी मच्छरों के जरिए फैलती है, खासकर क्यूलेक्स मच्छर। ये वही मच्छर होते हैं जो भारी गंदे पानी, खेतों के किनारे जमा पानी, सुअरों के पास तथा जंगल जंगल के इलाकों में ज्यादा मिलते हैं।
2: मतलब मच्छर ही इसका मुख्य कारण है।
3: हाँ, और बात यही नहीं खत्म होती। ये वायरस पशुओं, खासकर सुअर और पक्षियों में चक्कर लगाता है और मच्छर उसे इंसानों के शरीर तक पहुंचा देता है। इसको बोलते हैं जूनोटिक चक्र।
2: अच्छा भैया, और AES ये क्या है?
3: AES कई कारणों से हो सकता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, गंदा पानी, पोषण की कमी, लीची खाने से भी, अगर बच्चा भूखा हो। लेकिन जेई इसका सबसे खतरनाक रूप है।
2: अरे भैया, आपने तो हमारे लीची खाने पे भी प्रतिबंध लगा दिया, वो तो हमारा सबसे पसंदीदा फल था। चलिए कोई बात नहीं, अब लोगों को सबसे ज्यादा यही जानना है कि कौन से लक्षण दिखें तो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए।
3: बहुत जरूरी सवाल। AES या JE में लक्षण अचानक आते हैं। PDF में जो बताया गया है वो बिल्कुल सही है। मुख्य लक्षण: तेज और अचानक बुखार आ जाना, उलझन, बच्चा बार बार रो रहा हो, नींद ज्यादा आना या उल्टा लगातार रोना, दौरा पड़ना, बच्चा होश में ना रहे, गर्दन अकड़ना, चलने फिरने में दिक्कत, ये सारे इसके लक्षण होते हैं।
2: मतलब ये है कि लक्षण ये है कि बहुत तेजी से स्वास्थ्य खराब होता जाता है।
3: जी आकांक्षा जी, AES समय बर्बाद नहीं करता, इसलिए हमें भी नहीं करना चाहिए।
2: अच्छा सिहतिया भैया, अगर किसी को लक्षण दिख जाए तो घर वाले क्या करें?
3: कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आसान भाषा में बताता हूँ। पहला, तुरंत अस्पताल ले जाएं, समय न गवाएं, घरेलू इलाज, झाड़ फूक, देसी दवा में समय बर्बाद न करें। दूसरा, रास्ते में मरीज को सुरक्षित रखें, बच्चा बेहोश हो तो कुछ भी मुंह में ना दे, ना पानी ना दवा, बुखार ज्यादा हो तो गुनगुने पानी से पट्टी लगाएं, फिट्स आए तो बच्चे को दोनों ओर करवट दिलाकर रखे, रास्ते में गिरने से बचाने के लिए सिर को सपोर्ट दें। तीसरा, अस्पताल में बताए गए नियमों का पालन करें, किसी भी हालत में डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा उपचार बीच में ना रोके।
2: तो भैया, बीमारी तो एक तरफ है, पर गांव समाज की भूमिका क्या है? हम AES और जापानी बुखार को रोकने में क्या कर सकते हैं?
3: बहुत कुछ कर सकते हैं आरजे जी।
2: जैसे
3: AES जापानी एंसेफेलाइटिस के खिलाफ असली लड़ाई गांव की ही जीत हो सकती है। जैसे जेई वैक्सीन, 1 से 15 साल के बच्चों को टीका जरूर लगे, यह टीका मुफ्त उपलब्ध है और बहुत प्रभावी है। दूसरा, मच्छरों को पनपने से रोके, घर आंगन में पानी जमा ना होने दे, स्वरों के बाड़े को घर से दूर रखे, नालियों की सफाई, पानी की टंकी ढककर रखे और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। तीसरा, बच्चों को सुरक्षित रखे, खेलते समय पूरा कपड़ा पहनाए, शरीर खुला ना रहे और सुबह शाम बच्चा बाहर ना जाए। चौथा, पानी और खाना हमेशा साफ रखे, अस्वच्छ पानी AES के मामलों में बड़ा कारण है। उबला पानी दे, बासी खाना ना खिलाए और लीची खाली पेट ना दे। पांचवा, लक्षण दिखते ही बेझिझक अस्पताल जाएं, समय पर इलाज, मतलब कि जीवन बच जाना।
2: मतलब आपने हमारी लीची वाली समस्या का समाधान कर दिया। तो भैया अब आपसे ये कहना है कि हमारे एक श्रोता हैं जिनका नाम है राम भवन, जो हमें बभनान गोंडा से सुनते हैं। पिछले साल उनके पड़ोसी का बच्चा बुखार से ग्रसित हो गया। घर वाले बोले 2 दिन रुक जाओ, शायद ठीक हो जाओ, पर जब अस्पताल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
3: अरे AES में 24 घंटे ही निर्णायक होते हैं, लोग समझते देर कर देते हैं, बीमारी नहीं समय देखती। भाइयों बहनों, AES या जापानी एंसेफेलाइटिस कोई आम बुखार नहीं है, यह ऐसी बीमारी है जो हमें सोचने का समय भी नहीं देती। हम जितनी जल्दी काम करेंगे उतनी जल्दी जान बचेगी।
2: और सेहतिया भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी असली कहानी है जो हमारे श्रोताओं को समझा सके कि AES और जापानी बुखार कितनी गंभीर है और समय पर कदम उठाना क्यों जरूरी है?
3: बिल्कुल आरजी आकांक्षा जी, एक घटना आपको सुनाता हूँ जो आज भी मेरे दिल में बस गई है। ये कहानी है हमारे ही पास के एक गांव की, जहाँ सुबह का समय था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, औरतें नए ओवरहेड टैंक से पानी भर रही थी। और गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। उसी समय हमारे इलाके की आशा बहन ममता देवी अपने दिन की तैयारी कर रही थी। अचानक उनका फोन बजा, दीदी मेरा बच्चा बहुत तेज बुखार में है, मैंने 108 पर फोन कर दिया है, एक घबराई हुई माँ की आवाज थी। ममता ने तुरंत कहा, बहुत सही किया बहन, बस मैं अभी आ रही हूँ, हिम्मत रखिए। वो अपना स्वास्थ्य बैग उठाकर तुरंत उस घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने मुझसे कहा था, सेहतिया जी यही तो हमारा काम है, जब गांव को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत हो तब पहुंचना। जब ममता ने दरवाजा खटखटाया, वो दस्तक सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो परिवार के लिए उम्मीद थी, भरोसा था, जीवन रक्षक कदम था। देखिए आरजे जी, कुछ साल पहले इसी इलाके में AES और जापानी एंसेफेलाइटिस ने बच्चों की जान ले ली थी। लोग डरते थे, समझ नहीं पाते थे कि ये बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है या कोई श्राप है। बहुत से माता पिता झाड़ फूंक में विश्वास करते थे और जब तक अस्पताल पहुंचते बहुत देर हो जाती थी। ममता जैसी आशा बहनों ने सरकारी प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें सिखाया कि कैसे शुरुआती लक्षण को पहचाने, कैसे परिवारों को समझाएं और कैसे ई कवच पोर्टल से हर केस को ट्रैक करें।
2: जी तो सेहतिया भैया, आप ये बताइए कि आखिर ये ई कवच किस प्रकार मददगार है?
3: बहुत जबरदस्त टूल है। ई कवच पोर्टल CHO और आशा को यह सुविधा देता है कि कौन सा बच्चा किस बीमारी के जोखिम में है, किन परिवारों को मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, पोषण NCD से संबंधित जानकारी क्या है, किसे कब रेफरल की जरूरत है। ये ऐप उन्हें कदम दर कदम मार्गदर्शन देता है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे।
2: वाह भाई वाह, सियातिया भैया आपने तो बहुत ही पते की बात बताई। और अब ये भी बता दीजिए कि ममता बहन ने इन सब का इस्तेमाल कैसे किया?
3: ममता तो इस काम में मिसाल बन गई। वो रोज घर घर जाती थी, उसके बैग में पर्चे, स्टिकर, टीकाकरण रिकॉर्ड सब रहता था। शुरुआत में परिवार टीके से डरते थे, इंजेक्शन से बच्चा बीमार पड़ जाएगा, ऐसा उनका डर था, पर ममता ने कमाल कर दिया। उन्होंने अपने ही बच्चों का टीकाकरण गांव वालों के सामने कराया और बोली, देखिए मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक है, आप भी मत डरिए। और धीरे धीरे लोगों का डर भरोसे में बदल गया।
2: क्या बात है सेहतिया भैया, आपने बताया कि जापानी इंसेफ्लाइटिस बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है, तो इसका बचाव कैसे हो सकता है और क्या कोई टीका भी है इसके लिए?
3: बिल्कुल आरजी आकांक्षा जी,
2: जी
3: जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव का सबसे मजबूत तरीका टीकाकरण ही है। सरकार ने इस पर बहुत साफ गाइडलाइन बनाई है। हमारे देश में बच्चों को JE के 2 टीके जरूर लगते हैं।
2: 2 टीके कब कब?
3: पहला टीका 9 महीने की उम्र में, ठीक उसी समय जब बच्चे को खसरा का टीका लगता है, और दूसरा टीका 16 से 24 महीने के बीच, जब बच्चे को DPT बूस्टर लगता है। अप्रैल 2013 से ये दोनों डोज देश के 334 अकेडमिक जिलों में रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है। अप्रैल 2013 से ये दोनों डोज देश के 334 एंडेमिक जिलों में रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है।
2: और बड़े लोगों के लिए कोई टीकाकरण है क्या?
3: हाँ, जिन राज्यों में बड़ों में जेई के केस देखे गए हैं वहाँ अडल्ट वैक्सीन शुरू किया गया है।
2: अच्छा।
3: तीन राज्यों असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 26 जिलों में 15 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को जेई का टीका लगाया जाता है। इसके लिए एक खास वैक्सीन इस्तेमाल होती है, JENVAC, जो वयस्कों के लिए बनाई गई है।
2: मतलब बच्चे हो या बड़े, समय पर टीका लग जाए तो जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव काफी हद तक हो सकता है।
3: बिल्कुल हार्दिक आकांक्षा जी,
2: जी।
3: इसलिए हम आशा, ANM और CHO लगातार ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे गांव का हर बच्चा और हर जरूरतमंद वयस्क जेई का टीका लगवाए।
2: तो भैया, आपसे अब एक बहुत ही जरूरी वाला सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ कि आपको क्या लगता है हमारी रेडियो जैसी कोशिशें कितना फर्क डालती होंगी इन चीजों पर?
3: बहुत बड़ा फर्क। जब रेडियो से सही जानकारी गांव-गांव पहुंचती है तो लोग जागरूक होते हैं, टीकाकरण बढ़ता है, मच्छर रोकथाम पर जोर पड़ता है, अस्पताल आने में हिचक खत्म होती है। इस तरह सेहत सही लाभ कई जैसे कार्यक्रम व्यवहार बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
2: अरे वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, आज हमें AES और जापानी इंसेफ्लाइटिस का पूरा ज्ञान मिला, इसे कैसे बचना है और क्या करना है और कैसे अपने गांव को सुरक्षित रखना है।
3: हम लगातार यही कह रहे हैं, आदत बदले, सेहत सुधरेगी, साफ सफाई रखें, टीका लगवाएं, जागरूक रहें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दोस्तों, ध्यान रखिए, जानकारी ही बचाव है और सही समय पर डॉक्टर ही असली उद्धारक है। चलते हैं, पर कल फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने रेडियो गैनेस्ले 89.6 FM से जुड़े रहिए। पर जाने से पहले हमेशा की तरह अपनी सेहत की शपथ।
1: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
1: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
4: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
1: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
5: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
5: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है। जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।
4: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
7: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
8: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
7: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
8: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
7: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
9: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
10: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
11: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
11: आज ही कॉल करें 9260
1: 9818-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
10: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
2: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठे जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता
7: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
6: तो भाई आ गए हैं आपके पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली, और सुन सहेली में हम दोनों लोग आ गए हैं फिर से। यानी कि हमको तो ये लगता है कि हम लोग कल से यहाँ घर गए ही नहीं है, यहीं गए हैं, क्योंकि जब सुबह उठो तो एक तलब सी हो जाती है कि हाँ भाई जाना है और सुबह आप लोगों से मिलना है। भले आप हमारे चैट बॉक्स में नहीं आते हैं, लेकिन आप सुनते तो हैं। जैसे लगता है ना कि हमने टीवी तो ऑन कर ली है, जब हम उसे देखते नहीं है, बट हमारे कानों में तो टीवी की आवाज जाती है। बस हम लोग यही सोच करके संतोष कर लेते हैं। देखो कितने बड़े हम लोग संतोषजनक व्यक्ति बन चुके हैं अपने जीवन के।
7: बिल्कुल, जो मिला अच्छा मिला,
6: जो मिला अच्छा मिला
7: उसी में,
6: जो नहीं भी मिला वो भी उसमें, उसमें भी संतोष है, जो मिल रहा है उसका भी संतोष है, शुक्राना है कि हाँ ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं आज के अपने शो में, जो कि आप सभी को पता है कि आज है हमारा थर्सडे, और थर्सडे के दिन हम करते हैं कुछ ऐसी खासम खास बात, लेकिन वो होगी थोड़ी सी देरी से, क्योंकि अभी जो वक्त हो चला है वो आपको विश करने का है। तो स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो सुन सहेली में। हम दोनों आजेस आ गए हैं, आपकी सहेलियां आ गए हैं, और आइए विश कर देते हैं एक ही साथ एक ही फ्रेम में दोनों लोग। शुभ दोपहरिया,
7: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और आइए बात करते हैं, सीधे चलते हैं समय को बिल्कुल भी ना गवाते हुए प्यारी सी पोएट्री की तरफ, जो कि आपको आपकी अपनी आज समता सुनाने वाली है।
6: बिल्कुल, तो बिल्कुल भागम भाग वाला आज सेक्शन मुझे लग रहा है अंशिका, कुछ ऐसा जैसे लग रहा है हम लोगों की इंटरसिटी ट्रेन छूट रही है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, आराम से थारे रखो, थारे थारे मतलब आराम से।
7: ओके
6: ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे रास्ता दें और आराम से, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत बहुत ज्यादा टाइम है।
7: ओके तो आइए रास्ता देते हैं। तो जैसा आज हमारा सेगमेंट जो है वो है थर्सडे, थर्सडे यानी कि बड़े बुजुर्गों को लेकर के, तो आइए कुछ उसी से लाइंस की शुरुआत करते हैं। हम नहीं देखते हैं, हम नहीं देखते हैं, पर फिर भी वो सब देख लेते हैं, हमारे बिन कहे वो सब समझ भी लेते हैं। दर्द हो दिल में, दर्द हो दिल में, ना कहो होठों से, वो आंखों से पढ़ लेते हैं। ऐसे होते हैं वो जिनके होने से, जिनके होने से हर दर्द कम लगता है, और जिनका हाथ सिर पे हो तो साक्षात वो भगवान धरती पर महसूस होता है।
6: बिल्कुल,
7: तो आइए कुछ ऐसी प्यारी प्यारी बातों के साथ करते हैं प्यारी सी शुरुआत आपकी अपनी वाली आरजे, आरजे समता के साथ।
6: चलिए, तो मुझे कल मैंने अपना राशिफल पढ़ा था अंशिका, तो उसमें मुझे सुनने को ये मिला था कि अक्टूबर के महीने में आपको बहुत बड़ी वाली खुशखबरी मिलने वाली है।
7: ओके।
6: जो आप इतने दिनों से चाह रही थी वो आपको अक्टूबर के महीने में मिलने वाला है।
7: ये तो बहुत अच्छी बात है।
6: हाँ, तो मेरी चाहने वाली लिस्ट तो बहुत बड़ी है, पर मुझे लग रहा है ईश्वर मुझे वही देंगे जो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा।
7: बिल्कुल,
6: तो चलते हैं और फटाफट हम आज की बहुत ही प्यारी सी
7: वो मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला है,
6: वो मिलेगा जो मुझे अभी तक नहीं मिला है, और जो मेरी रियलिटी में जो दिल की खुशी है वो मुझे
7: वो मिले।
6: ठीक है, तो दुआ करिएगा। तो चले आगे बढ़े,
7: चलिए इस दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमारी मैम जो ढूंढ रही हैं वो उन्हें मिल जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप, अच्छा जो आप नहीं चाहते हैं वो मिल जाता है तब ज्यादा खुशी होती है, या आप जो चाहते हैं वो मिलता है तब ज्यादा खुशी होती
6: है। जो हम जो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है वो हमें मिलता है तो उसकी खुशी चार गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है उसकी तो खुशी होती ही होती है, बट लगता है ना कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी नहीं, अरे ये कैसे हो गया, तो वो वाली खुशी जो होती है ना वो मतलब औसम वाली खुशी होती है।
7: बिल्कुल, तो ऐसी ही औसम वाली खुशियां बस दस्तक देने ही वाली हैं, तो उन खुशियों को भी वेलकम हम जरूर करेंगे। ओ माय गॉड, इसे कहते हैं कि जब यूनिवर्स कुछ चाहता है तो वो आपको छोटे छोटे साइंस देता है, और कहते हैं समझदार को इशारा काफी, तो हमें तो इशारा नहीं, मुझे लग रहा है पूरी वो मिल गई। क्या कहते हैं,
6: कल रात में 9 बजे के बाद, तो चले इसी खुशी के साथ और पढ़ते हैं आज की पोयम को। घर की नींव पुरानी है ये, घर की नींव पुरानी है ये, बरगद की ठंडी छाया है, इनके साए में रहकर ही हम सब ने जीवन पाया है, इनके चेहरे की झुड़ियां तजुर्बों की एक किताब है, इनके ही आशीर्वाद से महकते घर के सब ख्वाब है, बचपन की वो लोरी बनकर रातों को ये सुलाते थे, उंगली थाम के चलना हमको पापा के पापा सिखाते थे, मतलब पता है
7: दादाजी,
6: दादी की कहानियों से परियों का संचार, दादी की कहानियों से परियों का संसार छुपा था, दादा के उन किस्सों में जीवन का हर सार छुपा था, वक्त बदला और पीढ़ी बदली पर इनका प्यार नहीं बदला, हमारी हर एक खुशियों के लिए इनका संसार नहीं बदला, भले थकी हैं आंखें इनकी पर जिक्र फिक्र हमेशा करते हैं, घर के ये बूढ़े बच्चे आज भी दुआएं भरते हैं, मत छोड़ो इन्हें अकेला ये तो घर की शान है, इनके ही कदमों में बसता तीर्थ और भगवान है, हाथ जोड़कर शीश झुकाओ इनका करो सदा सम्मान, हाथ जोड़कर शीश झुकाओ इनका करो सदा सम्मान, बुजुर्गों के रहने से ही पूरा होता है हर इंसान। बुजुर्गों के रहने से ही पूरा होता है हर इंसान।
7: बिल्कुल, बुजुर्गों के रहने से ही पूरा होता है हर इंसान। और कहीं ना कहीं घर में जब कोई बड़ा होता है और हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम भाग कर जाते हैं। और मैम ने भी दादाजी की बात की तो मुझे भी याद आ गया कि जब मेरे दादाजी थे और दादी जी थी, अब तो नहीं है मतलब, पर जब भी थी तो जब भी मम्मी पापा या कोई डांट देता था तो हम भाग के जाते थे, देखो मुझे डांट दिया है, और फिर उधर से डांट पड़ती थी, कैसे कहा तुमने मेरी बेटी को, कैसे कहा, ज्यादा मत बोला करो, जितनी जरूरत है उतना ही बोला करो। और फिर पापा भी मुझे नहीं डांटते थे कि अभी सीधा जाएंगी वहां और फिर मुझे डांट पड़ेगी। तो ऐसा ही होता है कि बहुत सुकून महसूस होता है जब आपके बड़ों का हाथ आपके सिर पे होता है। और जब कोई अच्छा वाला, बहुत ही खास वाला इंसान हमारी लाइफ में होता है ना, तो कुछ ऐसे होता है जैसे अभी हुआ था। संसार का संचार होता है और कुछ होता है जैसे अभी मैम के मुख से हुआ था।
6: आज जाने की जिद ना करो।
7: नहीं, आज जाने की जिद, आज मेरे ख्यालों में आप रहने की जिद करो। वाह, बहुत प्यारा। तो हम तो ऐसे मैम मतलब मस्ती कर रही थी मतलब, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्ती महंगी पड़ जाए और फिर ऑफ माइक हो तो बहुत बोलती हो।
6: हाँ, तो
7: ऐसा कुछ नहीं।
6: रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की ओर चले।
7: जी जी, तो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, आज का जब इतनी खुशी की बात हो रही है तो चलिए कुछ खुशी से रिलेटेड ही बता देते हैं। खुशी, हंसी और सम्मान वही होता है जो कभी अपमान के साथ नहीं मिलता। अगर आप किसी को सम्मान देना चाहते हैं तो उसे कभी अपमान के कवर में लपेट कर नहीं देना चाहिए। कहने का सेंस ये है कि कई बार होता है कि जब किसी को हम गिफ्ट देना चाहते हैं तो एक गिफ्ट होता है कि हम खुशी के साथ देते हैं, अगले को अच्छा स्पेशल फील कराने के लिए देते हैं कि आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं, बहुत अपने हैं, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। एक सेकेंड होता है कि हम कैसे देते हैं, जता करके कि अरे देखो मैंने तुम्हारे लिए इतनी महंगी गिफ्ट खरीदी है, या हम उसको बार बार कहते रहते हैं। तो रिश्तों में कभी अगर आप सम्मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो कभी जताइए नहीं, क्योंकि अगर आप जताएंगे तो वो आपका सम्मान नहीं रहा, वो सामने वाले का अपमान हुआ। इसलिए कभी नहीं जताना चाहिए कि हमने आपके लिए वो चीज़ें, जैसे किसी किसी इंसान को हैबिट होती है रिश्तों में, अरे तुम नहीं जानते हो बहुत ज़्यादा हम वो करते हैं, मेरी तो आदत है सबके लिए वो करनी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पता चल जाता है कि आप सामने वाले का अपमान कर रहे हैं। इसलिए जब भी सम्मान दें तो पूरे दिल से दें, ऐसा सामने वाले को सच में लगे, दिल से महसूस हो कि आप उससे प्यार करते हैं।
6: बिल्कुल, तो चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे आज की बहुत ही प्यार से हम टॉपिक की ओर, और उसके बाद आएंगे सीधे चैट बॉक्स में भी, क्योंकि चैट बॉक्स में आ गए हैं बहुत सारे हमारे लिसनर्स, तो और भी जल्दी जल्दी से आ जाइए ताकि सबका नाम लेंगे और आपका फिर से वेलकम करेंगे। लेकिन उसके पहले
7: आइए लिसनर्स चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा

0: पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता
4: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
3: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, लेकिन उसके पहले आशु जी, रेखा जी, गीता जी और अरविंद जी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो सुन सहेली में। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज के टॉपिक को।
4: आज का हमारा जो टॉपिक है वो हेल्थ से रिलेटेड है, जो कि हमारी बड़े बुजुर्गों की हेल्थ होती है। और इस हेल्थ में कहीं ना कहीं आज जो एक प्रॉब्लम होती है वो होती है सर्वाइकल, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है बड़े बुजुर्गों में। लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो ये डिस्क की तरह हो जाता है।
3: बिल्कुल।
4: क्या होता है, कैसे होता है, आइए बताते हैं। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत तब होती है जब आपकी रीढ़ की हड्डियाँ जो होती हैं ना, वो धीरे धीरे उनमें कहीं ना कहीं पानी की कमी होने लगती है और वो सूखने लगती हैं। आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि हमारे नसों में क्या होता है कि कभी जब हम चलते हैं बहुत ज़्यादा तो नसों में मतलब गर्मी लगने लगती है।
3: हाँ।
4: आप बहुत देर चलिए तो गर्मी लगने लगती है। तो हम कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज से हो रहा है, इसलिए गर्मी लग रही है। लेकिन जब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, यानी कि पानी की एक तरीके से कमी होती है, तब हमारी हड्डियाँ जो होती हैं वो सूखना शुरू हो जाती हैं और उनके जो पोषण तत्व होते हैं वो खत्म होने लगते हैं, तब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी को सर्वाइकल भी कहते हैं। जैसे जब आपकी रीढ़ की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा टाइट होने लगती हैं, गर्दन पे आपकी सूजन आनी शुरू हो जाती है, गर्दन के पीछे के हिस्से में, तब सर्वाइकल की शुरुआत होती है। लेकिन कई बार हम इसे इग्नोर करते हैं, हम सोचते हैं अरे ऐसे पीठ में दर्द हो रहा होगा, ऐसे छोड़ो अटाव रहने दो। लेकिन ये इग्नोर करने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप इसे इग्नोर करते हैं तो हर दिन के साथ आपके नस पे दबाव बढ़ता ही चला जाता है, प्रेशर बढ़ता ही चला जाता है और हर दिन के साथ ये और ज़्यादा बढ़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को पीठ में ही मतलब पीछे के हिस्से में कई बार सूजन हो जाती है।
3: हाँ।
4: बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हिस्सा होता है, जैसे किसी किसी को हम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा झुक गए हो।
3: पहले मेरे भी था, जब थोड़ी सी हेल्थ मेरी हुई
4: जी,
3: मुझे भी था
4: जी मैम। तो ऐसे ही होता है। वो क्यों होता है, वो इसी कारण से होता है क्योंकि जब आप सर्वाइकल को इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो धीरे धीरे ये गांठ का रूप भी ले सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसे कभी बढ़ने नहीं देना चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: ये तो हुई इसकी शुरुआत। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे लक्षणों की जो कि आपको ये बताती हैं कि आपको वाकई में सर्वाइकल है या सिर्फ नॉर्मल पेन है। लक्षण में होता है गर्दन में तेज दर्द और जकड़न। अगर आपको हर वक्त अपनी गर्दन के पीछे हिस्से में तेज दर्द और जकड़न महसूस होती है, बोलने में, सिर हिलाने में या फिर सुबह ब्रश करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जैसे कभी हम सो करके उठते हैं तो हल्की फुल्की तो सभी को हो जाती है कि आज गर्दन में दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का।
3: कभी पिलो की वजह से या कभी मतलब गलत सोने से भी हो सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली ऐसा है तो फिर उसको इग्नोर नहीं करना है।
4: बिल्कुल। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये जो सर्वाइकल का पेन होता है ये फैलता हुआ दर्द होता है।
3: Okay.
4: फैलते हुए दर्द का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको गर्दन के पीछे हिस्से में ही दर्द हो। सर्वाइकल ऐसा होता है जो बढ़ता चला जाता है।
3: हाँ।
4: पहले आपको गर्दन के पीछे हिस्से में दर्द होना शुरू होगा, फिर आपको कमर में दर्द होना शुरू होगा, पीठ में दर्द होना शुरू होगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये आपके सिर और जबड़े तक भी पहुंच जाता है। कई बार आपने शिकायत करते हुए कई लोगों को सुना होगा कि यार पीठ गर्दन के पीछे दर्द हो रहा है तो मेरे सर में और मेरे इसमें भी
3: जबड़े में भी,
4: जबड़े में भी दर्द हो रहा है। यही एक सबसे मेन लक्षण है जो ये बताता है कि आपको सर्वाइकल हो रहा है, क्योंकि सर्वाइकल का दर्द हर दिन के साथ बढ़ता ही चला जाता है। यहाँ तक कि जब ये एक पॉइंट से ज़्यादा बढ़ जाता है मैम तो हमें खाना निगलने में भी दिक्कत होती है, हम खाना भी नहीं और इजीली निगल पाते हैं। इसलिए इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आते हैं कि सुन्नपन और हल्की सी झंझनाहट होना। अगर आपके हाथों की उंगलियों में और पैरों में हर वक्त हल्की झंझनाहट सी होती है, चलते चलते कई बार आपने देखा होगा कि पैर हम स्लिप हो जाता है, तो लगता है अरे क्या हो रहा है, झंझना रहा है पैर। अगर ऐसा आपके पैरों और हाथों में उंगलियों में कंटिन्यूअसली होता है तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। और कई बार हमारी गर्दन का जो पिछला हिस्सा होता है वो हमें सुन्न सा महसूस होता है कि जैसे हम हाथ मार रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है।
3: हाँ।
4: तो हम कहते भी यार पता नहीं क्या है, आज सुन्न जैसे लग रहा है। अगर ये भी आपको कंटिन्यूअसली हो रहा है तो इसका मतलब है ये पूरा पूरा सर्वाइकल पेन का लक्षण हो सकता है, आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके लक्षण कुछ गंभीर भी होते हैं, जैसे लगातार सिर में दर्द होना और चक्कर आना। अगर आपके सिर में लगातार दर्द और चक्कर आते हैं कंटिन्यूअसली, तो इसका मतलब है कि वो एक सीरियस स्टेज पर पहुंच चुका है। हम इसे इसलिए इग्नोर नहीं करते हैं क्योंकि अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो ये सिर्फ आपकी गर्दन को, जब बढ़ जाता है मैम तो सिर्फ आपके गर्दन को ही, ऐसा नहीं है कि हार्म करता है, वो पूरा हार्म करेगा आपके सिर को, आपकी
3: पूरी बॉडी पे असर,
4: पूरी बॉडी पे असर करता है। और इसका एक लक्षण और होता है कि जब हम बहुत ज्यादा ये बढ़ जाता है तो जो आप उबराव महसूस करते हैं गर्दन के पीछे, हम कहते हैं ना सूज गई है,
3: सूज गई है, हाँ।
4: गांठे जैसी, उसमें से क्या होता है कि उसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है। आप जरा सा हाथ भी लगाएंगे तो आपको बहुत तेज पेन होगा। तो ये भी एक लक्षण होता है कि हमारी नस जो है वो दब रही है, और जरूरत से ज्यादा जब नसें दबती हैं तो उनके फटने का खतरा भी हो सकता है। इसलिए सर्वाइकल पेन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर आपको हल्की सी भी गर्दन में कुछ भी ऐसी लग रही है कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं और अपना ध्यान रखें।
3: बिल्कुल,
4: तो आइए इन्हीं बातों के साथ चलते हैं, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ समस्या बताई है,
3: अब इसका निवारण बाकी है, वो निवारण बताएंगी आपकी आज संता।
4: बिल्कुल
3: ठीक है, तो यहाँ लेते हैं एक प्यारा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे हम ले करके इसका, इस सर्वाइकल और जो कि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के लिए बात है तो बहुत ही केयरफुली सुनना है और उनको अपनाना भी है। ऐसा नहीं है कि केवल सुन करके बस भूल जाना है, उनके साथ उनको अपनाना भी है। लेकिन उसके पहले सुनेंगे एक प्यारा सा गाना।
5: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना ना

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: आगे आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो चलिए फटाफट चलते हैं, शुरू करते हैं आज के निवारण की ओर, जो कि है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो सर्वाइकल के बारे में अंशिका बता रही थी, थोड़ा सा पहले रिलीफ
7: ब्रीफ करते हैं।
6: ओ माय गॉड, क्या हो गया मुझे?
7: ऐसे ही होता है
6: जब प्यार होता है। तुम्हें तो जैसे 2-4 बार हो चुका है।
7: नहीं,
6: इतना एक्सपीरियंस हो के बोलती हो कि ऐसा ही होता है, जैसे लगता है इनको 5-6 बार हो चुका है।
7: नहीं, मुझे तो अभी एक भी बार नहीं हुआ।
6: तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि मुझे ही प्यार हुआ है?
7: ऐसा सुनते हैं, ऐसा देखते हैं।
6: मतलब आपने ऐसा देख लिया कि मुझे प्यार हो गया है,
7: ऐसा समझते हैं?
6: नहीं, कोई प्यार वार, प्यार सिर्फ जिंदगी में एक ही बार होता है और जो मैं अपने हिस्से का कर चुकी हूँ।
7: ऐसा नहीं होता है मैम।
6: आगे बढ़े, वरना ये प्यार वाला जो सेक्शन है ना, ये हम लोग सैटरडे को करेंगे।
7: हाँ
6: ठीक है,
7: फिलहाल आइए आपको बताते हैं कि हम आपको क्या बता रहे थे। तो अभी तक हमने आपको लक्षण बताए कि कैसे लक्षण होते हैं, और साथ में ये भी बताया कि सर्वाइकल की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है। तो गर्दन में अगर बहुत ज़्यादा तेज आपको दर्द होता है, सूजन आ जाती है, और ज़रा सा आप टच भी करते हैं नहीं, अपनी गर्दन को हल्का सा भी हिलाते हैं तो आपको पेन होने लगता है। तो ये है सर्वाइकल पेन, और कैसे इससे आपको ठीक करना है, क्या कुछ प्रिकॉशंस करने हैं, आइए चलते हैं उसकी तरफ।
6: तो प्रिकॉशन नंबर 1 ये है कि अगर हम घर बैठे ही कुछ चीज़ों को देखना चाहते हैं, मतलब घर बैठे ही कुछ ऐसी चीज़ों का हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहला उसमें पॉइंट आता है सिकाई का। यानी कि सिकाई अगर हम करना चाहें तो दर्द और जकड़न होने पर दिन में 2-3 बार गर्म पानी के बैग से सिकाई करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि सिकाई करना, जैसा कि अभी मैंने बताया, हीटिंग पैड से सिकाई करें। हीटिंग पैड से सिकाई करने पर आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा नॉर्मल वे में ही आपको सिकाई करनी है, ज़्यादा प्रेशर से आपको सिकाई नहीं करनी है। दूसरा है, जो कि अभी मैंने अंशिका को बताया था, कि सही तकिया और गद्दे का चुनाव करना चाहिए। अगर आपने सही तकिए का इस्तेमाल नहीं किया, सोते समय बहुत ऊंचा या बहुत सख्त तकिया लगा लिया, तो भी सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं आपके गर्दन पर इसका प्रभाव पड़ता रहता है। गर्दन के नीचे पतले या ऑर्थोपेडिक सर्वाइकल तकिया लगाना बेहतर होता है। पोस्चर को ठीक रखें, बैठते समय, लेटते समय रीढ़ की हड्डी और गर्दन को हमेशा सीधी रखें। ज़्यादा देर तक गर्दन झुकाकर कोई काम बिल्कुल ना करें। ये तो हो गए आपके घरेलू बदलाव जो आप अपनी जीवन शैली में ला सकते हैं। अब आता है मेडिकल और थेरेपी। तो फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज जो कि आपको डॉक्टर हमेशा से देते हैं, बताते हैं कि गर्दन की हल्की सी स्ट्रेचिंग और मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज, जैसे चिन टंग्स हो गया, चिंग उसको रोटेट करना हो गया, ऐसी वाली रोज आप कर सकते हैं। दवाइयाँ, तेज दर्द होने पर डॉक्टर की सलाह से सूजन और दर्द को कम करने वाली ही दवाइयाँ, और मसल्स रिलैक्स को करने वाली ही दवाइयाँ केवल आपको लेनी है। अगर ज्यादा हो रहा है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये तो जो कुछ मेडिकेटेड और कुछ घरेलू उपचार थे जो कि हमने आपको बताए, जो कि अगर आपको शुरुआती तौर में अगर है तो आप उसको लेकर के प्रिकॉशन आप अपने आप को रिलीव कर सकते हैं।
7: सो आइए लिसनर्स, अब चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। बस यूं गए और यूं आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बहुत ही प्यारा और पसंदीदा शो सुन सहेली।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज के नेक्स्ट सेक्शन, यानी कि आपका बेहद पसंदीदा, जो कि होता है अभी प्लांट्स के बारे में। आई थिंक सो ऐसा है।
5: यस मैम। तो आइए प्लांट्स को लेकर के हम दोनों ही आपको आज कुछ टिप्स देंगे, कुछ टेक्निक्स बताएंगे।
4: उसके पहले बता दूं कि आशु जी लिख रही हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग, एंड प्रीति जी लिख रही हैं गुड आफ्टरनून आरजेस। सबलू जी आए काफी दिनों के बाद, एंड नागेश्वर जी। तो भाई आप सभी लोग कहाँ रहते हैं? मौसम, मैं जान रही हूँ कि मौसम ऐसा है कि 1:30 बजे के बाद यार इतनी गहरी वाली नींद आती है, आप खुद सोचो हम लोग कैसे बैठते हैं। मतलब ना एक तो एक सोने वाला बिल्कुल माहौल भी यहाँ पर होता है हमारे स्टूडियो में। मैं आपको क्या बताऊँ, देखिए फुल एसी चल रही होती है ना, और बिल्कुल शांत वाला एरिया होता है, सिर्फ हम लोग बात कर रहे होते हैं, और आप सोचो इस माहौल में हम लोग बिल्कुल अलर्ट होके बैठते हैं, क्योंकि हमें आपसे बातें करनी होती हैं। लेकिन अगर एक ही बंदा इस तरफ से केवल बोलता रहे और सामने वाला सोता रहे, तो नींद फिर सामने वाले को भी आएगी। ऐसा होता है मुझे लग रहा है। ऐसा ही है ना। तो आप खुद सोचो कि मुझे तो जागना है, पर आप लोग भी जागा करो, और प्लीज़ चैट बॉक्स में आकर के थोड़े बहुत मैसेजेस किया करो। तो एक आई है अक्सर कुशवाहा।
5: ओके।
4: अक्सर नहीं, अक्सर क्या लिखा है, मैं नहीं पढ़ पा रही क्या लिखा हुआ है। अकर। अकर
5: अकर
4: ये अकर है, अकर कुशवाहा। तो हेलो लिख रही हैं और अपना पूरा नाम लिखी है पूरा प्लीज, एंड सभी का फिर से स्वागत है, एंड शुभ दोपहर या सभी को जो भी हमारे लिसनर्स आए। आइए प्लांट्स के बारे में शुरू करते हैं।
5: तो कुछ जैसे कि हमने कहा टिप्स हैं, लेकिन आज जिस पॉइंट पर टिप्स हैं वो पॉइंट ये है कि जब हमारे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें धूप प्रॉपर नहीं मिलती है, तो उनके साथ क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि जब धूप प्रॉपर नहीं मिलती है तो पौधे जो होते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी टहनियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो कली होती है फूलों में, जिससे फूल बड़े होते हैं, वो कलियाँ धीरे धीरे टूटने लगती हैं, जिसकी वजह से आपका प्लांट ग्रोथ नहीं करता। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने प्लांट का ख्याल रखें। सेकेंड आता है कि जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, पत्तियाँ गिरनी शुरू हो जाती हैं, ग्रोथ नहीं होती है, और साथ ही साथ में मिट्टी जो होती है वो सूख जाती है और उसमें फंगस लगने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिट्टी जो है वो सही रहे और आपके पौधे अच्छे से ग्रो करें, तो उसके लिए उन्हें धूप की प्रॉपर ज़रूरत होती है।
4: और खासी खासम खास मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ प्लांट्स के लिए, जो हमेशा से हम लोग बोलते आते हैं और आप लोग सुनते आते हैं, कि पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं देना चाहिए। पानी आप उतना ही दें जितना प्लांट्स को नीड है, मतलब जितना प्लांट्स सोख सकें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि हम ना सुबह उठते हैं और हम अपनी श्रद्धा अनुसार तुलसी को या फिर आप अपने घर के पौधों को पानी देते हैं, बट उसमें प्रॉपर पानी होता है, घर के जितने मेंबर्स होते हैं वो पानी देते हैं, बट क्या होता है कि कभी कभी कि ज़्यादा पानी देने से जो मिट्टी होती है, जो उनकी जड़ें होती हैं, वो अंदर ही अंदर गलने लगती हैं और आपका पौधा ऊपर से ख़राब होने लगता है। तो प्लीज़ ऐसा भी ना करें, पानी जितनी मात्रा में पानी एक पौधे को पानी की नीड होती है, बस हफ्ते में एक बार दो बार या बहुत गर्मी है तो आप 3 से 4 बार पानी दे सकते हैं। या आपको लगे कि पौधा सूख रहा है तब आप पानी का छिड़काव करें। पानी को ले करके किसी बड़े बकेट में हो या पाइप को लगा दिया तो छोड़ दिया, घंटों पानी उसी में पूरा बह रहा है आपके गार्डन में, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पानी को इस तरीके से इस्तेमाल करें जैसे एक शावर होता है ना, हम लोग नहाते हैं शावर के नीचे, उस शावर वाला एक बकेट आता है वो ले लें, और बहुत ही स्लोली स्लोली आप अपने पौधों को पानी दें, जिससे आपके पौधे सड़ेंगे नहीं।
5: बिल्कुल सही कहा मैम ने कि पौधों को अगर आप बचाना चाहते हैं तो उसके लिए ये टिप्स आप जरूर यूज करें। अब आइए बताते हैं आपको कि जैसा कि अभी मैम ने बोला कि हम पानी ओवर दे देते हैं, ठीक उसी तरह कई बार ऐसे भी होता है कि हम अपने प्लांट्स को पॉट्स में लगाते हैं और जहां वो पॉट्स रखे हुए होते हैं महीनों महीनों तक वहीं रखे रहते हैं।
4: उसको मतलब चेंज नहीं करते, चेंज नहीं करते, उधर उधर से इधर चेंज नहीं करते हैं।
5: और जो कि बहुत जरूरी होता है, हमेशा अपने प्लांट्स की जगह को बदलते रहना चाहिए। अगर आपने कभी जैसे धूप, अभी मैंने बताया ना धूप जब नहीं लगती है, तो धूप अगर नहीं लग रही है तो जरूरी है कि आप उनकी जगह को बदलते रहें, उन्हें वहां रखें जहां सुबह की हल्की गुनगुनी धूप आती हो।
4: जी।
5: और सेकंड ये है कि कई बार हम देखते हैं कि गमलों के नीचे जब आप गमले में लगाते हैं तो गमलों के नीचे पानी और मिट्टी जमा होती है। अगर बहुत टाइम बाद आपने कभी अपने उसको पॉट को उठाया होगा तो देखा होगा, वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम अपने उसमें होल करते हैं, ऑक्सीजन होल करते हैं कि पानी नीचे जा सके, ऑक्सीजन पास आउट हो सके, तो धीरे धीरे जब वो पानी नीचे जाता है तो पॉट के नीचे इकट्ठा हो जाता है। हाँ। जिसकी वजह से वो मिट्टी भी वहाँ धीरे धीरे
4: जमने लगती है
5: और ये पौधे के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि जब नीचे मिट्टी और पानी जम जाता है तो वो ऑक्सीजन होल जो आपने बनाया होता है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आपके प्लांट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है।
4: हाँ।
5: और वो उनके लिए हार्मफुल होता है, इसलिए जगह को चेंज करते रहें। प्रॉपर धूप उस प्लेस पे भी लगनी चाहिए जहाँ पे आपने अपने पॉट्स रखे हैं, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए और वहाँ पे ना धूल जमे और ना पानी एक साथ हो, ये बहुत जरूरी है। तीसरी चीज ये है कि हमेशा धूप जो लगनी चाहिए वो गुनगुनी धूप लगनी चाहिए, यानी कि सुबह की धूप।
4: कई बार पता है क्या होता है, लोग ना प्लांट्स को धूप पे रख देते हैं और घंटों, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है जब कभी वो लोग बाहर जाते हैं, मतलब कहीं बंद उनको जाना होता है, उनके गार्डन की कोई भी देखभाल नहीं करता है, तो वो 3 से 4 दिन हफ्ता भर यूं ही बंद रहता है, और उसके बाद में जब आते हैं तो इतनी ज़्यादा मतलब सारे पौधे सूख जाया करते हैं और उनको पानी देने वाला कोई नहीं होता है। तो कई बार ये चीज़ें देखी गई हैं, तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी करके जाएं ताकि आपके पौधे को पानी भी मिलता रहे, और साथ ही साथ में ऐसी जो सफाई जो बता रही है अभी अंशिका की पॉट्स के नीचे, तो ये भी प्रॉपर होती रहे।
5: बिल्कुल, क्योंकि ये आपके पॉट्स को अच्छा रखने के लिए, उसमें अच्छे अच्छे फूल हों उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से जैसे जब आपके दिमाग में ज़्यादा डस्ट हो जाती है, ज़्यादा चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, तो हम कहते हैं ना दिमाग की सफाई ज़रूरी है, वैसे पौधों की भी सफाई ज़रूरी होती है।
4: आशु जी कह रही हैं कि जो ज़मीन में लगे हों उसका क्या करें, तो जो ज़मीन में लगे होते हैं उनका तो कुछ नहीं है, उनको तो प्रॉपर जो जितना भी आप पानी डालेंगे वो पूरी ज़मीन में फैल जाएगा धीरे धीरे करके, लेकिन उन्हें भी आराम से, मतलब कहते हैं ना कि जब आप पाइप लगा करके छोड़ देंगे, तो आपने गौर किया होगा कि जब आपके पौधे पाइप से ज्यादा पानी जब भर जाता है तो वो सतह बहुत चिपचिपी सी हो जाती है, बहुत गीली हो जाती है, कुछ देर के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। यस आई नो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन चाहे वो पॉट में हो चाहे जमीन में हो, आपको पानी उतना ही देना है जितना एक पेड़ एक पौधे को उसकी नीड हो, नीड से ज्यादा नहीं,
5: नीड से ज्यादा नहीं, नीड से ज्यादा हमें कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा चीजें मिल जाती है ना तो दो चीजें होती है,
4: दिमाग खराब हो जाता है,
5: दिमाग खराब
4: जैसे अंशिका का हो गया है।
5: नहीं मेरा दिमाग खराब नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरा दिमाग सही है बिल्कुल, अपने क्या कहते हैं उसे
4: नहीं हो गया है, हमको हम मतलब खुद को थोड़ी लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, वो तो किसी सामने वाले को लगता है ना दिमाग खराब हो जाना,
5: मेरा दिमाग खराब हो गया,
4: खुद को थोड़ी लगता है कि हाँ हम गलत है,
5: नहीं नहीं मैम खुद को भी कभी कभी लगता है,
4: नहीं इसमें कोई बहसबाजी नहीं, खुद को नहीं लगता है, क्योंकि खुद को नहीं लगता है कि हम लोग गलत है, सामने वाला जब परखता है कि आपका दिमाग खराब हो गया, आप सही नहीं काम कर रहे हैं, आप गलत हैं, तो वो आपके अगले सामने वाले को लगता है।
5: ओके
4: खुद को हमेशा से इंसान सही साबित सही लगता है कि हाँ मैं तो सही हूँ, मतलब मैं इस जगह पर सही हूँ, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है।
5: तो चलिए हमारी बातें होती रहेंगी, यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन इन बातों के चलने के साथ और कुछ भी चलाना बहुत जरूरी होता है,
4: मुंह,
5: वो तो हम बात करते वक्त चलाते हैं।
4: अच्छा
5: मैं सॉन्ग्स के लिए कह रही थी।
4: अच्छा सॉन्ग्स के लिए कह रही
5: हूं, सॉन्ग्स चलाना जरूरी होता है, आपको सुनाना जरूरी होता है, तो आइए सुनाते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो आइए लास्ट बट नॉट लीस्ट चलते हैं उन बुजुर्गों के लिए एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी, जो कि आज के युग में भी, मतलब वो खाली हाथ नहीं बैठे। और मुझे इस कहने का तो हक नहीं है कि बड़े बुजुर्ग, क्योंकि एक ना एक दिन हम लोग भी उसी कंडीशन में आने वाले, उस स्टेज पे आने वाले। बट जो भी हार के ना हारे, अपनी उम्र से ना हारे, वही तो सच्चा इंसान होता है। तो एग्जैक्टली जो कि अपनी उम्र से भी कभी हार ना माने और अपनी जो कि प्रॉब्लम्स को कभी कोई बड़ा ना समझे। अपनी प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है, मतलब प्रॉब्लम को बड़ा समझना ही नहीं है। तो ऐसे मोटिवेशन लोग बहुत सारे हैं, आइए उन्हीं में से जानते हैं एक छोटी सी मॉरल स्टोरी जो कि आज बड़े बुजुर्गों के लिए है।
7: आज हम आपको बताएंगे हमारी सुपर नानी के बारे में। हमारी सुपर नानी जो कि है मनकौर। मनकौर जी, जिनकी कहानी सिखाती है कि एज इज अ नंबर। अब मैं आपको जो बताऊंगी ना, वो
6: देखो, अब मुझे नहीं पता था ना स्टोरी क्या है, बट मैंने पहले ही बता दिया कि एज इज नॉट नंबर।
7: जी मैम, तो आइए अब आपको बताते हैं। और अब जो मैं आपको बताऊंगी ना, वो आप

0: के पक्का चौंक जाएंगे। अच्छा, आप एक अनुमान लगाइए लिसनर्स, और कि 93 अगर इंसान की एज है तो वो क्या करेगा, मतलब एक नॉर्मल
1: 93 एज है, मुझे लगता है कि वो क्या ही कर पाएगा, वो घर में बैठा रहेगा और उसे उसे तो मुझे लग रहा है कि खाना खिलाने के लिए भी किसी को किसी की हेल्प की नीड होगी।
0: बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमारी सुपर नानी ऐसे नहीं कही जाती। वो सुपर इसलिए कही जाती है क्योंकि उन्होंने 93 की एज में एथलीट में पार्ट लिया। 93 की एज में उनको ये हुआ।
1: Are you serious?
0: Yes.
1: Oh my God.
0: 93 की एज में उन्होंने ये सोचा कि उन्हें अपना एथलेटिक्स का सपना पूरा करना है, और उन्होंने वैसा किया भी। मैं बता दूं कि उनके बेटे ने जब उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट किया कि आप दौड़ो, आप कर लोगे, आप कर लोगे, तो उन्होंने भी उस चीज़ को लिया। और सारी जो लोग भी उन्हें कहते थे कि इस उम्र में क्या होगा, अरे ये उम्र तो बस यही होती है, भगवान का नाम लो, ऐसे लोग उन्हें कहते थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना। जब उन्हें उनके बेटे का सपोर्ट मिला तो उन्होंने सीधा जा कर के ग्राउंड में कदम रखा, और देखते ही देखते वो वर्ल्ड मास्टर्स एथलीट चैम्पियनशिप की विनर भी बनी और उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता।
1: माई गुडनेस,
0: बता दूं कि 100 से भी ज़्यादा, मतलब 100 से भी ज़्यादा उम्र थी उनकी, और वो इतने सारे उस टाइम पर ट्रैक्स जीत चुकी थी, 10 चैम्पियनशिप्स जीत चुकी थी, और सब यही कहते थे कि उनकी जो ये राज है उनकी चुस्ती का, उनकी फुर्ती का, कि वो जिस भी दौड़ में पार्ट लेती थी वो उसे कभी हारती नहीं थी, और वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनकी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। So, इसलिए कहते हैं कि कुछ मायने नहीं रखता है, सिर्फ मायने रखती है
1: एज। एज नंबर इज मतलब कहते हैं ना कि मुझे नहीं लगता है कि कभी भी एज को उतना वैल्यू देना चाहिए। अगर आप में हौसला है, अगर आप में कुछ करने की तलब है, तो आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, ये सिखाने के साथ साथ इनकी स्टोरी ये भी बताती है लिसनर्स कि आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई कुछ भी हो, यहाँ सिर्फ बात ये नहीं है कि एज हो, कई बार कुछ नेगेटिविटीज भी होती हैं जो हमें बहुत परेशान करती हैं, लेकिन उनके लिए आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना है, और वो अपने लिए रखना है, क्योंकि अपनी फैमिली के लिए आप ही हो। मान लीजिए अभी आपको कुछ हो जाए, ईश्वर ना करे, तो आपके पीछे जो लोग हैं, आपकी फैमिली, वो कैसे सर्वाइव करेगी,
1: बिल्कुल
0: कैसे चीज़ों को डील करेगी। इसलिए जब भी अपनी बात आए तो हमेशा खुद से पहले अपनी फैमिली को सोचे कि ईश्वर ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो वो कैसे जिएंगे।
1: एग्जैक्टली, एंड अंशिका की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि वाकई में खास करके ये बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं, ये सभी के लिए बात है कि हमेशा से विल पावर अपना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो धर्मेंद्र मोहन आवाज जी, आपका स्वागत है, नमस्ते। लेकिन आज आपने आने में बहुत ज़्यादा देर कर दी, थोड़ी देर नहीं की है, बहुत ज़्यादा देर कर दी है। चले कोई नहीं, कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
0: बाय दोस्तों।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

चुरा के दिल तेरा चली मैं चली, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और इसी सॉन्ग के साथ में हमने एंट्री कर ली है लिसनर्स आपके अपने बहुत ही प्यारे वाले प्रोग्राम में कॉलर ट्यून गोंडा में। आप सभी का स्वागत करती है आपकी अपनी आरजे अंशिका। सो कैसे हैं आप सब और कैसा है आप सभी का हाल चाल? भाई आप सभी को तो पता है कि आज का दिन जो होता है वो बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा सा होता है, क्योंकि आज का दिन होता है थर्सडे। थर्सडे यानी कि आपका अपना पहेलियों वाला दिन। आज हम आपको कुछ पहेलियाँ बताएंगे और आपको देने हैं उन पहेलियों के जवाब। तो देखते हैं कि कौन दे पाता है जवाब। और इसी के साथ आइए चलते हैं चैट बॉक्स में और स्वागत कर लेते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे साथ आ चुके हैं जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ सबलू सावन जी, तो वेलकम सबलू जी, कैसे हैं आप? अरविंद जी, और अरविंद जी बड़ी प्यारी सी शायरी भी लिख रहे हैं। तेरी खामोशी ने दिल का हर ख्वाब तोड़ दिया, बिक गए हम इस तरह की कोई मोल ना बचा। वाह ये तो बहुत ही अच्छा है। और इसी के साथ बाबू अंसारी जी आ गए जो कि हमें अहमदपुर से सुनते हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम जी, कैसी हैं आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सभी भी अच्छे हैं और प्रोग्राम तो अच्छा होना ही है क्योंकि ये हमारा कॉलिंग प्रोग्राम यानी कि कॉल ट्यून गोंडा, जिसमें कि आप कॉल करते हैं और आपकी फरमाइशों को हम आप तक पहुंचाते हैं। सो आइए लिसनर्स अब चलते हैं, बढ़ते हैं हमारी सबसे पहली फरमाइश की तरफ, जो कि आज हमारी सबसे पहली फरमाइश होने वाली है सबलू सावन जी की। तो आइए सुनते हैं सबलू जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आप सब इसे इस सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए आपके अपने प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून्ड।

अभी अभी आपने इंजॉय किया सबलू जी के सॉन्ग को, आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश होने वाली है सुनील कुशवाहा जी की। तो आइए सुनते हैं सुनील कुशवाहा जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आप सभी से सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए आप सभी सुने, इंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम में जिसका कि नाम है कॉलर ट्यून गोंडा। और कॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें, कॉलिंग नंबर है 6393316429 6393316429 4 2 9 63 93 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2

तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश होने वाली है शारदा प्रसाद प्रजापति जी की, जो कि हमें सुनते हैं मथुरा से। तो आइए सुनते हैं शारदा प्रसाद प्रजापति जी के सॉन्ग को, और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने, इंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून्ड।

वाली से जो करें यारी मुरे राजा, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश होने वाली है मोहम्मद वारिस जी की। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद वारिस जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार पहली पहेली के साथ। तो आप सभी रहिएगा तैयार, क्योंकि आपकी पहली पहेली आप तक बस पहुँचने ही वाली है। सो आइए सुनते हैं मोहम्मद वारिस जी का सॉन्ग।

कि कितना प्यार मैं करती हूँ, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी मोहम्मद वारिस जी ने, ओह आई एम सो सॉरी, जिसकी की फरमाइश की थी बिल्कुल सही मोहम्मद वारिस जी ने। तो आइए अब इससे पहले कि हम हमारी अगली फरमाइश की तरफ बढ़ें, आपको नेक्स्ट सॉन्ग सुनाएं, आपको आज की पहली हम पहेली बता देते हैं। तो आज की जो सबसे पहली पहेली है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा लिसनर्स। मुंह मेरा है पर बोल नहीं सकता, पेट मेरा है पर खा नहीं सकता, जितना पानी मुझ में भरो उतना ही तुम्हें प्यास से बचाऊंगा, बताओ कौन हूँ मैं। फिर से बता देती हूँ, मुंह मेरा है पर बोल नहीं सकता, पेट मेरा है पर खा नहीं सकता, जितना पानी मुझ में भरो उतना ही तुम्हें मैं प्यास से बचाऊंगा। तो बताइए कि ये क्या है। तब तक आइए चलते हैं हम हमारी दूसरी जो कि अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उससे पहले पहले पहले आ चुके हैं सविता दुबे जी, आ गई हैं सविता दुबे जी के साथ में आ चुके हैं धर्मेंद्र जी, और धर्मेंद्र जी के साथ ओके चांद जी भी आ गए हैं और मोहम्मद मुशीद जी भी आ गए हैं। हेलो कैसे हैं आप। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश बाबू अंसारी जी की। तो आइए सुनते हैं बाबू अंसारी जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार।

0: बिल्कुल, तुम्हारी आंखों में चाहत हमारी सोती है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। हमारी अगली फरमाइश जो होने वाली है, वो अगली फरमाइश होने वाली है सबिहा जी की। तो आइए सुनते हैं सबिहा जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार अगली फरमाइश के साथ। तब तक के लिए आप सभी बने रहें और इंजॉय करते रहें अपना फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा। और हाँ, पहेली का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें।
1: तुझे आई लव यू बोले कितना टाइम हो गया यार, एक किस तो बनती है।

बिल्कुल सुन सुन रात गुजारे क्या बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश होने वाली है देवी प्रसाद जी की। तो आइए सुनते हैं देवी प्रसाद जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए आप सभी सुने, इंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में।

बिल्कुल, जो बची है कलियां वो भी तो चुन ले। और मैं चैट बॉक्स में देख रही थी कि पहेली का आंसर अरविंद जी ने दिया है और सबलू जी ने दिया है, जो कि है अरविंद जी का आंसर है सुराही और सबलू जी का आंसर है गुब्बारा, जो कि दोनों ही गलत आंसर हैं। आप दोनों और सोचें और कोशिश करें, हो सकता है, मुझे लगता है कि आप असली पहेली तक पहुंच ही जाएंगे, यानी कि असली आंसर तक। तब तक के आइए हम चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश होने वाली है चांद बाबू जी की। तो आइए सुनते हैं चांद बाबू के सॉन्ग को, बस यूं गए और यूं आए, आप सभी भी इंजॉय करें। और हाँ, पहेली का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें।

0: तो हाल मेरा तुझे क्या पता। तो आइए इससे पहले कि हम हमारी अगली फरमाइश की तरफ बढ़ें, चैट बॉक्स में कहा जा रहा है कि आप पहेली को एक बार और पढ़ दीजिए। तो आइए पहेली हम एक बार और अपने लिसनर्स के लिए पढ़ देते हैं, जो कि है, ध्यान से सुनिएगा लिसनर्स, मुंह मेरा है पर बोल नहीं सकता, पेट मेरा है पर खा नहीं सकता, जितना पानी मुझ में भरो उतना ही तुम्हें प्यास से बचाऊंगा, बताओ कौन हूँ मैं। सोचिए सोचिए, ये वो है जो आप अपने साथ स्पेशली गर्मियों में तो ज़रूर से रखते हैं। तो आइए अब इसी प्यारी सी बात के साथ चलते हैं प्यारे से सॉन्ग की तरफ, जो कि अगली फरमाइश हमारी होने वाली है वो है इरशाद जी की। तो आइए सुनते हैं इरशाद जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार, तब तक के लिए आप सभी सोचें और पहेली का जवाब दें।
1: ठीक है,

कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी फरमाइश की थी इरशाद जी ने। अब आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है निब्बर जी की। तो आइए सुनते हैं निब्बर जी के सॉन्ग को। और मैं देख रही हूँ कि सबलू जी ने फिर से आंसर दिया है नदी। जी नहीं सबलू जी, नदी नहीं है। तो आइए मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है पानी की बॉटल। यस, इस पहेली का जवाब है पानी की बॉटल, जिसमें कि आप पानी कितना भी भरें वो कभी खुद नहीं पीती है, बल्कि आपकी प्यास बुझाती है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई इज़ द बेस्ट ट्राई। आपको मैं अगली पहेली दूंगी और फिर आप पक्का ट्राई करिएगा। आई नो कि आप सभी उसका जवाब ज़रूर दे लेंगे। आइए फिलहाल सीधे चलते हैं और सुनते हैं निब्बर जी के सॉन्ग को।

कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी निब्बर जी ने। और इससे पहले कि हम हमारी अगली फरमाइश की तरफ बढ़ें, आपके अपने चैट बॉक्स में एंट्री हो गई है आपकी अपनी आरजे यानी कि उन्नति जी की, और वो लिख रही हैं हेलो आरजे अंशिका, हेलो आरजे उन्नति, कैसी हैं आप और क्या है आपका हालचाल, फटाफट से बताएं। तो आइए लिसनर्स, वेलकम कर लेते हैं आरजे उन्नति का। तो आई होप कि आप सुन रही हैं आरजे उन्नति और आप इन्जॉय भी कर रही हैं हमारे साथ कॉल ट्यून गोंडा को। मैं भी इन्जॉय कर रही हूँ और आज आप आई हैं इसलिए मुझे और भी अच्छा लग रहा है। सो आइए अब चलते हैं लिसनर्स, बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश होने वाली है मोहम्मद मुशीद जी की। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद मुशीद जी के सॉन्ग को।

मज़ा आता है यूं ही मेरे दिल को तड़पा के। आपने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और बहुत ही प्यारी सी फरमाइश जो कि थी मोहम्मद मुर्शीद जी की। अगर आप भी अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको भी फ़ोन उठाना है और डायल करना है 6393316429 और अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचा देना है। तो आइए लिसनर्स, अब चलते हैं अगली पहेली की तरफ जो कि आपको जिसका जवाब देना है। तो बताइए कि वो क्या चीज़ होती है, मैं फिर से आपसे पूछने जा रही हूँ कि एक कमरे में वो कौन सा फूल है, आप जवाब दीजिएगा, वो कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं होती। बताइए बताइए बताइए कि वो कौन सा फूल है जिसकी ना कोई रंग होती है और ना ही कोई महक होती है। तब तक के लिए हम चलते हैं हमारी अगली डिमांड की तरफ जो कि है धर्मेंद्र मोहन जी की। तो आइए सुनते हैं धर्मेंद्र जी के सॉन्ग को, तब तक आप सभी सोचें और इस पहेली का जवाब दें कि वो कौन सा फूल होता है जिसमें ना महक होती है और ना ही उसका कोई रंग होता है। आइए तब तक सुनते हैं हम धर्मेंद्र मोहन जी के सॉन्ग को।

हैं प्यार के दो चार दिन बहुत ही अच्छे हैं। तो आइए इससे पहले कि हम हमारी अगली फरमाइश की तरफ बढ़ें, चैट बॉक्स में हमारी पहेली का जवाब हमें मिल गया है और उसी के साथ मुस्तफ़ा जी आ गए हैं जो कि हमें सऊदी से सुनते हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आपको भी, कैसे हैं आप? और पहेली का जवाब जो दिया है वो दिया है इट्स कुमार जी ने, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अप्रैल फूल। और इसी के साथ यही जवाब दिया है अरविंद जी ने भी, तो दोनों का ही आंसर सही है, न कोई रंग होता है और ना ही उसमें कोई खुशबू होती है। इसी प्यारी सी पहेली और प्यारे से जवाब के साथ में आइए लिसनर्स बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश होने वाली है सतीश जी की। तो आइए सुनते हैं सतीश जी के सॉन्ग को। आप सभी बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।

सिद्दीकी जी, आपको भूला कोई भी नहीं है, कैसे भूल सकते हैं आपको, आप भी हमारी लिसनर हैं, गुड आफ्टरनून आपको भी। और बिल्कुल ऐसा नहीं है, बस मैसेज थोड़े स्क्रॉल हो जाते हैं इसलिए नाम पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो वेलकम आपका भी गुलाबसा सिद्दीकी जी, और बिल्कुल भी भूलते नहीं हैं हम किसी को भी। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग इसी के साथ में। इट्स कुमार जी, आप भी कैसे हैं आप, तो आइए सुनते हैं इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग को।

कितना बेचैन होके तुमसे मिला, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी सतीश जी ने। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है अरीबा, अरीबा जी की। तो आइए सुनते हैं अरीबा शाकिर जी के सॉन्ग को, और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार्ट के लिए। आप सभी सुने, इंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यूं गए और क्यों आए।

की है, समझ ना आए मैं क्या करूं, दिल ने मेरी ऐसी हालत की है। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश की थी अरिबा शाकिर जी ने। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ जो कि होने वाली है अरविंद जी की। तो आइए सुनते हैं अरविंद जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए आप सभी सुने, इन्जॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।

के सॉन्ग को, आइए चलते हैं, बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि होने वाली है अविनाश जी की, जो कि हमें सुनते हैं त्रिपुरा से। तो आइए सुनते हैं हम अविनाश जी के सॉन्ग को।

मोहब्बत याद करोगे, मेरी वफाएं याद करोगे, सैनिक मूवी का बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी अविनाश जी ने। तो आइए लिसनर्स, अब इसी सॉन्ग के साथ मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को इजाज़त दीजिए। आई होप कि आप सभी को आज का क्वालिटी ट्यून गोंडा मेरे साथ अच्छा लगा होगा, आप सभी ने इन्जॉय किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गॉडली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गॉडली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स, और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88404-3395-84। 88404-3395-84। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्या खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: हाँ जी, और आपका स्वागत करते हैं आज आपके लाइव स्पेशल शो खेत खलिहान में। आपके अपने आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। तो हर बृहस्पतिवार की तरह इस बार का भी एक खास विषय है, और विषय बहुत ही ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि हर विषय इस प्रोग्राम का महत्वपूर्ण होता है, लेकिन चूँकि सीज़न जो है, जो ऋतु चल रही है, उसमें जब हम बात रबी की करते हैं तो इसकी जो विशेषता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी कड़ी में आज हम रबी फसलों के बारे में बात करेंगे, लेकिन रबी फसलों के बारे में उसके उगाने की नहीं, बल्कि रबी फसलों के साथ एक बड़ी समस्या आती है कीटों की। जी हाँ, उस पर लगने वाले जो कीट है हमारे किसान भाइयों को परेशान कर देते हैं। इससे उनका खर्चा भी बढ़ जाता है और जो होने वाला लाभ है फसलों से वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और ये एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने होता है। इसी पर चर्चा करने के लिए, यानी कि रबी फसलों में जो लगने वाले कीट हैं उनके प्रबंधन पर, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में श्री अनुपम चौबे जी मौजूद हैं, जो कि स्कॉलर हैं कुमारगंज विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अयोध्या से। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ।
5: धन्यवाद।
3: कैसे हैं आप?
5: बहुत अच्छे हैं। बजे बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया, खेत खलिहान कार्यक्रम के अंतर्गत आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया
3: जी।
5: और मैं धन्यवाद देता हूँ इरफान जी को
3: जी,
5: कि उन्होंने हमसे संपर्क किया और कहा कि आप हमारे यहाँ कार्यक्रम में आइए और किसानों को मार्गदर्शित कीजिए।
3: बिल्कुल। तो जैसा कि आज विषय है उस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक संक्षिप्त सा परिचय आप हमारे 89.6 FM पर भी दे दिए, क्योंकि कई ऐसे किसान भाई हैं जो आपको पहली बार सुन रहे हैं और आप पहली बार आए भी हैं। खैर
5: जी, मेरा नाम अनुपम चौबे है। मैं शोध छात्र हूँ आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कीट विज्ञान विभाग में, और मैं ये आकाशवाणी कार्यक्रम में जाता रहता हूँ। किसानों के बीच हमारी चर्चाएं होती रहती हैं हमेशा
3: जी।
5: इसी के अंतर्गत आज हम आपसे जुड़ रहे हैं खेत खलिहान कार्यक्रम में, जिसमें मैं आप लोगों को रबी फसल, अभी जो मौसम आने वाले हैं, इसमें रबी की फसलों में हम लोग जो भी फसलें लगाएंगे उसमें जो कीट आते हैं उनके प्रबंधन के विषय में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा।
3: जी, तो बिल्कुल सही आपने कहा और आपने अपना एक छोटा सा परिचय दिया संक्षिप्त सा, जिसमें आपने बताया कि भाई आप जो है वो कीट पर ही ज़्यादा आपका फोकस है और कहीं ना कहीं जो शोध कार्य है वो इसी पर है और आज हमारा ये विषय भी है। और मुझे उम्मीद है कि कीट से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न रबी की फसलों में जो इस वक्त चल रही है अगर उसमें लगते हैं किसी किसान भाई को कोई समस्या है तो लाइव ये शो हो रहा है 6393 पर आप हमको कॉल भी कर सकते हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा। लेकिन चलिए अब इसी कड़ी में सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अनुपम जी हमको ये बताइए, जब बात आती है कीट की स्पेशली जब रबी की फसल की बात करते हैं
5: जी,
3: तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कीट से बचाना रबी फसलों को और कितना नुकसान होता है किसान भाइयों का अगर इसका प्रबंधन सही से और समय पर ना किया जाए।
5: जी, आप देखेंगे कि जब भी हम कोई भी फसल लगाते हैं तो उसमें प्राय कीट और रोग आते ही आते हैं, तो हम उसमें जो है उत्पादन में बहुत हानि होती है किसानों को। और कभी कभी तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे कीट आ जाते हैं कि पूरी की पूरी फसल को ही नष्ट कर देते हैं
3: जी।
5: तो इससे जो है हमको कीट प्रबंधन की तरफ जाना अति आवश्यक हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग आज कीट प्रबंधन के विषय में जानेंगे
3: जी। तो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा समस्या आती है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, हालांकि अब इस पे एक दो नहीं तमाम प्रश्न हैं हमारे पास जो हम आज बतौर एक्सपर्ट अनुपम चौबे जी से पूछेंगे। और इस बीच अगर आपको लगता है हमारे किसान भाइयों जो इस वक्त आप लाइव सुन रहे हैं कोई शंका है कोई प्रश्न है तो आप भी 6393 इस स्टूडियो के नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट लाइव शो में हमारे एक्सपर्ट से अपनी परेशानी को साझा कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं प्रश्न की तरफ और पहला जो प्रश्न है वो मेरा आपसे ये है कि रबी की प्रमुख फसलें पहले तो हमारे किसान भाइयों को बताइए क्योंकि उनको तो खैर पता ही होता है, लेकिन चूंकि इस प्रोग्राम को सुनते हैं हमारे गोंडा शहर से रहने वाले बहराइच बलरामपुर यूपी के अलग अलग हिस्सों में भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग हमको सुनते हैं, तो रबी की कौन सी प्रमुख फसलें हैं और इसमें मुख्य रूप से अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो कौन कौन से कीट जो हैं वो लगते हैं।
5: जी, रबी में जैसे हम लोग जानते हैं कि जब ठंडी आ जाती है तभी हम लोग रबी की फसलों की बुआई स्टार्ट कर देते हैं और इसमें अगर हम देखें तो अनाज वाली जो फसलें हैं उसमें हम मुख्यतः गेहूं की खेती करते हैं, दलहन की फसलों में हम लोग चना मटर और मसूर की खेती करते हैं, तिलहन फसलों में हम लोग इधर अपने क्षेत्र में गोंडा बहराइच फैजाबाद आदि क्षेत्रों में सरसों और लाही की खेती मुख्य रूप से करते हैं और सब्जियों की भी खेती हम लोग मुख्य रूप से रबी फसलों में करते ही हैं। इसमें जो कीट है उसमें सबसे पहले जो दो तरह के कीट लगते हैं, एक होते हैं जो रस चूसते हैं फसलों का और एक होते हैं जो उन्हें काट कर खाते हैं और एक होते हैं जो फल होता है उसमें फली के अंदर घुस के उसकी फली को ही नष्ट कर देते हैं। तो इसमें मुख्यतः जैसे माहू हो गया, तना छेदक हो गया, फली वेधक हो गया, पत्ती सुरंगक हो गया, इस सब कीट मुख्य रूप से इस रबी की फसलों में लगते हैं
3: जी। तो आपने बड़े ही अच्छे से दो तरह के कीटों के बारे में बताया, जो एक फसलों के रस को चूसते हैं और दूसरा उसको काट के खाते हैं। और जैसा कि आपने दलहन तिलहन सभी फसलों के बारे में बताया कि उसमें आखिर हम कौन कौन सी जो है फसलें लगाते हैं, इसी कड़ी में चूंकि हमारे साथ में इरफान शाह भी मौजूद हैं हमारे बतौर को होस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। इरफान जी आपका भी स्वागत है सबसे पहले तो जी, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ हमारे इरफान जी के पास भी बहुत सारे प्रश्न हैं और चलिए चलते हैं इरफान जी के प्रश्नों की तरफ, देखते हैं कि भाई हमारे एक्सपर्ट से आज क्या क्या पूछ रहे हैं।
1: जी सर, तो हम आते हैं सर अगले सवाल पर क्योंकि आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जानेंगे सर कि गेहूँ की जो फसलों में जो लगने वाले जो प्रमुख कीट उनकी जो पहचान है वो कैसे करें और उसका नियंत्रण कैसे करें हमारे किसान भाई बहन।
5: जी, जैसा कि आप जानते हैं 15 अक्टूबर के बाद से हम लोग गेहूँ की बुआई की शुरुआत कर देंगे, तो इसमें जो मुख्य कीट होते हैं उसमें दीमक आती है, सैनिक कीट होते हैं, माहू होता है और कटवर्म जो होते हैं, कर्तन कीट होते हैं, ये सारे कीट लगते हैं। तो जिसमें पहले कीट की मैं बात करता हूँ, वो होता है दीमक। दीमक जो है वो बहुत छोटे छोटे आकार में होते हैं, जो सुरंगों में रहते हैं खेत में, और ये जब पौधा अंकुरित होने लगता है तब उसे काटकर नष्ट कर देते हैं। लगभग 25% तक पौधे जो है इसमें नष्ट हो जाते हैं। और यह जो है पहले यह जड़ पर प्रभाव डालते हैं, धीरे धीरे तने की तरफ बढ़ते हैं, पहले जड़ को नष्ट कर देते हैं, पौधे को सुखा देते हैं। यह फसल अवशेष व बिना सड़ी हुई गोबर के खाद की वजह से भी आते हैं। तो अब हम इसके प्रबंधन के बारे में यदि जानकारी करें, तो सबसे पहले अभी किसान भाई क्या है कि कुछ लोग ये धान की फसल को काट देंगे, उसके बाद उसमें गोबर की खाद मिलाएंगे गेहूं की फसल के लिए। तो सबसे पहले अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का ही प्रयोग करना है। यदि आपने अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं प्रयोग की तो उसमें दीमक लगने के बहुत अधिक संख्या में चांसेस हैं। और बीज जैसे बुआई से पहले, वैसे होता ये है कि किसान भाई हमारे ज़्यादातर बीज दुकानों से ही खरीद के लाते हैं, लेकिन यदि वो अपने पास से खरीद के, अपने पास से रखे हुए बीज को बोना चाहते हैं, तो वो बुआई से पूर्व इमिडाक्लोप्रिड एक कीटनाशी होता है, उसकी 0.1% की दर से बीज को उपचारित करना चाहिए। और दीमक यदि आपके खेत में आई है तो नीम या करेले के रस का भी छिड़काव करनी चाहिए, जिसकी कड़वी महक की वजह से भी दीमक फसल पे कम आक्रमण करती हैं। और फसल अवशेष को तो मुख्य रूप से हटा ही देना चाहिए खेतों से। जी
1: तो ये सर, मतलब हमने जाना कि गेहूं की जो फसल है उसमें जो कीट प्रबंधन लगते हैं और उसको कैसे बचाया जाए, उसकी जो पहचान है वो कैसे किया जाए।
5: जी
1: सर, हम आते हैं अगले सवाल पर, क्योंकि इस समय हमारे किसान भाई बहन जो है सरसों में गेहूं की जो प्रकोप है नियंत्रण, वो कैसे करें, क्योंकि सरसों में भी कीट लग जाते हैं, माहू भी लग जाते हैं सर।
5: जी
1: तो उसका नियंत्रण जो है वो कैसे करें किसान भाई बहन।
5: जी सरसों का सबसे विनाशकारी कीट माहू ही होता है। जब आप देखेंगे, जब खेत में जाएंगे तो जहाँ पर फलियाँ बनती हैं, जहाँ पर पुष्प आते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे संख्या में हरे हरे छोटे छोटे कीट चिपके रहते हैं, उन्हें ही हम माहू कहते हैं। यह हल्के हरे रंग के होते हैं, हरे पीले रंग के भी होते हैं, और ये हमेशा झुंड में रहते हैं। ये वहाँ के जो कोमल हिस्से हैं उसके। जी बिल्कुल।
1: हेलो, हाँ सर, शुभ नाम अपना बताएं सर।
6: जी
1: जी, प्रणाम, क्या है सर आपके? जी जी जी तो टमाटर में और गोभी में जी
5: जी जी बिल्कुल तिवारी जी, आपके फसल में जो है ये कीट लगे हुए हैं, जो कि बैंगन की फसल में, इसको हम लोग ल्यूसिनाट आर्बोनिल सूट फ्रूट बोरर बोलते हैं, जो कि क्या कहते हैं, बोर कर देता है उसमें। तो इसके लिए जो अगर आपके फसल में ज़्यादा संख्या में लगे हैं तब तो कीटनाशी का ही प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन अगर कम संख्या में लगे हैं, अभी शुरुआती स्टेज है, तो एक तो आप फेरामोन ट्रैप का इस्तेमाल करें, और दूसरी बात है कि बीटी बैसिलस थियोजेंसिस होता है, ये जैव आधारित कीटनाशी होता है, जैव कीटनाशी इसे हम कहते हैं, इसका प्रयोग आप करें।
1: आशा करते हैं कि सर आपके जवाब मिल गए होंगे। तो सर कॉल करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ में थे कुशल पाल तिवारी जी, जो कि एक प्रगतिशील किसान हैं, और इनका सवाल था कि टमाटर और गोभी में जो कीट लग जाते हैं उसका जैविक तरीके से कैसे बचाव किया जाए। हम भी जानना चाहेंगे सर कि कुछ किसान भाई बहनों के मन में सवाल ज़रूर होगा कि जो जैविक विधि से जो चाहते हैं कि मतलब थोड़ा रसायन का न प्रयोग करके हम जैविक से अपने फसल का बचाव करें, तो हम चाहेंगे कि सर एक बार इनको बता दीजिए। सुन रहे होंगे रेडियो ऑन किए हमारे।
5: जी बिल्कुल, आजकल देखिए सभी लोग यही चाहते हैं कि हम जितने से जितने कम कीटनाशी वाली सब्जियां हैं उन्हीं का प्रयोग हम करें। तो जैविक कीट नियंत्रण के लिए हमें एकीकृत कीट प्रबंधन की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो फसल चक्र को अपनाना चाहिए। यदि हम किसी कुल की फैमिली की फसल को एक बार अपने खेत में बोएं तो अगले सीजन में उस फैमिली की फसल को नहीं बोना चाहिए, किसी दूसरी फैमिली की फसल को बोएं जिससे वह कीट उस पर नहीं लगता है। और आगे दूसरी होती है कि अब अलग अलग कीटों के लिए अलग अलग जैविक प्रबंधन होता है।
1: रोकना चाहेंगे सर, एक किसान भाई बहन जरूर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में।
5: जी
1: हेलो। हेलो, अपना शुभ नाम बताएं सर।
6: सर नमस्कार, मेरा नाम है विजय पाल यादव।
1: जी तो सर सवाल, जी जी जी
6: बिल्कुल, सवाल बात करने के पहले जो फोन करते हैं काम वाले किसान भाई उनकी आवाज नहीं मिल रही है, सजानों से उसको सही करी है, उसके बाद में आप जो थोड़ा माइक के नजदीक से बोले आपकी भी आवाज नहीं मिल रही।
1: अब मिल रही है आवाज? अब मिल रही है, अब आ रही है?
6: फोन से तो मिल रही है।
1: अच्छा अच्छा जी,
6: तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम गोभी लगाना चाहते हैं।
1: जी
6: तो गोभी के बारे में हम खेत की तैयारी से लेकर के उसमें क्या क्या करें तो हमारी गोभी की परत बढ़िया।
5: जी
1: जी बिल्कुल, तो इनका सवाल है सर कि गोभी लगाना चाहते हैं और कहां से लाएं, कुछ जानकारी तो दीजिए हमें।
5: जी आप गोभी की खेती करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप पहले तो जहां से भी पेड़ लाएं उनसे यह पूछें कि कौन सी प्रजाति का है यह पेड़, किस वैरायटी का लाएं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप पौधा लाएंगे, देसी वैरायटी का लाएंगे या हाइब्रिड लाएंगे, तो उनसे ये पूछें यह किस किस कीट और रोग के प्रति प्रतिरोधी है, तो उसमें यह पता चलेगा कि ये कीट और ये रोग इस पर आक्रमण नहीं करेंगे, तो इससे आपकी फसल और अच्छी होगी। और दूसरी बात ये है कि आप अपने खेत को पहले पूर्ण रूप से साफ सफाई कर लीजिए, खरपतवार बिल्कुल भी ना रहें। उसके बाद आप खेत की तैयारी करके उसमें ट्रांसप्लांटिंग करवाइए, और उसके बाद समय समय पर डे आप इंस्पेक्शन उसका देखते रहिए कि कितनी क्या ग्रोथ उसमें हो रही है, क्या चल रहा है, खाद वाद सब सारी चीज़ें जो है समय समय पर आप देते रहिए। बाकी यदि कि जहाँ तक हो सके आप गोभी वर्गीय फसलों में कीटनाशी का प्रयोग कम से कम करके आप अच्छा उत्पादन का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हम प्राय देखते हैं कि ज़्यादातर पैसे किसान कीटनाशी और ये फंजीसाइड इंसेक्टीसाइड यही सब खरीदने में ही उपयोग कर लेता है, तो उसको मुनाफा कम हो जाता है। जी नहीं, नैनो डीएपी से आप करके लगाइए वो ठीक बात है, लेकिन मुख्यतः देखते हैं कि हम लोग वो डाया जो है डाल देते हैं खेतों में पहले, उसके बाद जब एक छोटी हल्की सिंचाई कर देते हैं जब पौधा पकड़ लेता है तभी हम लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप डाल भी देते हैं तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, वो अच्छा ही रिजल्ट आपको देगा, लेकिन बस ये है कि देखिए कि आप ज़्यादा मात्रा में उसको मत कि ज़्यादा देर तक भिगो दीजिए। नहीं, नैनो डीएपी से जड़ संशोधित नहीं होती, जड़ संशोधित हमेशा होती है किसी इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड या राइजोबियम कल्चर से, लेकिन जड़ आप संशोधित करना चाहते तो आप जो उसमें बीज जब किसी किसान ने बुआई उसकी की होगी तो उसमें वह ऑलरेडी संशोधित होके आता है जी, वो ऑलरेडी संशोधित होके उसमें आता है, उसमें आप नहीं कर सकते कि आप बाद में, हाँ आप लगाने के बाद जैसे अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उसमें फंगस पकड़ लेता है, तो उसकी उस समय पे आप फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हैं किसी, और जब भी आप किसी दवाई को लाएं दुकान से तो उसको अच्छे से पढ़ें, पहले उसको परिचय को अच्छे से पढ़ें कि यह किस लिए है और इसकी कितनी मात्रा यूज करनी है हमें, ये नहीं कि आप ज़्यादा डाल दें उसमें जी।
1: आशा करते हैं कि सर आपको जानकारी मिल गई होगी, और कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ललबुआ लखीमपुर खीरी से जी। नमस्ते सर, नमस्ते। तो ये हमारे साथ में थे विजय पाल यादव जी ललबुआ लखीमपुर खीरी से, जो कि एक प्रगतिशील किसान हैं, और हम सर बातचीत कर रहे थे सर जैविक तरीके से अपनी फसल को कैसे बचाव करें।
5: जी हम लोग जैविक तरीके से फसल बचाव पर बात कर रहे थे, तो हमने आपको बताया भी कि किसान भाई देखिए जैसे आपकी अगर फसल में माहू लगा है
1: जी, ये रुकना चाहेंगे सर, एक किसान जरूर जुड़ चुके हैं हमारे किसान भाई बहन जी। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
7: नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार, ज्ञानस्थली रेडियो खेत खलिहान में आपका स्वागत है सर, नाम बताएं अपना।
7: हमारा नाम
1: अभिषेक
7: पांडे है
1: जी। अच्छा सर, आपको कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया सर, आप खेत खलिहान कार्यक्रम में फोन किए हैं। क्या सवाल है सर आपके?
7: सवाल ये है सर
1: जी,
7: चना की खेती की जाती है
1: जी,
7: तो उसमें फली में जो कीट लगते हैं, मतलब एक लगता है, उसका उपाय जानना चाह रहे थे
1: जी। मतलब आपका जो सवाल है वो चने में जो फली में जो कीट लगते हैं उसका मतलब कैसे प्रबंधन करें
7: जी,
1: उसका बचाव कैसे करें जी।
7: जी जी
1: बिल्कुल, सुनते रहिए सर रेडियो ज्ञानस्थली। और कोई सवाल है सर आपके?
5: जी पांडे जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो कीट होता है यह बहुभक्षी कीट होता है, जो कि कई सारी फसलों पर लगता है, और यह पहले पत्तियों को खाता है, शाखाओं को खाता है, उसके बाद फली बनते समय उसकी फली व फलियों के अंदर जो दाने होते हैं उसको भी खा लेता है। जब ये आक्रमण करता है तो आप देखेंगे कि इसका आधा शरीर बाहर की तरफ निकला रहता है, मुंह अंदर रहता है इसके, ठीक है। और ये एक कीट जो है 30 से 40 फलियों को नुकसान पहुँचा देता है, तो इसके लिए अगर उचित प्रबंधन की बात करें तो हम पहली बात तो चने की खेत के मेढ़ों के किनारे अगर हम गेंदे की खेती करें, गेंदे की एक बॉर्डर क्रॉप बो दें, तो क्योंकि यह कीट गेंदे पर भी लगता है, और फिर क्या होगा कि यह कीट वहां से माइग्रेट करके गेंदे की तरफ अटैक करेगा, आपकी फसल को कम नुकसान पहुँचाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप सुबह शाम खेत जा रहे हैं और देखें कि अगर कम संख्या में लगा है तो उसको हाथ से भी हटा सकते हैं। तीसरी बात है कि इसमें आप फेरामोन ट्रैप का उपयोग करें 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से। जब आप फेरामोन ट्रैप का उपयोग करेंगे जो उसके नर हैं वो आके उसमें गिर के मर जाएंगे, तो मादा की संख्या कम हो जाएगी और फिर आपकी फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। और अगर हम जैव आधारित नियंत्रण की बात करें तो हम लोग बैसिलस थ्रियोजेंसिस का उपयोग करते हैं 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति 1.5 किलोग्राम की दर से। और अगर आप अधिक मात्रा में उसमें आ गया है कीट तो हम लोग स्पाइनोसाइड और क्लोरिंटा नीलीप्रोल नामक इंसेक्टिसाइड जो है कीटनाशी जो है उनका प्रयोग हम कर सकते हैं।
7: धन्यवाद
5: धन्यवाद
1: कॉल करने के लिए। एक कॉल और आ रही है, ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो जी नमस्कार। हेलो लग रहा है कुछ नेटवर्क की दिक्कत थी। तो हमारे साथ में पांडे जी जुड़े थे सुहावन से, और कीट प्रबंधन की बातचीत हो रही थी, लग रहा है कॉल फिर आ गई है, ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो जी सर, नमस्ते।
7: नमस्ते नमस्ते
1: जी सर, क्या सवाल है आज, क्या लेके आए हैं?
7: गेहूँ जब बही जाता तो दीमक वाले हमारी समस्या बहुत हो गई, पहले कह रहे हो कि कोई उपाय कहीं, दीमक बहुत लगा थे, बलुई रही पूरे इलाका
1: जी। सर दीमक लगती है, हमारे साथ में इंद्रपाल सर जुड़े हैं जो कि सीतापुर से जुड़े हैं, एक तहसील किसान हैं।
5: तो दीमक आपके खेत में लग रही है? हाँ, तो आप एक काम करिए जी, जैसे बुआई से पहले आप अपने जो खेत में क्लोरपाइरीफास का अच्छे से छिड़काव करवाइए। हाँ, और दूसरी बात यह है, खेत को जैसे अभी आप धान की कटाई कर देंगे, उसके बाद जो है उसको अच्छे से गहरी जुताई करवाइए कल्टीवेटर से, और गहरी जुताई करवा के उसमें पानी भर दीजिए, फिर जब बाँ होगी तो तब जाके गेहूं की बुआई आप करवाइएगा। गोबर की खाद तो नहीं डालते हैं खेत में अभी? हाँ, तो अगर आप गोबर की खाद डालें तो या तो अच्छी से सड़ी हुई, बिल्कुल सड़ी हुई खाद डालें, और या अगर सड़ी हुई नहीं है खाद तो उसको लगभग 45 दिन 30 दिन पहले डाल दें खेत में, ताकि वो अच्छे से उसमें पड़ी पड़ी सड़ जाए, अच्छे से मिल जाए, जिससे दीमक के लिए जो वो है वो कम हो जाएगा उसका असर दीमक का, और नहीं भी आएगी। हाँ, बुआई के पहले ही कर दीजिए, खेत में खाली खेत में भी कर दीजिए, नहीं नहीं अगर सूखे खेत में कर दीजिए, अगर आप पानी भर देते हैं खेत में जुताई के बाद तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी छिड़काव करने की, क्योंकि वो खुद ही, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर सुरंगों में रहती हैं, तो पानी भर जाएगा तो उसमें मर जाएंगी वो। अच्छा, तो अगर जैसे बाजरे खेती में अंदर में अगर जैसे आपने लगा दिया है उसके बाद अटैक हो रहा है, तो एक काम करिए, जहाँ पे दीमक का वो होता है घर कॉलोनी जहाँ बनाए रहती हैं आपके पेड़ के आसपास, वहाँ पे नीम आयल या आपके घर में ही नीम के पत्तियाँ होंगी, उसी को बढ़िया से पीस वीस के अच्छे से, और उसी को ले जाके वहाँ पे छिड़काव करवाइए, इससे भी आपके दीमक का असर कम होता है जी।
1: धन्यवाद सर कॉल करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे इंद्रपाल सर जो कि सीतापुर से थे, और हम आते हैं सर अगले सवाल पर। सर हम लोग बातचीत कर रहे थे सरसों में माहू के प्रकोप व नियंत्रण कैसे करेंगे, क्योंकि इस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन कॉल आ रही थी हमारे किसान भाई बहनों का, तो हमारा ये जो सवाल था वो छूट गया था।
5: जी, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सरसों का सबसे विनाशकारी कीट होता है ये, और हम लोग देखेंगे तो जब खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि ऊपर तने की तरफ जहाँ पे फलियाँ लगी होती हैं या फूल होते हैं, जहाँ कोमल भाग होता है,
1: कॉल आ गई है और
5: जी बिल्कुल
1: चाहेंगे कि हमारे साथ में किसान भाई बहन लगातार जुड़ रहे हैं, कट गई लग रहा है कुछ
5: जी, तो वहाँ पे देखेंगे तो ये हरे पीले रंग के होते हैं, हल्का हरे पीले रंग के, वो बिल्कुल झुंड में रहेंगे, लगभग 100-200 की संख्या में रहते हैं, और इसको वहाँ पे वो रस चूसते हैं उस कोमल भाग का, और वहाँ पे एक हनी ड्यू सेक्रेट करते हैं जिसको हम लोग एकदम मीठा होता है शहद स्राव, मधु स्राव कहते हैं, तो वहाँ पे एक काले कलर का उसमें फंगस कवक लग जाता है जिसकी वजह से बीमारी आने के भी चांसेस हो जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि पौधे का विकास रुक जाता है, पौधा पीला पड़ जाता है, इस जिसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें बंद हो जाती हैं और फलियां सही से नहीं बन पाती हैं, और इसमें जो है दाने या तो बहुत छोटे छोटे बनते हैं या दाने खोखले रह जाते हैं, और यह ऐसा कीट है कि लगभग 60-90% तक आपका उत्पादन गिरा सकता है अकेले, और इसका जो प्रकोप है वो आप देखेंगे कि दिसंबर माह से और फरवरी मार्च माह तक रहता है, और जब बादल छाए रहते हैं हवा में नमी अधिक होती है, तभी इसका प्रकोप और ज़्यादा हो जाता है, और यह कम तापमान में बहुत तेज़ी से फैलता है। और सारे कीट हैं जो कम तापमान में नहीं फैलते इतनी तेज़ी से, लेकिन आप देखेंगे कि सरसों की फसल में जनवरी फरवरी में भी ये फैलता रहता है। तो इसकी जो प्रबंधन की रणनीतियाँ हैं वो हम आपको बताएंगे, वो आप बहुत ध्यान से सभी किसान भाई सुने कि अगेती बुआई करें, 15 से लेकर 20 अक्टूबर 25 अक्टूबर तक बुआई कर दें, जिससे क्या होगा कि जब इसके आने का समय होगा उससे पहले आपके खेत में फ्लावर्स, उसमें फूल जो है सरसों में आ चुके होंगे। और इसके नियंत्रण के लिए पीला चिपचिपा ट्रैप आता है, जिसको खेत में 5 से 6 ट्रैप प्रति एकड़ से इसको लगाएं, और जो हम ट्रैप लगाएंगे उसको फसल से 1 से 2 फुट ऊंचाई पे रखना है, क्योंकि जो ये माहू होता है ये पीले रंग के प्रति आकर्षित होता है, तो ये जाके वहाँ पे चिपक जाएंगे। आप भी देखे होंगे कभी पीली शर्ट पहन के जाएं खेतों में
1: जी,
5: तो वहाँ पे आपके भी पूरे चिपक जाएंगे आके शर्ट पे, तो आप जब देखेंगे उस चिपचिपे ट्रैप को तो उसमें बिल्कुल चिपके रहेंगे ये, फिर इससे संख्या कम हो जाएगी। दूसरा, अगर इसमें नीम आयल, नीम के तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, 2% की दर से 20 ml प्रति लीटर पानी में डाल के उसका छिड़काव करते हैं
1: जी।
5: तो इससे भी, और उसमें थोड़ा सा अगर सर्फ डाल देंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, तो इससे भी इसको हानि को हटाया जा सकता है। उसके बाद मित्र कीट होते हैं कुछ
1: जी,
5: जो स्वयं उस माहू को खा लेते हैं, जिसमें लेडी बर्ड बीटल एक होता है, तो वो जो क्या करती है कि वो आप देखेंगे कि फसल में लाल लाल पीठ पे रहेगा, उसके पीठ पे छोटे छोटे डॉट्स रहेंगे
1: जी।
5: तो वो कीट जो होता है वो फसल उसमें माहू को अपना भोजन के रूप में प्रयोग करता है
1: जी।
5: और हम सबसे, मैं तो सबसे बाद में ही कीटनाशी की तरफ जाता हूँ, शुरुआत में कीटनाशी का प्रयोग वैसे भी नहीं करना चाहिए कि देखा नहीं कि कीट आ गए तो तुरंत कीटनाशी का हम प्रयोग कर दें
1: जी, जी।
5: तो इसके लिए थायमेथोक्सान और इमिडाक्लोप्रिड का हम प्रयोग करते हैं
1: जी।
5: ये
1: सर अब आते हैं अगले सवाल पर, जानना चाहेंगे सर दलहनी फसलों में लगने वाले कीट व उनकी पहचान तथा नियंत्रण कैसे, क्योंकि इस समय जैसे दलहनी फसल जो है कुछ हमारे किसान भाई बहन जो है वो बुआई की तैयारी भी करने लगे हैं, और कुछ लोग आगे चल के करेंगे कुछ दिन बाद ही, तो सर इससे जैसे कैसे बचा जाए, क्योंकि सरसों की फसल है और भी बहुत सारी फसलें हैं, तो अक्सर करके कीट प्रबंधन जो है वो होने लगता है, उनकी फसल जो नुकसान पहुंचाता है। एक कॉल आ रही सर, रिसीव कर लेते हैं हमारे साथ में। हेलो
8: हेलो
1: जी, अपना शुभ नाम बताएं सर।
8: हेलो
1: हाँ सर, अपना शुभ नाम बताएं।
8: मेरा नाम
1: आदित्य वाली सर, नमस्कार। नमस्कार सर, जी बिल्कुल सर, हमारे सवाल जो हमारे गेस्ट वो सर सुन रहे हैं तो जरूर बताएंगे
5: जी। तिवारी जी, आप सरसों की खेती कब से कर रहे हैं? जी जी, नहीं तो किस वजह से पैदावार नहीं हो पाती, इस चीज़ को आपने अभी तक कभी ऑब्जर्व किया? जी, तो पहली बात तो खेत को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए खेत की, और दूसरी बात यह है कि सब देखो पैदावार की मुख्य बात होती है कि किस प्रजाति का चयन आप कर रहे हैं। हो सकता है आप जो प्रजाति बो रहे हों, बुआई कर रहे हों, उसकी उपज क्षमता कम हो, या किसी ऐसे संस्थान से ला रहे हैं, किसी ऐसी जगह से ला रहे हैं जो वो सर्टिफाइड नहीं है। तो सबसे पहले तो अच्छी दुकान से जाके अच्छी पैदावार वाली ही प्रजाति का चयन करें, और दूसरी बात यह है कि आप जब वहाँ पे जाएं तो उनसे ये कहिए कि मुझे माहू और व्हाइट रस्ट जो मुख्य बीमारी और कीट हैं इसके, सरसों के, उसकी रेसिस्टेंट वैरायटी दे दीजिए, मतलब प्रतिरोधी, कि ये हमारे फसल पर हानि ही ना करे जी। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो ये कहेंगे, तो वो जो वैरायटी वो होगी उसका चयन करके आप उसकी बुआई कीजिए, तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा जी। जी जी हाँ बिल्कुल, जैसे अगर आपने पछेती बुआई की है तो पछेती बुआई में रोग और कीट आने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर हम माहू की ही बात करते हैं तो माहू का जो मुख्य कीट का आने का समय होता है वो दिसंबर के 15 दिसंबर के बाद ही आता है, तो जब आप उस समय लगा देंगे तो आपके फसल पर वो जल्दी अटैक कर देगा जिससे फसल नष्ट हो जाएगी, और जब आप समय पे ही बुआई करेंगे तब आपके, जब आपका फसल पुष्पन अवस्था में चला जाएगा तब वो आएगा तो उस पर कम असर होगा जी। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि हाँ, अगर आप पछेती बुआई कर रहे हैं तो प्रतिरोधी किस्म ही लेके आइए जी। जी
1: धन्यवाद। और इनका सवाल था कि जो दलहनी फसल है उसकी कीट प्रबंधन से और उसका उत्पादन कैसे हम अच्छा लें, मतलब हम उसी से रिलेटेड बातचीत भी कर रहे थे, तो आते सर अपने उसी सवाल पे।
5: जी जैसे कि हमने आपको बताया था, अभी पांडे जी फोन किए थे कि चने में उनके सूंड़ी के फली बेधक कीट के बारे में बातचीत हुई, तो इसमें जो दलहनी फसलों में हम लोग देखते हैं मुख्यतया चने में जो है फली बेधक बहुत लगते हैं, और वो हर जगह लगते हैं, वो पूरे भारत में जहाँ जहाँ चने की बुआई होती है वो मुख्यतः कीट आ ही जाता है। और दूसरा कटवर्म कीट है, ये भी बहुत हानिकारक कीट होता है, तो यह कीट जो है रात्र में निकलता है अपने भूमि से निकल करके छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, जब पौधा छोटी अवस्था में होता है तो उसको सतह से काट देता है, जैसे किसी ने उससे काटा हो, हसिया से काट दिया हो, तो वो काट के गिरा देता है, और फिर जैसे सुबह होती है वो अपने मिट्टी के ढेलों के नीचे जाके छुप जाता है। तो इसके प्रबंधन के लिए हम लोगों को लाइट ट्रैप का यूज करना चाहिए, और क्या कहते हैं, अगर इंसेक्टिसाइड में देखें तो हम लोग को इंडोक्साकार्ब का यूज करना चाहिए किसान भाइयों को। अब मटर में जो मटर की मुख्य कीट है वो मटर तना मक्खी है, जिसे हम पी स्टेम फ्लाई के नाम से जानते हैं। हाँ, तो यह कीट जो है, इस मैगट जो होता है, इसका जो सूंड़ी होती है वो तने के अंदर रह करके, तने के अंदर के भाग को खा करके उसको नुकसान पहुंचाती है फसल को, जिससे तना क्या करता है, तने में देखेंगे आप तो उसमें स्वेलिंग आएगी, फूला फूला नज़र आएगा और पौधा पीला पड़कर मर जाता है। तो इसका जो है हम नियंत्रण करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं जी। और माहू के बारे में तो मैंने बताया ही, माहू तो सभी फसलों में लगभग लगभग आते ही हैं जी।
1: अब सर आते हैं अगले सवाल पर, जानना चाहेंगे सर आलू में जो लगने वाले प्रमुख कीट एवं उसकी पहचान कैसे करें, क्योंकि हमारे कुछ किसान भाई बहन जो है अभी कुछ ही दिन बाद आलू की बुआई करेंगे
5: जी,
1: तो उसमें कैसे उसको बचाएं, मतलब।
5: जी बिल्कुल, आलू की फसल तो हमारे लोग की मुख्य खाद्य फसल है भाई, सब्जी जब हम लाने जाते हैं तो सबसे पहले जो लेते हैं झोले में वो आलू ही होता है,
1: ताकि फलों और सब्जी का जो राजा है वो आलू। हाँ,
5: तो आलू की फसल देखिए हम लोग रबी मौसम में बहुत अच्छे से करते हैं, और ये फसल जो है क्या कहते हैं, इसमें जो मुख्य कीट होता है वो माहू ही होता है, ये सभी फसलों के मुख्य कीटों में आता है, तो माहू इसके 50 से 60 दिन की जब आलू की फसल हो जाती है तो इस कीट का प्रकोप अधिक हो जाता है, और या पीले रंग का आपको देखेंगे तो पत्तियों के पीछे कहीं दिखाई देगा, तो तने के पास दिखाई देगा, और ये रस चूसता रहता है उसका, उससे क्या होता है कि पौधा पीला पड़ने लगता है, और उसके डंठलों की तरफ बैठ कर जब उसको आप ऐसे हटाएंगे, डंठल को हटाएंगे तब देखेंगे कि वहाँ पर भी चिपके रहते हैं और बहुत संख्या में रहते हैं, तो और ये विषाणु भी फैलाने का काम करते हैं। तो आलू की तो मुख्य बात है कि ये विषाणु को फैला देते हैं, और वो विषाणु जो है इससे जो कंद हैं वो रोगी हो जाते हैं। और ये विषाणु कभी कभी कंधों के साथ साथ वहाँ क्या कहते भंडारण तक भी पहुँच जाते हैं।
1: जी अच्छा सर, इसमें जब आलू बोते हैं सर, तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम कोई फसल बोते हैं, जैसे आलू की बुआई करेंगे बहुत सारे किसान भाई हैं
5: जी,
1: तो उस समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
5: जी बिल्कुल, आलू की फसल की बुआई देखिए हम लोग क्या करते हैं कि कोल्ड स्टोरेज से ले आके और उसी को काट के और कंधों को बुआई कर देते हैं। तो आप लाए हैं ठीक है, सबसे पहले तो जिस औजार से आप काट रहे हैं, चाकू हो गया हसिया हो गए, उसको अच्छे से धुल के काटना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी बीमारी के कण उस पर भी रहते हैं जो कि उसमें आलू के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। और दूसरी बात है आलू को काटने के बाद उसको जो है ट्रीट करना चाहिए, उसको उसका शुद्ध करना चाहिए, किससे? हमेशा फंजीसाइड का यूज करके और इंसेक्टिसाइड का यूज करके हम लोगों को पहले उसको जो है उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए आलू को, उसके बाद ही उसको बुआई करनी चाहिए। और आलू बुआई करने के बाद सही समय पर जब हो जाए तो उसमें गुड़ाई करके और मिट्टी को चढ़ा देना चाहिए। जी
1: और सर इसमें मतलब जैसे मान लीजिए बुआई की जो विधि है सर, वो कोई और विधि है सर? मतलब
5: देखिए दो तरीके से हम लोग बुआई करते हैं अपने इधर जो क्षेत्र पूर्वांचल के क्षेत्र में देखा जाए, एक तो हम फ्लैट बेड पे बो देते हैं, मतलब जैसे कोई बेड नहीं बनाते इसे पहले बो देते हैं, उसके बाद जब आलू के पौधे उगाते हैं उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं मिट्टी चढ़ाते हैं। और दूसरी विधि यह है कि पहले रिज पे बोते हैं, रिज में ये होता है कि पहले हम लोग बना लेते हैं नालियाँ क्यारियाँ बना लेते हैं, उसमें फिर हम लोग उसकी बुआई करते हैं। जी
1: सर, आलू की फसल में एकीकृत जो कीट प्रबंधन है वो कैसे रोकेंगे?
5: जी आलू की फसल में जो मुख्य एक कीट लगता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो है कंद सलभ, जिसे हम पोटैटो ट्यूबर मोथ कहते हैं। ये ही ऐसा कीट है जो ये कीट आपकी फसल में भी लगेगा, उसके बाद आप भंडारण में ले जाएंगे वहाँ भी लगेगा, और ये भंडारण में सबसे ज़्यादा हानि आलू की इसी कीट की वजह से ही होता है। तो इस कीट के जो अंडे हैं वो पत्तियों पर और उसके क्या कहते हैं आलू की जो कंद होते हैं उसके जो आँखें होती हैं सफ़ेद सफ़ेद आलू में देखिए निकली रहती हैं, वहाँ पे इसके अंडे देती हैं, फिर ये निकल करके पत्तियों को खाती हैं, पत्तियों को खाने के बाद ये कंदों में सुरंग बनाकर उसी में चली जाती प्रवेश कर जाते हैं और वो अंदर अपना खाते रहते हैं। और इससे क्या होता है आलू क्या कहते हैं आप भंडारण में ले जाएंगे वहाँ भी पहुँच जाएंगी और अन्य जो शुद्ध आलू हैं उनको भी हानि पहुँचाएंगी इसका। जी और इसका जो प्रबंधन है, सबसे पहले तो आलू की जब आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो जो सड़े गले कंद हैं या ऐसे भी जो पड़े हैं उन सब को निकाल करके अलग जो कीट से प्रभावित कंद हैं इनको हटा दीजिए वहाँ से, उनको हटा करके किसी स्थान पर मिट्टी नीचे दबा दीजिए या कहीं ऐसा जगह छोड़ दीजिए जहाँ से ये विस्तृत ना हो पाए। और समय पर गुणाई करनी चाहिए, गुणाई करते समय जो है उसको कंदों नाली बनाते टाइम जो है उस मिट्टी चढ़ा देना चाहिए ताकि ये उस पर जा करके कंद में ना घुस पाए। और फेरामोन ट्रैप लगाना ही चाहिए 5 ट्रैप प्रति एकड़ की दर से, उसके बाद अधिक प्रकोप होने पर हमें इंसेक्टिसाइड की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, तो लैम्डा साइलोहेथ्रिन नाम की जो इंसेक्टिसाइड आती है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए, इंडो एक्साकार्ब का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी अब सर आते हैं सर अगले सवाल पे, जानना चाहेंगे सर रबी के मौसम में लगने वाली जो प्रमुख सब्जियों
5: जी
1: सब्जियों की कौन कौन सी जो है वो कीट प्रबंधन है और उससे कैसे बचाया जाए, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन जो हमारे किसान के तो वो लगाना चाहते हैं सब्जियां सर रबी के मौसम में,
5: ये
1: सब्जियां कुछ लगी हुई हैं
5: जी,
1: तो उसको कैसे बचाया जाए?
5: जी देखिए रबी का मौसम आ गया है अब तो सब्जियां अच्छी अच्छी सब्जियां लगेंगी,
1: खीरा है
5: और क्या कहते हैं गोभी और पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, टमाटर लगेंगे और क्या कहते हैं मूली लगेगी, पालक लगेगी, मेथी लहसुन धनिया सारी ये सब्जियां जो है रबी के मौसम में लगाई जा रही हैं। जो जिसमें अगर हम बात करें पत्ता गोभी और फूल गोभी में तो इसमें दो कीट मुख्य रूप से आते हैं जिन्हें हम डायमंड बैक मोथ कहते हैं, हीरक पृष्ठ सलभ और एक तंबाकू की सूंड़ी लगती है, और माहू का भी अटैक होता है। और दूसरे में अगर हम टमाटर में देखेंगे तो फल छेदक कीट लगते हैं, जैसा कि अभी एक किसान फ़ोन किए थे कि हमारे टमाटर में फल छेदक लगा हुआ है टमाटर में। उसके बाद बैंगन में क्या है, बैंगन में फल बेधक लगता है, तो वहाँ पे भी क्या कहते हैं देखते हैं कि फल बेधक बहुत अधिक संख्या में, सबसे ज़्यादा अगर बैंगन को नुकसान पहुँचाता हो फल बेधक ही है। और फिर लहसुन में देखेंगे तो लहसुन में थ्रिप्स का अटैक होता है, जो किसान लहसुन की देखिए पत्तियाँ देखिए वो मुड़ जाती हैं, हाँ तो वो फिर थ्रिप्स का अटैक होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये कीट जो है रबी के मौसम में जो सब्जियों में लगते हैं जी।
1: सर और कोई मतलब जैसे जो है कीट जो है वो सब्जियों में लगते हैं जैसे उनसे बचाना बहुत जरूरी है बोते समय भी?
5: जी नहीं, बोते समय तो इतना कीट नहीं लगते हैं, लेकिन जैसे जब पौधा छोटा हो रहता है तब उसमें देखेंगे आप सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है और माहू का भी अटैक देखेंगे आप छोटे छोटे पौधे पर भी, और भी कई सारे कीट आ जाते हैं जी।
1: अब सर आते हैं अगले सवाल पे, उसे जानना चाहेंगे सर ये सोलानेसी कुल की जो सब्जियों में लगने वाले जो प्रमुख कीट है वह नियंत्रण कैसे करें, क्योंकि ये सोलानेसी है क्या हमारे किसान भाई बहनों को बताएं?
5: देखो हर एक फसल की एक कुल होता है, जैसे हम लोगों में कुल होता है
1: जी,
5: वैसे ही फसलों में भी कुल होता है
1: जी।
5: कोई सोलानेसी कुल की सब्जियाँ होती है, कोई क्रूसीफेरी की होती हैं, ऐसे ऐसे सभी फसलों का कुल होता है। तो सोलानेसी में मुख्यतः जो है बैंगन, टमाटर
1: जी,
5: आलू
1: जी,
5: और ये क्या कहते हैं मिर्च
1: जी,
5: ये सारी सब्जियां आती हैं
1: जी।
5: तो हम लोग देखते हैं कि बैंगन में जो मुख्य कीट लगता है वो फल बेधक होता है
1: जी।
5: इसकी सूंड़ी सबसे हानिकारक होती हैं, प्रारंभ में ये सूंड़ी जो है वो अंडे से निकल कर पौधे के कोमल तने के पास अटैक करती हैं और उसमें छेद करके प्रविष्ट हो जाती हैं। धीरे धीरे ये फूलों एवं फलों के को ग्रसित करती हैं
1: जी।
5: और उसके बाद
1: जी
8: हेलो
1: हेलो, हाँ सर अपना शुभ नाम बताइए। हेलो जी सर, बिल्कुल हाँ सर, रेडियो पे सर फोन किए हैं खेत खलियान कार्यक्रम में।

0: सर इनका सवाल है कि कोई मतलब पछेती मतलब जैसे कुछ जगहों पर क्या है कभी पानी है भरा या कुछ ऐसे मिट्टी है जहाँ पर हम लेट में लगाना चाहते हैं पछेती
1: जी
0: जातियाँ हैं तो वो जानना चाहते हैं।
1: जी देखिए कि हम लोग जैसे हमारे सबके क्षेत्र में अभी धान की कटाई हो रही है और आगे चल के हम लोग लगभग अक्टूबर लास्ट में नवंबर लास्ट यहाँ तक कि कुछ लोग तो जनवरी 1-2-3 जनवरी तक भी जो है बुआई करते हैं गेहूं की। तो आप वहाँ पे जाइए अपने नज़दीकी दुकान पे और उनसे ये कहिए कि हमें पछेती किस्म की जो है कुछ वैरायटी दीजिए जो हम 15 दिसंबर के बाद की बुआई हम कर सकें। तो वहाँ पर बहुत सारी जो हैं वैरायटियाँ हैं वो उपलब्ध होती हैं।
0: कॉल करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में थे और इनका सवाल था कि मतलब ये जानना चाहते थे मतलब कि पछेती जो प्रजातियां हैं वो कौन सी हैं क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बहनों के मन में सवाल होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि सर हम कोई फसल लगा रहे हैं तो वो फसल में हम पछेती लगाना चाहते हैं
1: जी।
0: तो हम चाहेंगे सर एक बार पुनः बता दीजिए कि पछेती प्रजातियाँ और अगेती प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं।
1: जैसे अगेती और पछेती में अंतर ये रहता है कि अगेती प्रजातियां हम लोग लगाते हैं तो समय पे सारे काम होते हैं। तो अगर सबसे अच्छा कहा जाता है कि अगर सारे काम समय पे हों तो वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर हम देखें पछेती में क्या होता है किसान अगर कुछ बोया है या उसको समय नहीं मिल पाया या पानी बारिश हो गई तो हम लोग पछेती किस्म की तरफ जाते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया ये होता है कि आप कई सारी वैरायटियाँ हर एक चीज़ की अलग अलग कई सारी वैरायटियाँ होती लेकिन अगर आप पछेती किस्म में लगा रहे हैं तो हमेशा आपको ये ध्यान देना चाहिए कि पछेती किस्म में लगाने पर जो कीट और रोग हैं इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अटैक करते हैं। तो हम लोग ये जाके वहाँ पर दुकान पर ये पूछना चाहिए कि जो इससे प्रतिरोधी वो है वैरायटी उसी को लेकर के आके लगाना चाहिए और उपज उस सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी रहती हैं कि उस जहाँ पे आप जाएंगे ख़रीदने कि इसकी क्या उपज है किस इंसेक्ट के किस पेस्ट किस डिजीज़ के प्रति ये प्रतिरोधी है। तो ये सारी चीज़ें को बातों का ध्यान रख के ही हमें वहाँ पे जा करके लाना चाहिए वैरायटी।
0: जी अब सर हम आते हैं सर अगले सवाल क्योंकि मेरा छोटा एक सवाल है सर ये क्रोसीफेरी
1: में देखिए दो तरीके की फसलें हम लोग लेते हैं। क्रोसीफेरी में जैसे मूली हो गई और पत्ता गोभी हो गया फूल गोभी हो गया इसमें जो मुख्य कीट लगता है वो हीरक पृष्ठ पतंगा जो मैंने आपको बताया था जिसे हम डायमंड बैग मोथ कहते हैं। तो इसको इसकी यह पहचान है कि आप जब खेत में जाएंगे तो आप देखेंगे तो इसके पीठ पर जो है वो एक डायमंड शेप जैसा तिकोने आकार का वो बना रहता है निशान। तो इससे आपको ये पता चलता है कि हमारे खेत में डायमंड बैग मोथ का अटैक आया है। और ये कीट जो है वो पौधे के क्लोरोफिल जो हरा भाग है उसे खाता है और वहाँ पर सफ़ेद कर देता है फिर बाद में उसमें छेद हो जाता है। और इसके जो नियंत्रण के लिए हैं हमें NSKE नीम आयल का भी प्रयोग करना चाहिए और बैसिलस थ्योजेंसिस का प्रयोग करना चाहिए और अगर हम इंसेक्टिसाइड की तरफ गए तो हमें स्पाइनोसाइड का प्रयोग करना चाहिए।
2: सो बड़े ही अच्छे से प्रश्नों का उत्तर आपने दिया श्री अनुपम चौबे जी। और आज का जो कि विषय था रबी फसलों में लगने वाले कीट एवं उनका प्रबंधन विषय पर
1: जी।
2: मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान भाई जो सुन रहे हैं चूंकि यहाँ पर हमारा जो क्षेत्र है उसमें रबी फसलों का बड़ा महत्व है कई सारे किसान भाई रबी फसलों को बोते हैं और कीट एक बड़ी समस्या है लेकिन जिसके समाधान के लिए आज हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि किस किस तरह से कीटों का प्रकोप होता है लेकिन उससे बचा कैसे जा सकता है यानी अगर कुछ सावधानियों को अगर हम रखें तो उन समस्याओं से हम बच सकते हैं। और जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई संदेश देना है हमारे सुन रहे श्रोताओं को और हमारे किसान भाइयों को तो प्लीज़ कहें।
1: जी बिल्कुल हमारे सभी श्रोताओं को बस यही संदेश है कि जब देखिए भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है लगभग हर घर में किसी न किसी खेत होता है कोई ना कोई हमेशा खेती करता रहता है
2: जी।
1: तो आज जो आधुनिक युग चल रहा है इसमें आप लोग जो है आधुनिकता से भी जुड़कर खेती को और अच्छा और सरल बनाया जा सकता है। जैसे कुछ किसान क्या है मोबाइल चलाते हैं तो उसमें मोबाइल में एक प्लांटिक्स ऐप आता है आपने सुना होगा
2: जी।

0: प्लांटिक्स ऐप आप लोग डाउनलोड करिए। तो जैसे आप अगर खेत में गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यह किस कीट का प्रकोप है, किस रोग का प्रकोप है, या किस तत्व की कमी लग रही है पौधे में, तो आप एक फ़ोटो डालेंगे उस पे ऐप पे, तो वो आपको नीचे बता देगा पूरा कि ये जो है इस कीट का, इस रोग का प्रकोप है, इस तत्व की कमी आपके खेत में है
1: जी।
0: तो इसका भी आप प्रयोग करें। और अगर हम देखें तो आजकल लोग यही चाहते हैं कि हमें कीटनाशक और ये पेस्टिसाइड मुक्त खेती के लिए।
1: बिल्कुल
0: जी। तो इसके लिए आप लोग एकीकृत कीट प्रबंधन की तरफ रुख करें, जैसा हमने बताया भी है एकीकृत कीट प्रबंधन के बारे में इस टॉक में। और आगे आप लोग अच्छे से खेती करें, सारी चीज़ें जो हैं ऐसा करें कि जलवायु को भी ना नुकसान पहुँचे।
1: तो बड़ी ही अच्छी बात आपने कही कि जलवायु को नुकसान ना पहुँचे, और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के साथ ही खेती को करने की आपने सलाह दी है
0: जी,
1: या यूँ कहें कि गुजारिश की है। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे किसान भाइयों के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद रहा होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया श्री अनुपम जी कि आपने इतना समय निकाला और आप अयोध्या से गोंडा डिस्ट्रिक्ट का गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली पर हमारे किसान भाइयों के लिए, उनको समझाने के लिए, उनकी खेती में उनको लाभ पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं इरफान शाह का, जो हमारे को होस्ट की भूमिका निभा रहे थे और बड़े ही उम्दा प्रश्न लेकर आए थे हमारे किसान भाइयों की समस्याओं से जुड़े। सो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये शो हमको कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त क्योंकि हो गया है चलने का समय। सुनते रहिए अपना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गोंडा सुनेगा अपना FM।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
6: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
7: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
7: आज ही कॉल करें 9216-9976-9819-1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
6: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
7: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
8: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
9: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट IPPBonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
10: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
11: मतलब
10: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
12: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
13: अरे सुना?
14: क्या?
13: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
14: वाओ!
13: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जैन
11: नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
14: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
15: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
16: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
17: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं।
18: रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख।
19: गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल।
20: एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12।
21: स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज।
22: एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
23: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
24: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
25: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
24: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
25: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
24: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरन नाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।

लोगन के स्वागत है आपके अपने वाले कार्यक्रम गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला माँ और भाई रवा लोगन के का हाल है। देखिए हमारे साथ है आज तो बहुत सारा लोग जुड़ा है, जेकर बात कही वो है अरविंद, विजय, आशु, सबन के शुभ संध्या। आशु जी लिखा थी एक टू हिंदी माँ कविता, लेकिन हम पढ़ा बुका अपने अंदाज माँ। ये जो माँ होत है ना, वो बच्चन का धूप माँ ठंडी छाव जैसन लागत है। जैसे ही माँ बच्चे का छोड़ के जात है, वैसे ही दुनिया अपने रंग दिखावे लागत है। ये बात तो सही है, ये दर्द वह समझ सकत है जेकर माँ ये दुनिया में ना होए। बाकी हम तो यह कहा सब अपने माँ का इतना स्नेह दियो, इतना प्यार दियो कि माँ आपका छोड़ के कहूँ जा ही ना पावे। तो आप सबन के आपके वाले संध्या माँ स्वागत है। और भाई आज बहुत सारा बात हुई, लेकिन आज जो ना आपके भोजपुरिया फरमाइश है उमन एगो बदलाव है, यानी कि आप फरमाइश तो करबो लेकिन हमारे पसंद से, माने कि हम आपका एको शब्द देव और वही शब्द से रउआ लोगन के फरमाइश करे का रही। तो जे सबसे पहले तीन फरमाइश कही दी उकर गाना बच जाई। वैसे अमन पहले आओ पहले पाओ वाला भी सिस्टम बा, लेकिन अगर आप कोशिश करिए तो आपके मौका भी मिल जाई। वैसे एक जो न लिसनर है उसका दुई बार गाना सुने के आज मौका मिल सकत है, दुई से ज़्यादा नहीं, उसके बाद बाकी इनका मौका मिली तो। कहे कि बहुत लिसनर होते हैं जो बहुत तेज होते हैं, फटाफट टाइप करके भेज देते हैं, तो ये स्लो टाइपर हैं उनके मौका कम मिलत है। तो ये से आज के दिन के फ़ायदा उठाई हैं, लेकिन 7 बजे से। तब तक के लिए ये गाना कल्पना की आवाज़ में इंजॉय करी।

भरोसा रखो प्यार पे, पर का करी जब प्यार भरोसा तोड़त है तब दिलवा चूर चूर हो जात है। कहत है कि क्यों जब दिल के हाल कहत है तो अपन दिल के हाल समझ में आवत है। तो सबके स्वागत है रवा लोगन के, भाई शाम हो चुकी है आपके वाली जमा हम सभी नहीं बल्कि पूरे का पूरा यूपी बिहार अपन पसंद मन पसंद गाना सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहा थे कि ये जो शाम आज होली आज स्पेशल माँ नीलकमल सिंह जी के गाना बा सुने के दिन, कहे कि आज है उनका जन्मदिन। कहा हाय ये तो शायरी बन गए और सुनने के बाद जान पड़ते रे जीरा एकदम खुशहाल हो गए। ऐसे नीलकमल का कही तो एगो ऐसा चेहरा जोन कि लगातार अपन हिट पर हिट गाना दे नहीं, और कहा थे कि जब केहू के समय अच्छा होत है तो कर कहा था ना कि सबके साथ मिल जाता है। वैसे अगर आवाज़ की बात करी तो नीलकमल सिंह के आवाज़ भी बहुत ही खूबसूरत है। तो आशु लिखा थी कि दर्द के दर्द बढ़ावत न जाला, दीप जला के दीप बुझावल न जाला, प्रेम कितनों बढ़ी पर बेगाना न हुई, दिल लगा के दिल हटावल न जाला। सबलू जी के शुभ संध्या लिखत है रवा कि चेहरा तोहार जैसे चंदा के अजोर बा, लाखों करोड़ों में तू ही सबसे बेजोड़ बारू, दिल के धड़कन तोहरा नाव से ही चले, ई प्यार के डोर अब तोहरे ओरी खींचल जात बा। ए जान का बात है कि लाखों करोड़ों के दिल तोड़ के हंस तारू, कवन मजबूरी रहे जो हमके भुला देलू, सबलू सावत के ता तू अपन जिंदगी मानत रहू, फिर काहे आज ओकरा के एक पल में पराया बना दे। का बात है भैया, सबलू जी लागत है कि कोई रउआ के भी दिल तोड़े रहा, लेकिन अब तो भाई जिंदगी माँ खुशियन के दस्तक है, तो दिल तोड़े वालन का भुलाए जाए, दिल बनावे वालन का याद रखिए। तो आप सबन से जाना चाहिए थे कि के कहाँ कहाँ से अपन अपन आज फरमाइश करे वाला, लेकिन तो फरमाइश से पहले चला कुछ बात कह ली जाए, और आज कुछ खास शायरन के बाद भी हो जाई जो उनकी आप सबके लिए और हमारे लिए भी। पिछली बार एगो अवधी शायर के बारे में बात भेरी, और आज हुई एगो शायर जो उनकी भोजपुरी दुनिया के पहचान रहन, और शुभ संध्या धर्मेंद्र जी, और भोजपुरिया गाना सुने के मतलब दिल में अलग नशा चढ़ जाता है, कहे कि अपन मातृभाषा अपन अवधी अपन भोजपुरी दोनों सगी सहेली हैं, दोनों में अंतर कर बड़ा मुश्किल है, उहे कह सकत है जो उनकी अपन माटी से जुड़ा हुई। बाहर के कोनों भी इंसान जेकर मातृभाषा भोजपुरी और अवधी ना ही है वो बिल्कुल नहीं समझ सके, लेकिन हमें ये बात के बड़ा दुख है कि जैसे हमारे सबके संविधान में सब भाषा का दर्जा मिला है, जैसे मैथिली का मिला है, असमिया का मिला है, लेकिन अभी तक भोजपुरी का दर्जा नहीं मिला है। तो हमें सबका ये जो बातचीत है ना, एक इतना ऊपर तक ले जाए कि हमारे सबके भोजपुरी का भी संविधान में एक छोटा सा कोना जरूर मिल जाए, कहे कि यूपी बिहार जो है देश के अच्छी खासी जनता का अपने साथ लेके चलता है, और हमारे सबके भाषा का अगर पहचान ना मिले तो फिर हमने सबके बात करे के कोई मतलब ना बा। ठीक है, तो आप सबसे जाना चाहिए थे कि आप सब अपने भाषा का संविधान के कोनो अनुच्छेद तक पहुंचावा चाहते हैं कि नहीं। फिलहाल हम तो बहुत चाहिए थे, आप से जाना चाहिए थे कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं। तो आज हम बात करे वाली हैं एगो शायर के जो ने कि नाम है बाबू रघुवीर नारायण। बाबू रघुवीर नारायण की बात करी तो ये छपरा के रह वाले हुए, और इन्हें बतोहिया कविता इनकर जोन रही वो बहुत प्रसिद्ध है। फिलहाल अगर उनके बारे में बात करी तो इनके बहुत सारी कविता हैं जिनके बारे में आप सब सुने हुई हैं जानत हुई हैं, पर अगर अभी आप सभी का उनके कविता के बारे में ना ही पता है तो आज हम कुछ उनके लिखी कविता के बारे में बताएं। पहले उनके बारे में जान लिए कि कैसे कैसे कहां कहां उनकर जो उनका था ना कि खाना पीना भवा, और वे कहां से अपन जीवन के शुरुआत कीन और कहां तक अपने शब्दन के माध्यम से पहुँचे। तो
एगो गीत है कि सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से मोरे प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया। ताई गीत जे भी सुने हुई भोजपुरी भाषा मा ते जानत हुई कि ई सबके जन जन के कंठ के हार बनल रहा एक समय मा। बटोहिया गीत के बारे मा भारत मा जोन भी सुंदर सुंदर चरित्र है, यानी कि चाहे वो नदी के मीठी आवाज होए, चाहे वो तीर्थ धाम होए, और चाहे वो गांव गांव मा गाय वाला वेदा गान होए, राम कृष्ण इस सब के जो उनका थे ना समाहित कई के लिखा गवा है ये कविता मा। वैसे अगर हम बात करी तो एगो प्रभावशाली बटोहिया गीत के रचनाकार रघुवीर नारायण जी अपने समय के प्रसिद्ध कवि बन गए रहे। भोजपुरी हिंदी और अंग्रेजी साहित्य मा आपन लेखनी के माध्यम से समृद्ध करे वाला कवि रघुवीर नारायण अपने नाम के साथ आदर सम्मान के साथ लेहल जलार रहे। अगर बात करी आधुनिक बिहार

नया गांव नामक स्थान में बा, जो उनकी अब गंगा के कटाव में बही गवा है। इनका दादाजी के नाम रहा मनियार सिंह और वो छपरा के कलेक्टर के पेशकार रहें। अब इतने अच्छे परिवार से होए के बावजूद ये गद्य और पद्य लेखनी माँ अपने आप माँ जो उनका कहते ना कि प्रसिद्धि हासिल की। अब इनके कुछ प्रसिद्ध कविता के बारे में बात करा चाहिए थे जोने के चर्चा शुरुआत में हम कह दिए यानी कि बटोहिया। अब आप सब बताई हैं कि एक बारे में आपके का ख्याल है। सुंदर सुभूमि भैया भारत के दिसवा से मोरे प्राण बसे हिम को खोहरे बटोहिया, एक द्वार घेरे राम हित कोतवलवा से तीन द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया, जाओ जाओ भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ जहां कहूं की कोयली बोले रे बटोहिया, पवन सुगंधा मन अगर चंदनवा से कामिनी विरह राग गावे रे बटोहिया, विपिन अगम धन सघन बगन बीचे चंपक कुसुम रंग देवे रे बटोहिया, द्रुमवट पीपल कदंब निलंब आम वृक्ष केतकी गुलाब गुल फूले रे बटोहिया, तोता तोती बोले राम बोले भेंगरजवार से पिपिहवा के पीपी जिया साले रे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के दिसवा से मोरे प्राण बसे गंगाधर रे बटोहिया, ऐसन बहुत बड़ी सी कविता है जेमा देश के एक से एक कवि के बारे में कहा गए है, देश के प्रकृति के सौंदर्य के बात कीन गई ही, देश के अलग अलग शहर के बात कीन गई ही, शहर के संगे संग पेड़ पालो ईश्वर, मतलब ये कविता नहीं है, ये पूरा का पूरा एगो समूह है जिसका पढ़े के बाद में आप पूरे देश के जो उनका था ना कि भ्रमण कह सकत हो, तो भ्रमण वाली कविता कहे जा सकत है बटोहिया का। अगर आप बटोहिया ना ही पढ़े तो एक बार जरूर पढ़िए, बहुत बड़ी कविता है। तो अभी तो मौन यार पूरी पढ़ नहीं सकी लेकिन ये जानी कि ये कविता पढ़े के बाद में देश दर्शन तो आराम से हो जाते है। चलिए आगे बात करी तो बहुत ऐसा इनके कविताएं ही जेका पढ़े के बाद में आप भावुक भी हो जाई हैं और अपने भाषा के ऊपर सम्मान भी करी हैं, पर फिर भी हमारे सबके भाषा का उदर्जा भी नहीं मिला है जो उनकी मिले का चाहिए। बहुत सारी ऐसा लोक भाषा ही जोने का संविधान में आपन जो उनका था ना कि मौका मिल चुका है नाव लिखवावे के, लेकिन हमारे सबके भाषा का अभी तक मौका नहीं मिला है। तो हमारे एक छोटी सी कोशिश है कि रउआ लोग भी प्रयास करें और हमारे सबके भाषा का भी एगो पहचान मिले राष्ट्रीय स्तर पर।

0: तो चलिए आगे एक वो गाना सुना जाए और फिर आप सबके फरमाइश की ओर भी रुकी जाए। और बटोहिया कविता आप सबन का कैसन लाग ये हमें जरूर चैट रूम में बताई हैं। और अगर आपका मिल चुकी है तो पढ़े के बाद बताई हैं कि ऐसन कविता लिखे वाले लोगन का बिल्कुल कहा थे ना कि दिल से नतमस्तक है और हम चाहते कि हमारे देश में और भी ऐसन भोजपुरी कवि हों जोने से देश के जो सम्मान है वो बहुत आगे तक जाए। तो चलिए नीलकमल सिंह के आवाज़ में एगो गाना सुन लीन जाए जिसका सुनने के बाद माँ आप सबके दिलवा भी गावे लगी हीरोइन हो हीरोइन।
1: वाला की बात

से आपका गाना के फरमाइश करे है, वो है धनिया। धनिया यानी कि अपने प्रियसी का, अपने धर्म पत्नी का यूपी बिहार में धनिया कहा जाता है। तो धनिया से गाना जोन आपके हुए मन में वो फरमाइश कह सकते हैं। तो सबसे पहला तीन गाना के फरमाइश पूरी हुई, फिर ओकरे बाद में नवा शब्द आपका दे दिन जाएगी।

तो भाई धनिया से गाना आई गलवा, और सोची लेता ख्वाबा में तू ही बाड़ू, सोची ले तो हमरा ख्वाबन में तू ही बाड़ू, मांगी लेता मन्नत माँ तू ही बाड़ू, चली ले तो मोहब्बत में ही तू ही बाड़ू, चाही ले तो मोहब्बत में ही तू ही बाड़ू, इस छोट से दिलवा में केकरा केकरा के जगह दे ही हम, एकरा में गम रही दर्द रही या तोहार याद रही या तोहार तस्वीर रही। इ तरह के सोचे का पड़ी केका रखे का। फिलहाल आप अपने श्रोत अपने दोस्त श्रोता लोग जो हमारे हैं उन्हें सबका रखिए, कहे कि वह सब रोज़ आपसे मिले ही हैं। तो सबसे पहला फरमाइश है सबलू जी के, और गाना है हमार धनिया भुला गैलू आहा सोनापुर के मेला में, आहा सोनपुर के मेलवा में। फिलहाल ये गाना तो हम सुन के बताई कैसे ना, हम तो पहली बार सुने वाली हैं, लागत है फिलहाल शायद सुने हो गए लेकिन हमें लिरिक्स नहीं याद हुई। तो बड़ा पुरान गाना लागत है लेकिन सुने के बाद लागत है मजा आई, बड़ा प्यारा गाना है। और हम एक संगे कहा कि हमरे एगो श्रोता हैं जोन गाना है हमरे धर्मेंद्र जी, इन्हों के फरमाइश आए ही लेकिन देखिए इनके गाना माँ धनिया बाकी नहीं, ये तो सुने के बाद पता चली हम सब ब्याह काला ऐसा। देखा सबके बताई कि पहले धनिया वाला गाना जे जे फरमाइश किए है वही के फरमाइश पूरी हुई, और अभी तक माँ पहली फरमाइश आए ही हमरे सबलू जी के और आशु जी के। अब बारी है अगला शब्द दिए के, तो अब अगला जो शब्द है वो है जान, जेकरे भी गाना में जान आई उकर गाना बजावा जाई।

0: आहा ए दरोगा बाबू,
1: घर के है लक्ष्मी हमार।
0: का बात है, इतना अच्छा गाना सुने के बाद मजा आएगा वा। और हमरे आज भोजपुरी गाना की लिस्ट में यह गाना ऐड होएगा। तो अगला गाना है अमित के फरमाइश के, जैसन सुचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, आहा ना सावर ना गोड़ बाड़ी हो। चलिए सुनिए।

अब अगले शब्द के लिए थोड़ा इंतजार करी, पहले फरमाइश सबके प्ले हो जाए दुई शब्द वाली। और अभी भी जेका जान से गाना सुने के जैसन की अभी धर्मेंद्र जी के गाना में, वैसे जान है कि ना भी चेक करेगा परी, लेकिन जान वाली दुई फरमाइश आ चुकी है, वो जरूर बच जाए। तब तक के लिए

जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी सावर न गोर बाड़ी हो। अब अगला गाना के बारी है जो उनकी है धनिया ए जान, हमारे सबके आशु जी के फरमाइश है। चलिए सुन के बताएं ये गाना कैसन है। भाई बहुत फरमाइश आ चुकी है कॉल पर भी और चैट रूम अभी, सब गाना बजे के बाद ही अगला शब्द मिली आपका। तो चलिए सुना जाए पवन सिंह के आवाज़ में ई प्यारा सा गाना और सुन के बताएं कैसन है गाना।

अब चलिए अगला गाना सुने के बारी है श्री देवी के फरमाइश के, जब से प्रीतिया त्योहार का बात है। ये पुराना गाना और श्री देवी प्रसाद के फरमाइश पर ही गाना, चलिए सुन के बताएं कैसन बा। और जैसे प्रीतिया त्योहार, प्रीतिया कहा जाता है प्रेम का, स्नेह का। और अक्सर हम सब भाषा के मामले में कोनो शब्द ऐसे रहते थे जेका समझ नहीं पाई थे, पर हमरे भोजपुरी भाषा और अवधि भाषा के जो शब्द सीमा है वो बड़ी खूबसूरत है। एक एक शब्द जैसे एगो सुंदर माला के निहायत पिरोवा जात है। तो चलिए सुन के बताएं ये गाना कैसन है।

सिंह के आवाज़ में ही बड़ा खूबसूरत सा गाना सुने के बाद दिल छू लेस। और अब एकरे गाना के सुने के बाद हमने सब सुना चाहिए गाना राजू सलमानी जी के फरमाइश है और सुना चाहत हैं फिल्म दंगल जो उनकी बड़ी पुरानी फिल्म है एकर गाना मोरे होठवा से नथुनिया।

अब चलिए अगला गाना सुनी, जो उनकी फरमाइश है निशा के। निशा के गाना हिंदी रहा, लेकिन उनके लिए भोजपुरी गाना बजे वाला है, कचौड़ी गली सुन कई लो बलमो।

चला कट्टा पे दुपट्टा। अगला गाना है पवन के आवाज माँ और सुना चाहत है पप्पू हार्डवेयर। चलिए देखा जाए गाना कैसन बा और ये गाना के बाद हम सबे सुना जाई गाना जा जा जान भुला जाई। हाँ, और ये गाना है आशु जी की फरमाइश है, जो उनके इनके दूसर फरमाइश है, दूसरा शब्द वाली।

अक्सर गाना सुनने का मिले वाला है वो है सबलू जी के फरमाइश के, और एक बाद हम सब सुना जाए रूहानी के फरमाइश के गाना। रूहानी कौन गाना सुना चाहती, रूहानी के भी बड़ा प्यारा सा गाना है अपनी डीपी पे नाज करते हैं, लेकिन आपसे कही रूहानी जी के आप भोजपुरी गाना का फरमाइश करें और आप क्या गाना सुने का मिली।

चलिए अगला गाना सुने के बारी है, जोन की रूहानी के फरमाइश रही, मेरा गाना नहीं बजेगा मैं समझ नहीं पाई। रूहानी रवा के कही थे कि आप भोजपुरी गाना के फरमाइश करी, आपका गाना आशु जी बज गया, आपने सुना भी नहीं हमको ऐसा लग रहा है। और चलिए अगला गाना सुना जाए रूहानी के फरमाइश के, लेकिन रूहानी के फरमाइश जोन है वो हिंदी गाना के है, तो रूहानी से निवेदन है कि आप दोबारा से फरमाइश करें एगो प्यारा सा भोजपुरी गाना के, और जोने गाना माँ दिल शब्द आवे। ठीक है, तो वैसे दिल शब्द तो बहुत है गाना माँ आवत हुई, और फिलहाल चलिए सुना जाए एगो और प्यारा सा भोजपुरी गीत जोने के फरमाइश है हमरे सबके सखी पूजा के। तो चली इन्हें सुने खे गाना, हाथी ले बे घोड़ा ले बे हीरो हंडा।

अब समय हो चुका है आप सबसे दूर जाए के, अब शुरू होता है आप सबके गाना बजे के टाइम। देखिए रूहानी के कोनो फरमाइश आई है, रूहानी लिखा थी एगो गाना और चलिए बजाए दी इनकर गाना, और आखिरी फरमाइश रूहानी के सुन के हमें दिए इजाज़त। हजरत रहें, मुस्कुरावत रहें, और कल सुना जाई आप सब अपन पसंदीदा फिल्म के बारे में जाना जाए, और आए वाली कुछ खास फिल्मन के बारे में भी जाना जाए। तो कल मिली हैं अपने ही समय पर अपने खास शो सुनने के लिए, गोंडा मैसे मसाला आर जबीना वाला और भोजपुरिया स्पेशल बृहस्पतिवार माँ आप विशेष रूप से आए सकते हैं और अपने पसंद के भोजपुरी गाना सुन सकते हैं। तो आर जबीना का दिए इजाज़त, कल फिर मिली हैं, और हंसत रहें, मुस्कुरावत रहें और बजावत रहें 89.6 FM यह गोंडा शहर की धड़कन।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260-981-976, 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और

0: साथ बचत कर सकती है। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी। पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: अरे सुना
2: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
8: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
9: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
8: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
9: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
8: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरन नाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

फरमाइशी वीडियो आज सिंपल इज नॉट सिंपल और आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। ओ माय गॉड, दिल ना तोड़ोगे कसम खा के कहो। वैसे कसम भी लोग झूठी खाते हैं, तो अब ये कसने वादे ये सब कुछ आजकल के घोर कलयुग में कुछ भी मायने नहीं रखते, इम्पोर्टेंस नहीं रखते, वैल्यू नहीं रखते। क्यों, सही कहा ना मैंने? फिलहाल जिसको वैल्यू ही नहीं रखी जाती है उसको साइड में रखते हैं, और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, ओ माय गॉड, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए। उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए। ओ माय गॉड, और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत चांद, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपकी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल, तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, रूहानी गोंडा से, सबलू सावन जी मुंबई से, निधि सीतापुर से, राजेश कुमार सिंचाई विभाग से, शशि सिंह जी गोंडा से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, कार्तिक कश्यप गोंडा से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, मोहित मालवे नगर गोंडा से, राजेश कुमार सिंह जी मालवे नगर गोंडा से, उषा कश्यप गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, आई मीन पहली वाली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। विजय पाल यादव फ्रॉम लल्लुआ, आई मीन लल्लुआ, लखीमपुर खीरी स्टेट, यू नो एवरीवन। इसी के साथ में धर्मेश त्रिपाठी का कहना है कि फिजा में गूंजी जब इनकी प्यारी आवाज, फिजा में गूंजी जब इनकी प्यारी आवाज, दिल को मिला, क्या बोल रही हूँ मैं, दिलों को मिल गया जैसे एक नया साज। रेडियो के इस सफर में है इनका स्वागत, इनसे ही सस्ता है ये प्यारा सा अंदाज। काय को आते ही बटरिंग, कुछ तो लोचा है धर्मेश त्रिपाठी। सो लोचा ये उल्फत ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन उसके पहले एंजॉय करेंगे हमारी आज की पहली फरमाइश। जग्गू दादा को सुनना है गाना तू नींदों की रानी। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, प्यार का सपना पिक्चर का, हमारे जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर, जो कि है एमपी से। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन स्टेट। यू नो एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा स्टेट।

दुनिया अपनी लगती जब तू हो गया अपना, और तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना, हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। लेकिन क्या आप सभी अगली फरमाइशी गीत को एंजॉय करने के लिए तैयार हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली, काय नहीं। अगर आप नहीं तैयार होंगे तो क्या कोई और तैयार होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, विजय रावत आपका स्वागत है। और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश है रूहानी की। लेकिन दोस्तों, कई दिन से नहीं, कभी कभी ऐसा होता है जिस दिन मैं अपनी उंगलियों को रेस्ट देना चाहती हूँ और ज्यादा किट किट किट नहीं करती हूँ ना, उस दिन मैं चैट बॉक्स को रिफ्रेश नहीं करती हूँ आती हूँ तब। और जब मैं चैट बॉक्स को रिफ्रेश नहीं करती हूँ आती हूँ तब, तो क्या है ना कि फरमाइशें जो आई रहती हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं। और फिर आप लोग शिकायत करते हो, अरे मैम जी मेरा गाना तो पहले था, वो तो गलती से मिस्टेक हो जाता है, मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ। दोस्तों फिलहाल जैसे आपका ये मैसेज आता है तुरंत मैं चैट रिफ्रेश करती हूँ, रिफ्रेश करने के बाद में फिर से वही आपकी वाली प्लेलिस्ट मेरे सामने भी आ जाती है। तो इसमें ना मेरी गलती है ना आपकी गलती है, गलती किसकी है? टेक्निकल इशू की नो ना। इसीलिए जिंदगी को भी हमेशा रिफ्रेश करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक हमें आइडिया नहीं लगेगा ना कि कौन सी चीज कौन सी जगह पे होनी चाहिए। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश है रूहानी की। रूहानी को सुनना है गाना नचपन जामन नच ले। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना सिर्फ और सिर्फ रूहानी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

माय गॉड, ये बचपन वाला गाना मैंने कैसे बचपन में सुन लिया। थैंक यू सो मच, इट मींस रियली रियली रियली अ लॉट। ये फरमाइश थी सोनिया तिवारी की, और बहुत ही अतरंगी सी और बहुत ही यूनिक सी फरमाइश थी। रूहानी की फरमाइश थी, और बहुत ही अतरंगी सी और बहुत ही यूनिक सी फरमाइश थी। इंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत को दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की, और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अनमोल, आपका स्वागत है। और अगली फरमाइश है धर्मेश त्रिपाठी की, उनको सुनना है हिम्मत वाला का गाना ताकि ताकि। सो एंजॉय करते हैं ये गाना सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड, दो चार ठुमके लगाना तो बनता ही है ना दोस्तों।

आंख में झांकी। हमने एंजॉय किया बहुत ही खूबसूरत सा नगमा धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। जी हाँ दोस्तों, ये गाना था हिम्मत वाला पिक्चर का अजय देवगन और तमन्ना भाटिया का। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले धर्मेश त्रिपाठी का कुछ कहना भी है दोस्तों। क्या कहना है इनका, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा रुक करते हैं उस तरफ भी। इनका कहना है कि मेरी एक छोटी सी फरमाइश को उन्होंने इतना खास बना दिया, मेरी एक छोटी सी फरमाइश को उन्होंने इतना खास बना दिया, अपनी प्यारी आवाज से आज मेरा पूरा दिन बना दिया। अच्छा, दिल से शुक्रिया है हमारी आरजे सिंपल जी का, जिन्होंने महफिल में सुरों का एक हसीन समा जगा दिया। फ्रॉम धर्मेश त्रिपाठी, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ रियली रियली रियली रियली रियली रियली अ लॉट। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है सोनिया तिवारी की, और सोनिया तिवारी को गोंडा से सुनना है बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, लता जी की आवाज में, दिल एक मंदिर का ओल्ड स्कूल सुनहरा नगमा। हम तेरे प्यार में सारा आलम को बैठे हैं को, ओह माय गॉड, आई लव दिस सॉन्ग। एंजॉय करेंगे सोनिया तिवारी की फरमाइश पर। ये बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुरीला सा, हाउ रोमांटिक गाना, ओह माय गॉड।

सारा आलम खो बैठे हैं और तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। हाँ सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला सुनहरा सा नगमा हमारी सुनहरी इसी सोनिया तिवारी जी की फरमाइश पर, और जग्गू दादा का कहना है ओ माय गॉड सुपर सॉन्ग, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अरीबा शेख, आपका स्वागत है। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, विनोद राठौड़ की आवाज में हम एंजॉय करेंगे खड़ा है दर पे तेरे आशिक, सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश में, और गाना है अंदाज पिक्चर का। स्टे ट्यून्ड।

अतरंगी सा गाना हमने एंजॉय किया है। हमारे अतरंगी से धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर जो की है आवाज विकास गुंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन कहां कहां से लेके आते हैं आप लोग गाने। ओ माय गॉड, बहुत ही अलग सा गाना था और मैंने पहली बार सुना है, थैंक यू सो मच। अगली फरमाइश हमारे पास में है सबलू सावंत की मुंबई से। सबलू सावंत को मुंबई से सुनना है कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में गाना सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें। सो एंजॉय करते हैं ये हाउ रोमांटिक नगमा हमारे हाउ रोमांटिक सबलू सावंत की फरमाइश पर जो की है मुंबई से स्टेट।

सावली सलोनी तेरी जीन सी आंखें कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में ये रोमांटिक सा गाना हमने एंजॉय किया है। हमारे रोमांटिक से सबलू सावंत की फरमाइश बजू की है मुंबई से। बढ़ेंगे अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों, लेकिन उसके पहले कितनी प्यारी सी लाइंस लिखी है सबलू सावंत जी ने, इसको कैसे मिस कर सकते हैं हम सब। हाँ, सो सबलू सावंत जी का कहना है कि मेरी रूह की तलब हो तुम, कैसे कहूँ सबसे अलग हो तुम। मेरी रूह की तलब हो तुम, कैसे कहूँ सबसे अलग हो तुम। लोग सूरत पे मरते हैं जनाब, मुझे तो आपकी आवाज से भी इश्क है सिंपल जी। तुम हो तो हर ख्वाब हमारा लगता है, तुझे देखकर मौसम भी प्यारा लगता है। तेरी मुस्कुराहट मेरी पहचान है, तेरी खुशी मेरी शान है, इसीलिए ज्ञान स्थली पे आते हैं हम प्यार के बहाने दिल का करार लूटने। थैंक यू सो मच सबलू सावंत जी मुंबई से। इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश जो कि है उषा कश्यप जी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना देखा ना सैया हमार जैसे। सो इंजॉय करते हैं जानी दुश्मन का ये गाना सिर्फ और सिर्फ उषा कश्यप जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़। स्टे ट्यून्ड, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम, इट्स कुम्मा फ्रॉम एमपी रीवा।

फरमाइश थी उषा कश्यप जी की गोंडा से, बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की। मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है किशोर कुमार और मोहम्मद रफी जी का गाना। जी हाँ दोस्तों, इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, दीदारे यार का मेरे दिलदार का। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, ये फरमाइश है राजेश।

हमें एंजॉय किया है दीदारे यार का, ये ओल्ड इज गोल्ड नगमा मेरे दिलदार का, सिर्फ और सिर्फ हमारे मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो वंशिका, आपका स्वागत है। और अगली फरमाइश है मोहित की मालवीय नगर गोंडा से। मोहित को मालवीय नगर गोंडा से सुनना है गाना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। सो एंजॉय करते हैं अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में रंग का ये बहुत ही खूबसूरत सा मोहब्बत इश्क प्यार वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

प्यार हुआ, इकरार हुआ, तो प्यार से फिर क्यों डरता है दिल और कहता है दिल रास्ता मुश्किल। हमने एंजॉय किया रंग पिक्चर का ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से। आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना अलका याग्निक की आवाज में। एंजॉय करते हैं छम्मा छम्मा। जी हाँ दोस्तों, 90s का आइटम सॉन्ग हम एंजॉय करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारी आशु जी की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से आपका स्वागत है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।

की आवाज में ये 90s का आइटम सॉन्ग हमारी आशा मिश्रा जी की फरमाइश पे जो की है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अरे चलेंगे चलेंगे, इतनी देर से आप लोग फरमाइशी तो एंजॉय कर रहे हो, मतलब आज तो मैंने अपनी बकबक को थोड़ा सा भी एंजॉय ही नहीं किया। दोस्तों मैंने नहीं एंजॉय किया तो आपने कैसे कर लिया होगा। आज मेरी बकबक की याद नहीं आ रही क्या आप लोग को? किसी ने नहीं बोला कि क्या हुआ आरजे सिंपल आज आप बहुत शांत हैं, क्या हुआ आरजे सिंपल आज बहुत चुप है। खैर कोई बात नहीं, आज आप लोग का भी मूड नहीं होगा बकबक सुनने का। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले दोस्तों हम सभी स्वागत करेंगे हमारी फरमाइशी की महफिल में हमारी प्रीति शुक्ला जी का, जो कि है बहराइच से। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो प्रीति शुक्ला जी बहराइच से। ओ माय गॉड, आज मेरी इस फरमाइशी की महफिल में तीनों देवियां एकत्रित हैं, मतलब मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है सच में। जी हाँ दोस्तों, गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से और प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, ये तीनों की तीनों लिसनर्स हमारी सबसे प्रिय लिसनर्स, हमारे सभी लिसनर्स के दिल के करीब रहने वाली लिसनर्स, आज एक साथ फरमाइशी की महफिल में इन तीनों को देख के सच में मेरा दिल गार्डन गार्डन गार्डन हो गया। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन इसके पहले मैं कहना चाहूंगी कि इस फरमाइशी गीत की उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं किया फटाफट से पेट पूजा कर लेना और फिर फरमाइशी की महफिल में आना, हजारों लाखों चांद लगाएंगे। प्यार इश्क मोहब्बत अकेलेपन तन्हाई दुख दर्द इन सबके आए हाय। Stay tuned. Very, very good evening and welcome in your show. God of India Wallet. Stay tuned.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता एक वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
3: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर

0: बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है।
1: गुजरात के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
2: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खूंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
4: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहां 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
5: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहाँ लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यह उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
6: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है, बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
4: वहीं प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं

0: जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुक के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबाऊ मारिनमई और सीबीसी आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरीसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमरीका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइश की महफिल में, आपकी अपनी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने एंजॉय किया है दलेर मेहंदी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा पंजाबी सॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ राजेश कुमार की फरमाइश पर, जो की है सिंचाई विभाग गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है शशि सिंह की, और शशि सिंह को सुनना है गाना बड़ी दूर से आया। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा शशि जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ तो भैया सुना दो गाना जल्दी से।
1: वही गाना सुनाओ।
0: एक काम करो, उठो अब यहां बैठ जाओ और फौरन एक गाना सुना दो।

से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा शशि सिंह जी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है निधि की सीतापुर से। निधि को सीतापुर से सुनना है गाना आया आया अटरिया पे कोई चोर। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, लेकिन इस बार निधि की फरमाइश पे जो की है सीतापुर से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

आया आया अटरिया पे कोई चोर, हमने एंजॉय किया। ये बहुत ही खूबसूरत सनम लता मंगेशकर जी की आवाज में मेरा गांव मेरे देश पिक्चर का सिर्फ और सिर्फ निधि की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों। और अगली फरमाइश हमारे पास में है विजय रावत की। विजय रावत को सुनना है गाना दिल की कलम से। एंजॉय करते हैं ये नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनमोल की। स्टे ट्यून्ड।

कलम से। अनुराधा जी की आवाज में हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। ये तो फरमाइश हमारे पास में थी विजय रावत की, और अगली फरमाइश हमारे पास में है आशा जी की और कुमार सानू की आवाज के नगमे की। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारी नजरों में हमने देखा, एंजॉय करते हैं अनमोल की फरमाइश पर। स्टे ट्यून एवरीवन। ये फरमाइश है अनमोल की और गीता श्रीवास्तव जी की गोंडा से। स्टे ट्यून।

नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आशा जी की, कुमार सानू की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ अनमोल और गीता श्रीवास्तव जी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, पंडित भोलेनाथ मिश्रा जी आपका स्वागत है। और अगली फरमाइश हमारे पास में है अरीबा शेख की और इट्स कुमार की। अरीबा शेख को और इट्स कुमार को सुनना है गाना धड़क मूवी का टाइटल ट्रैक। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा और इसी फरमाइशी गीत के बाद में दोस्तों हम चलेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, जो कि है भोलेनाथ मिश्रा की और नागेश्वर धाकड़ की। भोलेनाथ मिश्रा और नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना तेरी उंगली पकड़ के चला। फिलहाल एंजॉय कर लेते हैं धड़क का ये टाइटल ट्रैक। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, ये फरमाइश है अरीबा शेख और इट्स कुमार के एमपी रिवा से। स्टे ट्यून्ड।

रीवा शेख की और इट्स कुमार के एमपी रीवा से। बढ़ते हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश गीत की तरफ। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों भोलेनाथ मिश्रा जी की और नागेश्वर धाकड़ की। इंजॉय करते हैं तेरी उंगली पकड़ के चला, और इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो दोस्तों अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन, आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। मैं कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। और ये गाना डेडिकेट करती हूँ मैं हम सभी की मम्मा को। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, लव यू मम्मा।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
3: अरे सुना
4: क्या,
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9260-981-976, 9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को, आप सभी का इस्तकबाल, आप सभी का अभिनंदन वंदन नमन और स्वागत आप ही के शो बहारे गजल में। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रेसलेट 9.6 एफएम। ये गोंडा ही नहीं, अब तो बन चुका है हमारे और आपके दिलों की धड़कन। और इस धड़कन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल है। जी हमारे साथ भाई बने हैं पंडित भोलेनाथ मिश्रा जी, चरण स्पर्श करते हैं आपको। और नागेश्वर धाकड़ जी, क्या बात है भाई, अपने उसी धाकड़ अंदाज में है। और हमारे साथ अरीबा शेख जी हैं। हेलो, गुड इवनिंग आज जी मनु सर जी। हाँ, आदाब आपको भी, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और अब जब हम बात करते हैं बहारे गज़ल की, तो ये बात होती है नींव के उन ईंटों की, जिन्हें शायद कोई देख नहीं पाता, लेकिन इमारत के खड़े होने में सबसे ज़्यादा अहम रोल, सबसे ज़्यादा जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, वो हमारे दानिश्वर कलमकार होते हैं। कल हमने, परसों ने बात की थी गुलजार साहब को लेकर। कल 2 अक्टूबर है, आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती, इन दोनों की अग्रिम शुभकामनाएं। एक को हम महात्मा कहते हैं और दूसरे को अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखें और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखें, तो शायद भारतवर्ष का सबसे सिंपल, सबसे सादा जीवन रखने वाले प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। सादा जीवन, उच्च विचार, ये सिर्फ उन्होंने कहा ही नहीं, ये उन्होंने करके दिखाया। देश में अकाल पड़ा तो उन्होंने जनता से कहा कि आप हफ्ते में एक दिन का व्रत रहिए, और स्वयं वो 2 दिन का व्रत रहे। और महात्मा गांधी, आहा, मतलब अगर हम बात करें तो किसे पता था कि मोहनदास करमचंद गांधी, जो बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ेंगे और बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के पश्चात वो भारतवर्ष आएंगे और अंग्रेज़ों की उस बर्बरीक, उस हृदय विदारक घटना को देखने के पश्चात वो जब जान जाएंगे कि शायद हमको आज़ादी आई फैज फॉर एन आई से नहीं मिल सकती, खून के बदले खून से नहीं मिल सकती, तो उन्होंने कहा कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आप एक आँख के बदले एक आँख लेते चलेंगे तो ये दुनिया एक दिन अंधों की हो जाएगी। और उनकी विचारधारा से भारत प्रभावित हुआ। कवि ने लिखा कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। तो चूंकि कल हम आपके साथ नहीं होंगे, और इसलिए वहाँ की पूर्व संध्या की आपको पहले पहले शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। और आज जिस शायर के बारे में बात करेंगे, वो एक ऐसे कवि हैं, एक ऐसे शायर हैं, जिन्होंने जिंदगी के कई सारे पहलुओं को देखा और इल्म से लेकर फिल्म तक का सफ़र उन्होंने तय किया। हम आप उनको शकील आज़मी साहब के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज आपकी मुलाकात होगी शकील आज़मी से। सुनाते हैं आपको एक प्यारी सी गज़ल और लौटते हैं
शकील आजमी साहब के साथ। जी हाँ, हमारे साथ विजय रावत जी हैं। गुड इवनिंग सर, शुभ संध्या आपको भी। जी हाँ, सुनते रहिए रेडियो अगेंस्ट 89.6 FM, क्योंकि ये गोंडा ही नहीं अब बन चुका है हमारे और आपके दिलों की धड़कन। जी हाँ, तो आइए इस प्यारे से कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी सी गज़ल के साथ करते हैं और लौटते हैं इस गज़ल के तत्काल पश्चात।

जी हाँ, तो बहारे गजल में आज के हमारे मेहमान हैं शकील आजमी साहब। कल 2 अक्टूबर है और विशेष दिन है, राष्ट्रीय पर्व है, और मुझको लगता है कि उससे मुताल्लिक, उससे कुछ जुड़ी हुई बातें होनी चाहिए। मतला हाजिर है कि मतला कहते हैं किसी भी गज़ल या किसी भी शेर की जो पहली पंक्ति होती है उसको मतला कहा जाता है। तो मतला हाजिर है कि गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। अब देखिए, दिन गुजर जाना और दिन पूरा हो जाना, इसमें बहुत अंतर है। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। मैं चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं होता। हम लोग, हमें माफ करेंगे, हमसे बड़े लोग बैठे हैं और बहुत योग्य लोग हैं आप, लेकिन हम जब अपने घर पहुंचते हैं ना बाहर की का काम करके, तो हम पूरे नहीं पहुंचते हैं। हम

तेरा कान्हा आ रहा है। बहुत खूबसूरत पंक्ति मुझको याद आई, उन्होंने कहा कि अभी जग भर आया है, बांह भर आएगा तब मान लूंगी कि आ गया। मतलब अभी दुनिया के लिए आया है, अभी तो बांह भर हमारे पास कहाँ आया है, दुनिया का है। हम भी लोग जब घर पे पहुंचते हैं ना, तो कल क्या करना है इसका ख्याल रात में रहता है कि सुबह ये करना है, ये उनको फ़ोन करना है, उनसे पेमेंट लेनी है, वहाँ जाना है। हम जब अपने घर पहुँचते हैं तो पूरे नहीं पहुँचते, आधे पहुँचते हैं, 70% पहुँचते हैं, 75% पहुँचते होंगे, लेकिन साहब 100% शायद ही हो सकता है इस दुनिया का कोई ऐसा इंसान हो जो जब बाहर का काम करके घर लौटे और 100% घर का हो जाए, शायद ये महापुरुष ही कर सकते हैं। मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं कर सकता। रात में भी जाऊंगा तो फिर कल ये पढ़ाना है, कल क्या करना है, इनसे मिलना है, ये बात करनी है, नल ठीक कराना है, टूटी से पानी छू रहा है, तमाम चीज़ें। तो दिन गुजर तो गया, पूरा नहीं हुआ। हम बाह भर पहुंचते हैं, जग भर पहुंचते हैं अपने घर, हम अपने घर जब जाते हैं तो जग भर जाते हैं, बाह भर नहीं जा पाते। और इसके पीछे कुछ विवशताएं भी हैं। मुझे थकने नहीं देता, मुझे थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। इंसान की जिम्मेदारियां उसको जवान बनाए रखती हैं, ये शायद दुनिया का कड़वा सच है। तूने कहा कि गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं होता, लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना, लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना, परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। शजर कहते हैं पेड़ को, परिंदा मतलब पक्षी, पक्षी नहीं है तो पेड़ का कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा पंक्ति आती है कि खुदा भी खूब है, खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब माँ नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। अब देखिएगा कल राष्ट्रीय पर्व है और पंक्ति आपके हवाले है कि वो चोटी की बनावट हो, चोटी रखते ना, इसमें देखा होगा पितृपक्ष चल रहा है तो वो चोटी की बनावट हो, सनातन धर्म का प्रतीक, या टोपी की सजावट हो, इस्लाम धर्म का प्रतीक, वो टोपी, वो चोटी की बनावट हो या टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। आप अपने आप को ऊपर से बहुत सजा लीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप किसी मजहब वाले नहीं हैं। शायद इसीलिए गांधी जी कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, कहते थे सबको सद्बुद्धि दो, क्योंकि वो जानते थे कि हो सकता है लोग बटें। और मुझे ये भी कहने दें कि आज की बात अगर हम करें तो जब बड़े हो गए हैं तो अफसोस होता है, बड़े हो गए। जब इंसान बचपन में होता है तो बहुत खुश होता है, बड़े होंगे तो जिएंगे जिंदगी अपने हिसाब से।

बच्चा सोचता है कि आज ये कपड़ा लेना है, पापा ने पैसा नहीं दिया, जब हम कमाएंगे तब ले लेंगे। बड़े होंगे तो जिएंगे जिंदगी अपने हिसाब से, बचपन के इस ख्याल पर अब रोज हंसी आती है। वो बचपन का ख्याल था साहब, शौक इंसान माँ बाप के पैसों से ही पूरा कर पाता है, अपने पैसों से खाली ज़रूरतें पूरी होती हैं। बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिनके माता पिता हैं, और या वे माता पिता हैं, और अगर नहीं है तो सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगपानी। जहाँ भी आप देखें वहाँ भी आपके रिश्ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम परंपरा है। हाँ जी, चलिए अब जब बात आई है बचपन के, मेरे साथ स्टीव जी हैं, कोई टी भाई, सविता जी जी हैं, सविता शास्त्री जी जी हैं, चरण स्पर्श आपको, हमारी बहुत ही प्यारी बहन गीता जी हमारे साथ हैं, चरण स्पर्श करते हैं, शुभ संध्या आपको भी। अरविंद जी हमारे साथ हैं भाई, हेलो एवरीवन जी। हाँ, और धर्मेंद्र मोहन जी हैं, मनु जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार जी आपको भी। और अरविंद जी पूछते भाई मनु सर कैसे हैं आप, अरे आप लोगों का साथ रहेगा, शानदार रहेंगे साहब। और मिले थे जो कभी हम दोनों पूरी शिद्दत से, आज अजनबी बनकर एक दूसरे के पास से गुजरते देखते हैं, क्या बात है। सर जी पत्थर का था दिल मेरा, शीशे से टूट गया, मुझे ज़िंदगी की एक ऐसी मिली कि मेरा दोस्त टूट गया, उसका नाम अक्षर से आता है, क्या बात है भाई। तो सब समझ रहे हैं, अब रूठ गया है तो रूठा ही रहने दो, क्या बात है। और वक्त बदल गया पर जख्म वही पुराने हैं, जो साथ थे कभी अब सिर्फ बहाने हैं, क्या बात है। और बचपन में जब हम बचपन की बात करते हैं साहब ना, तो सबसे ज्यादा महत्व बच्चों के लिए खिलौनों का होता है। और आप यकीन मानिए, जो खिलौने बेच रहा होता है शायद वो दुनिया का सबसे दर्दीला इंसान होता है, क्योंकि उसे ये पता है कि हर बच्चे के पास शायद उतना पैसा नहीं है जो हमारे खिलौने को खरीद सके। और मैंने कुछ खिलौनों के खरीदने वालों को देखा तो उन्होंने अपना खसारा करके, अपना नुकसान करके बच्चों का दिल रखने के लिए उनको खिलौने दे दिए। और साहब खिलौने वाले का दर्द जब कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब के पास पहुंचा, तो उन्होंने भी खिलौने बेचे, किस अंदाज से बेचे, अपने बचपन का दौर याद कीजिए, खिलौनों का महत्व याद कीजिए। रफ़ी साहब की इस प्यारी सी आवाज़ में शायद उस खिलौने वाले का दर्द आपको समझ में आएगा। आपको कोशिश करते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन सा नगमा सुनाएं, और उम्मीद है कि रफ़ी साहब के गले से निकला हुआ ये नगमा कहीं ना कहीं आपके दिल को स्पर्श करता हुआ, छूता हुआ हमारे चैट बॉक्स तक ज़रूर पहुंचेगा। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा कर रहा है आप सभी की प्रतीक्षा।

मतलब आप सुनिए तो खो जाइए, और अगर अपने आप को आपने कहीं रफ़ी साहब के दर्द के साथ जोड़ लिया, आह, फिल्म दो बदन, मनोज कुमार, आशा पारेख, सिमी गिरवाल और प्राण, लिखा है जिसने वो क्या बात है, शायरों के शायर शकील बदायूनी, संगीत रवि साहब की है, और आह जिस कंठ से निकला उसका नाम आप जानते हैं, मोहम्मद रफ़ी। पड़े जब गमों से पाले, रहे मिट के मिटने वाले, क्या बात है। पंक्त देखिए, जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा, कितना बड़ा विरोधाभास है, सोचने की बात है मित्रों। यानी मौत नहीं मार पाई लेकिन जिंदगी मार कर चली गई, जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा, क्या समझने वालों के लिए मौत है। शायर ने अपना दिल निकाल के रख दिया है, संगीतकार ने अपनी पूरी कोशिश की है, और रफ़ी साहब का दर्द और मनोज कुमार की एक्टिंग, आहा, लगता है कि साहित्य है। ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, कि उसी के हो गए हम जो ना हो सका हमारा, इससे बड़ा दर्द क्या होगा साहब। आप इस दुनिया में उस इंसान के हो जाएं जो इंसान आपका ना हो, मुझे लगता है कि ये दर्द की पराकाष्ठा है। हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी हैं, और ग्रेट सॉन्ग लिखा है स्टीव ने, और वो खेल, इस खेल खिलौने से आप कोई खेल बाकी न रह गया, अब जो बगिया माँ बाप ने दी है वही खबर या साथ में, बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अरविंद जी लिखते हैं, भाई दिल को छू लेने वाला सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद, और वाह क्या गीत है जी, पढ़ लो भाई। और जी हाँ, जो सामने है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भाई, कुछ बहुत कुछ खास है। थ्री थिंग्स आई कैन नॉट कंट्रोल, स्माइल ऑन माई फेस व्हेन सी यू, टीयर्स इन माई आईज व्हेन मिस यू, एंड जेलसी इन माई हार्ट व्हेन आई सी यू विथ समवन एल्स, क्या बात है। मैं तीन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, पहला जब मैं आपका चेहरा देख लेता हूँ तो मेरे लबों पर मुस्कान आ जाती है, जब मैं आपको याद करता हूँ, आपकी कमी महसूस करता हूँ तो मेरी आँखों में आंसू आते हैं, और मुझे जलन होती है जब मैं आपको किसी के साथ देखता हूँ, क्या बात है। बिल्कुल भाई, बहुत ही शानदार बात लिखी अरविंद जी आपने। और जी अब चलते हैं शकील आज़मी साहब की तरफ। उन्होंने कहा, कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, मेरे शहर में है खुदा बहुत मगर आदमी का पता नहीं। कहीं यूं ना हो तेरे हाथ में मैं हवा से मिल के भड़क उठूं, कहीं यूं ना हो तेरे हाथ में मैं हवा से मिल के भड़क उठूं, अभी खेल मत मेरी राख से मैं सुलग रहा हूं बुझा नहीं। पंक्ति आती है कि न मैं भीड़ हूं न मैं शोर हूं, न मैं भीड़ हूं न मैं शोर हूं, मैं इसीलिए कोई और हूं, अरे कई रंग आए गए मगर कोई रंग मुझ पे चढ़ा नहीं। मेरी ताजगी से डरे हुए हैं कई पुराने गुलाब भी,
मेरी ताजगी से डरे हुए हैं कई पुराने गुलाब भी, मेरे हक में लोगों दुआ करो, अभी ठीक से मैं खिला नहीं। ये जो बोतलों में शराब है, ये जो बोतलों में शराब है, ये खराब थी, ये खराब है, इसे छोड़ दे, इसे तोड़ दे, ये किसी मर्ज की दवा नहीं। बात मंदिर से शुरू हुई और मैं खाने तक आ गई, लेकिन दर्द साहब, अरे दर्द ने जन्म दिया है इन महकदों को, इन महखानों को, दर्द ने जन्म दिया है इन महकदों को, इन महखानों को, दर्द ने जन्म दिया है इन छलकते पैमानों को। अरे अरे अगर दर्द न होता तो न ये बोतल होती, न होती शराब, न तुम पीते, न हम पीते, न कहलाते खराब। जी हाँ, लेकिन इस भरी दुनिया में आपका दर्द समझेगा कौन साहब? मोहब्बत हो गई आपको तो आपको कौन समझने वाला है? सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को समझेंगे, आपके अलावा कोई नहीं समझेगा। आइए, जब बात मोहब्बत की हुई है, और वो मोहब्बत भी कैसी जिसमें सामने वाला शायद आपकी किस्मत में नहीं है, लेकिन अफसोस आप उसके दामन से अपना हाथ छुड़ा नहीं सकते। ऐसे मौके पर, ऐसे मौजू पर, ऐसे वक्त पर कौन सा नगमा आता है? जी हाँ, बहुत प्यारा नगमा हमको याद आ गया, आपको सुनाते हैं। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 एफएम, यह है गुना शहर की धड़कन, नहीं बल्कि हमारे और आपके दिलों की धड़कन बन चुकी है। अब तो फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए प्रस्तुत है।

जी, मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहा जाए। सजेगा दिल हो तो मोहब्बत वाले पांच तत्व में मिल जाए। फासले ऐसे भी होंगे, सोचा न था सामने बैठा था पर वो मेरा न था। क्या बात है भाई। और अब आप सभी को एक बार पुनः लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की जयंती की हार्दिक हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं। आसमान वाले ने चाहा तो शनिवार को पुनः आपसे मिलेंगे आपके ही कार्यक्रम बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गोंडा ही नहीं, हमारे और आपके दिलों की धड़कन। चलते चलते आपको एक प्यारी सी लोरी सुनाते हैं और आपसे लेते हैं अनुमति। आसमान मिलने चाहा तो शनिवार को आपसे मुलाकात होगी आपके ही कार्यक्रम बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, क्योंकि ये है गोंडा ही नहीं, हम सभी के दिलों की

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी खोया खोया चांद। पीहू, ओ पीहू, नील ने अखबार पढ़ते हुए तीसरी बार आवाज लगाई थी तो नीलू को काम छोड़कर आना ही पड़ा। क्या है, क्यों शोर मचा रहे हो? पीहू ने भी उतनी ही तेज आवाज में पूछा। नील ने एक्साइटेड होते हुए जवाब दिया, तुम्हारे काम की बात कर रहा हूँ। शहर में एक बहुत बड़े पेंटर की पेंटिंग एग्जीबिशन लगी है, ये देखो न्यूज़पेपर में ऐड आया है, चलोगी देखने? नेकी और पूछ, आज ही चलते हैं। पीहू को तो ये बात सुनकर ही मजा आ गया। अच्छा, पेंटर का नाम क्या है? समीर ठाकुर। अच्छा सुनो, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। समीर ठाकुर? समीर, पीहू ने दोहराया तो नील बोला, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो असल में मैं नहीं चल सकूंगी। वो मुझे अभी भी याद आया कि आज मुझे मिसेस शर्मा के साथ कहीं और जाना है, पीहू ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। नील बोला, तो ठीक है कल चलेंगे। पीहू ने तुरंत ही उसकी बात काट दी, नहीं मेरा मतलब है कि तुम अपना प्रोग्राम मत खराब करो, तुम हो आना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं अकेले ही चला जाऊंगा, नील बोला और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। उसके जाते ही पीहू अखबार उठाकर पढ़ने लगी, समीर ठाकुर की पेंटिंग एग्जीबिशन। समीर? मेरे समीर की एग्जीबिशन? तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया समीर। अखबार हाथों में लिए पीहू का मन अतीत की गलियों में खो गया। तब पीहू एमकॉम प्रीवियस में पढ़ती थी, उसके सीनियर थे समीर ठाकुर, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व, लंबी कद काठी और बेहद हसमुख। पीहू की क्लास की बाकी सारी लड़कियों की तरह ही पीहू को भी वो बहुत अच्छे लगते थे, पर वो कभी भी किसी पर ध्यान नहीं देते थे। पीहू को याद आ रहा था, उस रोज उसके कॉलेज में आर्ट कंपटीशन था। पीहू ने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था। वो समीर से थोड़ा दूर खड़ी थी, तभी उन्होंने उसे पुकारा, हेलो व्हाइट सूट। पीहू को कुछ अजीब सा लगा, समीर उसी की तरफ आ रहे थे। वो डर गई कि पता नहीं क्या बात है। समीर ने उसके पास आकर कहा, तुम जूनियर हो ना? पीहू ने डरते हुए जवाब दिया, जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? पीहू गुप्ता। बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा हुआ था पीहू से समीर का पहला परिचय।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है खोया खोया चांद। अब तक आपने सुना शहर में पेंटिंग एग्जीबिशन लगी थी। पीहू के हस्बैंड नील ने उसे चलने के लिए कहा। पहले तो वो तैयार हो गई लेकिन फिर पेंटर का नाम सुनकर उसने मना कर दिया। वो पेंटर उसी के कॉलेज में पढ़ने वाला उसका सीनियर था। पीहू पुरानी यादों में खो गई। अब आगे समीर ने पीहू से कहा, पीहू अच्छा नाम है, थोड़ी ही देर में पेंटिंग कंपटीशन है, तुम जल्दी से वहां पहुंचो, आज मैं तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाऊंगा, ठीक है? पीहू ने चौंक कर उसकी ओर देखा। जी सर। और समीर चला गया। पीहू हक्की बक्की सी उसे जाता देखती रह गई। समीर ने पीहू का बहुत सुंदर पोर्ट्रेट बनाया। वो खुद के इस रूप को देखकर चकित थी। कुछ देर बाद जब कविताओं की प्रतियोगिता में भी समीर का नाम पुकारा गया तो पीहू फिर से चौंकी। वो पीहू के बगल से गुजरा तो पीहू ने उससे धीरे से पूछ लिया, पोर्ट्रेट तो मेरा बनाया था आपने, कविता किस पर लिख डाली है? उसने मुस्कुराकर पीहू की ओर देखा और कहा, उसी पर जिसका पोर्ट्रेट बनाया था। उसकी बात सुनकर पीहू अपने ही सवाल पर शर्मा गई। धीरे धीरे उनकी बातों मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। वक्त के बीतते बीतते वो दोनों कब एक दूसरे से प्यार कर बैठे वो खुद ही नहीं समझ पाए। पर ना ही कभी समीर ने अपने प्यार का इजहार किया और ना ही कभी पीहू ने इकरार किया। देखते देखते एक साल बीत गया। समीर की पढ़ाई पूरी हो गई थी और पीहू जूनियर से सीनियर हो गई थी। इसके साथ ही समीर की नौकरी की तलाश भी तेज हो गई थी और पीहू के घर में उसके लिए योग्य जीवन साथी की। पीहू समीर के सिवाय किसी भी और को अपने जीवन साथी के रूप में सोच भी नहीं पाती थी। वो समीर से इस बारे में बात करना चाहती थी पर उसका मजाकिया स्वभाव कभी भी उसे ये सब कहने ही नहीं देता था। पीहू उसे कितना समझाती थी कि समीर कभी तो सीरियस हुआ करो, कहीं ऐसा ना हो कि इस लापरवाही के कारण एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। पर वो पीहू की बात को भी मजाक मानकर हंस देता था। एक दिन कुछ लोग पीहू को देखने आने वाले थे। वो कॉलेज से निकली ही थी कि समीर आता दिखा। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो पीहू? आज कुछ लोग मुझे शादी के लिए देखने आने वाले हैं, पीहू बोली। वो चौंक पड़ा। ऐसा मजाक मत किया करो पीहू, मुझे पसंद नहीं। मजाक? मजाक तुम करते हो समीर, मैं नहीं, पीहू ने नाराजगी जताते हुए बोला। समीर परेशान होके बोला, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती पीहू। पीहू ने अनजान बनते हुए कहा, क्या मतलब, मैं क्यों किसी और से शादी नहीं कर सकती? पीहू तुम जानती हो कि मैं तुमसे, समीर की बात काटते हुए पीहू बोली, मुझसे क्या समीर? समीर एक लंबी सांस लेकर आंखें बंद करके जल्दी जल्दी बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ पीहू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इतना कहकर उसने आंखें खोली और पीहू को मुस्कुराता हुआ देखकर चैन की सांस ली।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है खोया खोया चांद। अब तक आपने सुना पीहू को उसके पति नील ने बताया कि उनके शहर में किसी समीर नाम के पेंटर की एग्जीबिशन लगी है। समीर का नाम सुनते ही पीहू बीती यादों में खो गई। समीर कॉलेज में उसका सीनियर था। एक आर्ट कंपटीशन के दिन उन दोनों की मुलाकात हुई और फिर उस दिन से शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदल गई। अब आगे अपने प्यार के इजहार पर पीहू को हंसता हुआ देखकर समीर बोला, जब सब जानती थी तो इस तरह अनजान क्यों बनी? सब जानती थी पर तुम्हारे मुंह से सुनकर इस सच पर मोहर लगवाना था। अब चलो मेरे घर, पीहू बोली, मेरे घर वालों से बात करने। और समीर का हाथ अपने हाथ में लेकर चलने लगी। समीर थमा और बोला आऊंगा, जरूर आऊंगा, पर उस दिन जिस दिन कुछ बन जाऊंगा। प्लीज पीहू, थोड़ा सा वक्त दो मुझे। पीहू को भी उसकी बात सही लगी सो वो मान गई। 6 महीने बीतने को आए थे पर अब तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली। फिर एक दिन पीहू ने उससे कहा, समीर तुम इतने अच्छे कवि हो, इतने अच्छे पेंटर हो, फिर इसी को अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बना लेते? क्यों नौकरी के लिए ठोकरें खा रहे हो? समीर हंसकर बोला, मैं भी यही चाहता हूं पीहू, पर मम्मी पापा का सपना है कि मैं भी बड़े भैया की तरह नौकरी ही करूं। उनका मानना है कि कला संतुष्टि तो देती है पर पेट नहीं भरती। पीहू ने उससे असहमत होते हुए कहा, पता नहीं समीर, पर मैं तुम्हें एक पेंटर के रूप में ही देखना ज्यादा पसंद करूंगी। तुम्हारी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगे, लोग तुम्हें सराहें, कलाकार के रूप में जाने, मेरा तो यही सपना है समीर। समीर बोला, कुछ और समय तक नौकरी नहीं मिली ना पीहू, तो तुम्हारा यही सपना सच करके दिखाऊंगा। जल्दी ही समीर को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अपने काम में व्यस्त समीर को अब पीहू से मिलने का भी कम ही समय मिल पाता था, पर पीहू खुश थी। तभी पता नहीं कैसे पीहू के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। पीहू की मां ने कहा, कुछ सोचा है कि तुम एक दूसरी जात के लड़के से शादी करोगी तो तुम्हारी छोटी बहन का क्या होगा? और चलो हम मान भी जाएं, तो क्या उसके घर वाले अपना लेंगे तुम्हें? पीहू ने शांत स्वर में जवाब दिया था, मां आप चिंता मत करो, अगर वो सच में प्यार करता है तो ना सिर्फ अपने घर वालों को मनाएगा बल्कि खुद आकर आपसे मेरा हाथ भी मांगेगा, मुझे भरोसा है उस पर। पीहू की मां ने उससे पूछा था, और अगर ऐसा ना हुआ तो? अगर वो सारे रीति रिवाज निभाते हुए मुझे लेने नहीं आया तो जैसा आप कहोगी वैसा करूंगी मां। उस दिन पापा ने पीहू का ही साथ दिया था, कहा था, ठीक है पीहू, जैसा तुम ठीक समझो, हम तो बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं। पर जब पीहू ने यही बात समीर से कही तो समीर बोला, मैं अभी अपने घर वालों से बात नहीं कर सकता पीहू, अभी तो मैं अपनी नौकरी में ठीक से सेट भी नहीं हो पाया हूं, थोड़ा और वक्त दो मुझे पीहू। उसके बाद वो 6 महीने के लिए ऑफिस की तरफ से सिंगापुर चला गया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है खोया खोया चांद। अब तक आपने सुना, जब पीहू के हस्बैंड नील ने उसे बताया कि शहर में एक आर्ट एग्जीबिशन लगी हुई है और उस पेंटर का नाम समीर है, तो पीहू अपनी अतीत की यादों में खो गई। समीर कॉलेज में उसका सीनियर था, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पीहू तो उससे शादी करने के लिए अपने घर में लड़ भी गई थी, लेकिन समीर उस वक्त हालातों से मजबूर होकर तैयार नहीं हो पाया। अब आगे, ठीक उसी वक्त नील का रिश्ता आया था पीहू के लिए, और फिर जल्द ही पीहू नील की पत्नी बनकर उसके घर की मर्यादा बन गई। पीहू अपने सपनों की दुनिया में ही खोई हुई थी कि दरवाजे की घंटी बजी। पीहू ने ध्यान दिया तो शाम काफी हो गई थी। उसने कमरे की लाइट जलाई और दरवाजा खोला। नील, तुम आ गए? नील ने मुस्कुराकर कहा, कहां खोई हुई थी जो वक्त का पता ही नहीं चला। उसने सोफे पर बैठकर जूते उतारते हुए कहा, पीहू तुम्हें चलना चाहिए था, तुमने सच में बहुत मिस किया। कितनी सुंदर पेंटिंग्स थी एग्जीबिशन में, मैं मिला भी उनसे, पर वो अजीब से इंसान लगे मुझे। जानती हो, पहले किसी बड़ी कंपनी में काम करते थे, फिर अचानक सब कुछ छोड़कर पेंटर बन गए, और पता है अब तक शादी भी नहीं की है। लोग कहते हैं कि किसी से प्यार करते थे, उसे पा नहीं सके, बस इसीलिए उनकी याद में शादी ना करने का फैसला ले बैठे। नील बिना पीहू की तरफ देखे बोले जा रहा था, और पीहू का मन तो उन्हीं चंद शब्दों में अटक गया था, शादी नहीं की तो क्या अब तक समीर मुझे भुला नहीं पाया। अचानक नील की नजर पीहू की तरफ पड़ी तो वो उसकी बेचैनी को कुछ भांपते हुए बोला, क्या हुआ पीहू, तुम कुछ परेशान लग रही हो?

नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकावट है, कहकर पीहू ने नील की बात को टाल दिया। अगली दोपहर ऑफिस से नील ने पीहू को फोन किया। पीहू, आज शाम मेरा एक दोस्त आएगा, जरा अच्छी सी तैयारी कर लेना। पीहू का मन तो अब भी समीर में ही अटका हुआ था। कितने सवाल थे जो पूछने थे। मन हुआ एक बार जाकर मिल आए उससे, फिर लगा जाकर भी क्या हासिल होगा। वो बेमन से घर का काम करने में लग गई। शाम होने पर नील के आने का इंतजार करने लगी। तभी फोन बजा। फोन नील का था। पीहू, मुझे कुछ काम आ गया है, थोड़ी देर हो जाएगी, वो मेरा फ्रेंड आएगा ना, तो प्लीज तुम उसका ख्याल रखना। पीहू झल्ला गई, जानना पहचान, बस कह दिया कि ख्याल रखना। खैर, कर भी क्या सकती थी। ठीक 6 बजे दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही सामने खड़े इंसान को देखकर वो चौंक पड़ी। समीर, तुम यहां? पीहू? कुछ पल वो दोनों बिना कुछ कहे यूं ही खड़े रहे।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है खोया खोया चांद। अब तक आपने सुना बीहू के शहर में उसके पहले प्यार उसके समीर की एग्जीबिशन लगी थी। पीहू के मना करने पर नील वहां अकेले ही होकर आया था और लौटकर पेंटिंग्स की बहुत तारीफ कर रहा था। अगले दिन उसने पीहू से कहा कि उसका कोई दोस्त शाम को घर पर आने वाला है और जब आने का समय हुआ तो वो कहीं काम में फंस गया। शाम को नीलू ने समीर को अपने घर के दरवाजे पर पाया। अब आगे समीर बोला, मुझे यहां नील जी ने बुलाया है, ये उन्हीं का घर है ना? पीहू ने उसे रास्ता देते हुए कहा, हां उन्हीं का घर है और मैं उनकी पत्नी। समीर ने अंदर आकर कहा, कैसी हो? पीहू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत अच्छी, बहुत खुश। पर इन सब चीजों से आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी सुनाएं। समीर सिर झुकाए बोल रहा था, याद है पीहू, तुम कहती थी कि अपनी लापरवाही की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे, पर वो कीमत तुम होगी पीहू, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारा साथ मुझे जीने की वजह देता था, हर पल हर क्षण मैं तुम्हें अपने आसपास देखना चाहता था। कैसा पागलपन था वो, जो मुमकिन नहीं था वही सब चाहता था मैं। घर वाले समझा समझा कर हार गए, पर मैं शादी के लिए तैयार ना हुआ। तुमने ही मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे एक पेंटर के रूप में देखना चाहती हो। बस अब मैं तुम्हारा वही सपना पूरा करने को अपने जीवन का लक्ष्य बना चुका हूं। इतना कहकर वो खामोश हो गया, पर उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं की झड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी नील घर आ गया। समीर ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाल लिया। समीर के सामने बैठते हुए नील बोला, जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि जान पहचान ना होने पर भी मैंने आपको इतना इंसिस्ट करके घर पर क्यों बुलाया। मैंने आपकी एग्जीबिशन में पीहू की पेंटिंग भी देखी थी और जब मैंने आपकी सेक्रेटरी से उस पेंटिंग को खरीदने की इच्छा जताई तो उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि इस पेंटिंग को बेचने से समीर साहब ने मना किया है। उसी ने आपके शादी ना करने के बारे में और अच्छी खासी नौकरी छोड़कर पेंटर बनने के बारे में भी बताया, तो मुझे लगा कि शायद आपकी पीहू से एक मुलाकात तो होनी ही चाहिए। समीर ने नील का हाथ पकड़कर बोला, आप सोच भी नहीं सकते नील जी कि आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अगर मैं पीहू से माफी ना मांगता तो शायद चैन से मर भी ना पाता। आप सच में बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके पास पीहू जैसी जीवन साथी है। अब मैं चलता हूं, आज की शाम जीवन भर मीठी याद बनकर मेरे साथ रहेगी। समीर को छोड़ने नील और पीहू बाहर तक आए। पीहू ने कहा, समीर बहुत सजा दे चुके अपने आप को, अब कोई अच्छा सा जीवन साथी चुन लो। समीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चलता हूं। फिर उसने अपनी प्रश्न चिन्ह सी आंखें पीहू की ओर उठाकर कहा, मैं चाहता हूं कि एक बार, बस एक बार तुम मेरी पेंटिंग देखने आओ पीहू, देखो मैं तुम्हारा सपना पूरा कर भी पाया या नहीं, आओगी ना? नील ने पीहू का हाथ थामते हुए कहा, आएगी, जरूर आएगी। समीर के चेहरे पर तृप्ति के भाव उभर आए थे। पीहू और नील उसे दूर तक जाता हुआ देखते रहे। फिर पीहू ने धीरे से नील के कंधों पर अपना सिर टिका दिया और नील ने उसे अपनी बाहों में भर लिया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी खोया खोया चांद। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदे, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग, चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग। संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे, होगी सुरों की बरसात। हो जाइए, थामिए एक दूसरे का हाथ, शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर, भारतीय सिनेमा का सबसे आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी, किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर, चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

हाँ जी दोस्तों, जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मॉनसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिम झिम रिम झिम। संगीत सम्राट आर डी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिम झिम रिम झिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेन ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

0: लगी,
1: मन मगन हुआ,
0: फिर लगन लगी,
2: आइए अब बात करते हैं उस गीत की जिसने बारिश के रोमांटिक पहलू को दिखाने की बजाय आम आदमी की खुशियों को दिखाया है, जो कि है दम दम डीगा डीगा। इसे मुकेश ने गाया था और अभिनेता राज कपूर जी पर यह फिल्माया गया था। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में जब राज कपूर जी आम आदमी की खुशी को दिखाते हैं, मुंबई की सड़कों पर भरे पानी में थिरकते हैं, तो वो गर्मी के बाद आई हुई पहली बरसात और राहत का जश्न मना रहे होते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान सड़कों पर असली जैसा माहौल बनाने के लिए भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही प्यारे धुनों के साथ इसे शूट भी किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: बरसात की बूंदों ने आज फिर यादों का जहां आबाद किया, सुरमई नगमों ने गुजरे दौर के हर लम्हे को याद किया। अब ठहरने लगी है बारिश और महफिल समेटने का वक्त है। मौसम की हर बूंद ने आज एक नया तराना गाया है, पुराने गीतों ने हर दिल में एक नया एहसास जगाया है। हवाओं में घुली है आज भी इन सुरों की भीनी सी खुशबू। जाने का वक्त तो है पर दिल यहीं कुछ छूट गया है।
1: जैसे भीग कर थम जाती है सावन की यह हसी बरसात, वैसे ही अब मोड़ पर आ पहुंची है सुरों की ये प्यारी सी रात। दिलों में समेट कर ले जा रहे हैं इन गीतों की गर्माहट, अलविदा करते हैं आज थाम कर यादों की हसीन सौगात। फिर लौट कर आएगी ये रिमझिम, फिर सजेगी ये महफिल, पुराने गानों के सहारे फिर आसान होगी हर राह और मंजिल। भूले बिसरे गीत के इस सफर को आज हम यहीं रोकते हैं, अगली बारिश में फिर मिलने का वादा करके जाते हैं इस दिल से। तो मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: रात के सफर में भूले बिसरे गीतों का सफर हम यहीं पर करते हैं आज एंड। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा। संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा,
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम